अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

भगवान की जय। श्री कौशल्यानंदन भगवान की जय। श्री दशरथ नंदन भगवान की जय। श्री कैकेयी नंदन भगवान की जय। श्री सुमित्रा नंदन भगवान की जय। श्री चारु भैयन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम जन्मभूमि की जय। श्री कृष्ण जन्म

जय शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परमानुपा।

कंदनम मुनींद्र संदरंजनम सुरारिवृंदभंजनम मनोजवैरिवंदितं मजादिदेव सेवितं विशुद्ध बोध विग्रहं समस्त दूषणापं नमामीन्द्रियापतिं सुखाकरं सतां गतिं भजे सशक्तिसानुजं सदेपते प्रियानुजं त्वदङ्घ्रिमूलये नरा भजन्ति हे नमस्सरा पतन्ति नो ववर्णवे वितर्कवीचि सङ्गुलिं विवेक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्त इन्द्रियादि प्रयान्ति ते गति स्वगं तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं भजामि भाववल्लभं सुयोगिनां सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादं समं सुसेव्यमन्वम्।

ये आकाशवाणी का आराधना चैनल है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी श्रीनगर के बालटाल और पहलगाम से अमरनाथ यात्रा पर विशेष प्रसारण।

0: आदाब। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के इस विशेष प्रसारण में आप सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं फैजान कुरैशी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का विशेष यात्रा प्रसारण जो FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, OTT प्लेटफॉर्म वेव्स, न्यूज़ ऑन AIR ऐप के आराधना चैनल तथा DTH के माध्यम से देश और विदेश तक प्रसारित किया जा रहा है। इस विशेष प्रसारण के दौरान हम आप तक श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी हर महत्वपूर्ण और प्रामाणिक जानकारी पूछाएंगे। यात्रा मार्ग की वर्तमान स्थिति, मौसम के हाल के साथ साथ प्रशासन द्वारा जारी ताज़ा सूचनाओं से भी आपको हम लगातार अवगत करते रहेंगे। हमारे संवाददाता भी इस दौरान पल पल की ताज़ा जानकारी लेकर आपके साथ जुड़े रहेंगे।
1: छह लेन वाली ग्रीन फील्ड एलिवेटेड

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का विशेष यात्रा प्रसारण जो एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स, न्यूज ऑन एआईआर ऐप के आराधना चैनल तथा डीटीएच के माध्यम से देश और विदेश तक प्रसारित किया जा रहा है। इस विशेष प्रसारण के दौरान हम आप तक श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी हर महत्वपूर्ण और प्रामाणिक जानकारी पूछाएंगे। यात्रा मार्ग की वर्तमान स्थिति, मौसम का हाल के साथ साथ प्रशासन द्वारा जारी ताज़ा सूचनाओं से भी आपको लगातार अवगत करते रहेंगे। इस वक्त जम्मू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता जावेद मेहराब। जावेद जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त जिस जगह पर आप मौजूद हैं वहां से श्री अमरनाथ जी यात्रा को लेकर सबसे बड़ी और ताज़ा जानकारी क्या है, यात्रियों के उत्साह और प्रशासन के की व्यवस्थाओं के बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: जी, पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा हर्षोल्लास के साथ जारी है। यहाँ जम्मू में मौसम गर्मी और उमस भरा है, लेकिन इसके बावजूद तीर्थ यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर जोश खरोश के साथ जो प्रशासन है वो अपना कार्य कर रही है। और इस दौरान प्रशासन तीर्थ यात्रियों को और सुचारू बनाने के लिए प्रबंधों को और चाकुचौबंद करने में पूरी मेहनत के साथ भी काम कर रही है, जिसमें स्वयंसेवी संस्थाएं, स्थानीय लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और जिसको लेकर कल यहाँ भगवती नगर के पहले आधार शिविर पर खुद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दौरा किया, जहाँ प्रशासनिक अधिकारियों, सुरक्षा एजेंसियों, पुलिस, सीआरपीएफ, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के कार्य की तारीफ भी की गई। लगभग 13 दिन के इस छोटे से अंतकाल में लगभग 3 लाख को ये यात्रियों का दर्शन करने का ये जो आंकड़ा है वो पार कर गया है, जो एक बहुत बड़ी कामयाबी भी है। जिसको लेकर जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, उन्होंने तमाम एजेंसियों, स्थानीय लोगों और यात्रा से जुड़े सभी कर्मचारियों को मुबारकबाद भी दी। और साथ ही उपराज्यपाल ने प्रशासन अधिकारियों को ये सुनिश्चित किया कि तीर्थ यात्रियों को अतिथि देवो भव के मुताबिक ही के जज्बे के साथ उनकी सेवा के निर्देश भी दिए। बड़ी बात है। और इस दौरान उनके दौरे के दौरान उन्होंने तीर्थयात्रियों से उनका हालचाल भी जाना और तीर्थयात्रियों की यात्रा को और आसान बनाने के लिए, प्रबंधों को और बेहतर बनाने के लिए मुख्य रूप से मीटिंग भी की और बातें भी की और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की कि श्री अमरनाथ जी यात्रा के जो तीर्थयात्री हैं उनके साथ बेहतर व्यवहार के साथ उन्हें तीर्थ यात्रा के लिए रवाना करें।
0: जी।
1: साथ ही उन्होंने अधिकारियों को मौसम विभाग की भविष्यवाणियों पर लगातार नजर रखने को भी कहा। उन्होंने लंगरों में खाद्य सुरक्षा कर्मचारियों की तैनाती के भी निर्देश दिए, ताकि तीर्थ यात्रियों को बेहतर खाना लंगरों में, क्योंकि जम्मू कश्मीर के मुख्य द्वार लखनपुर से लेकर यहाँ जम्मू तक लगभग कोई 50 करीब अलग अलग लंगर समितियां लगी हुई हैं। उसके अलावा ट्रांजिट कैंप्स हैं, जहां पर तीर्थयात्रियों को सुविधाओं के अलावा खाने और पीने की सुविधाएं भी रहती हैं। उसी को लेकर उन्होंने कहा कि यहाँ इन लंगरों में खास तौर पर ये ध्यान रखा जाए कि तीर्थयात्रियों तक बेहतर और सुरक्षित खाना उन्हें मिल रहा है। उस पर जो विभाग है उनके कर्मचारियों की तैनाती भी होनी चाहिए। तो एक बड़ा निर्देश था उनका इस दौरान अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तत्कालीन पंजीकरण व्यवस्था में बदलाव किया गया है। कल ही यहाँ इस पंजीकरण की सुविधा के लिए तत्कालीन जो पंजीकरण होता है उसमें उसी व्यवस्था में बदलाव किया गया है। अब महाजन सभा हॉल जो है वहाँ जो तत्कालीन पंजीकरण होता था उसको बंद कर दिया गया है। अब सिर्फ तरी रिवर फ्रंट, भगवती नगर यात्री निवास और पुरानी मंडी के राम मंदिर में ये सुविधाएं दी जा रही हैं।
0: जी।
1: ठंडा प्रशासन के अनुसार यात्रियों की बढ़ती संख्या और पंजीकरण प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए ये फैसला लिया गया है।
0: जी,
1: नए केंद्रों पर आवश्यक दस्तावेज की जांच के बाद ही श्रद्धालुओं का पंजीकरण किया जा रहा है और उसके बाद उन्हें यात्रा के लिए निर्धारित दिशा निर्देश के अनुसार आगे भेजा जाएगा। अधिकारियों ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो तत्कालीन पंजीकरण के लिए अब महाजन सभा हाल को छोड़कर अन्य केंद्रों पर आए और अपने साथ पहचान पत्र, अन्य आवश्यक दस्तावेज और अवश्य रखे। प्रशासन का कहना है कि इस नई व्यवस्था में पंजीकरण प्रक्रिया अधिक सुचारू होगी और भीड़ का बेहतर प्रबंधन किया जाएगा। श्रद्धालुओं को कम समय में सुविधाएं मिलेंगी। यात्रा के दौरान बाकी सभी सुविधाएं व्यवस्थाएं पहले ही की तरह रहेंगी और इस दौरान कल बुधवार को तमाम ट्रांजिट कैंप पर खास तौर पर सफाई सुथराई को भी अंजाम दिया गया, जिसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्पेशल टीमों ने के कर्मचारियों ने खूब मेहनत भी की। इस तरह से यात्रा को सुचारू बनाने के लिए हर रोज समीक्षाएं भी होती है। कल जैसा कि खुद उपराज्यपाल यहाँ भगवती नगर बेस कैंप पर पहुंचे, उससे पहले वो कश्मीर के विभिन्न बेस कैंप्स पर उनका उन्होंने दौरा किया, वहाँ कर्मचारियों से भी मिले और श्रद्धालुओं से भी मिले, उनकी बातें भी सुनी, उनका हालचाल भी जाना और खास तौर पर वो लगातार इस बात को सुनिश्चित करना चाह रहे हैं कि तीर्थयात्रियों को श्रद्धालुओं को बेहतर से बेहतर सुविधाएं मयसर हो, उसके लिए कर्मचारियों को रोज समीक्षाएं करने को भी कहा और जो छोटे लेवल पर भी कर्मचारी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए समीक्षाएं करते हैं ताकि हर एक ट्रांजिट कैंप्स में बेहतर सुविधाएं मिले और जो तीर्थ यात्री है वो सुख सुविधाओं के साथ घाटी की ओर रवाना होकर पवित्र गुफा में भगवान शिवलिंगम के दर्शन करें। तो आज भी भगवती नगर आधार शिविर से श्रद्धालुओं के दोनों काफिले बालताल और पहलगाम की तरफ रवाना हुए। आज रवाना होने वाले श्रद्धालुओं की कुल संख्या 5201 रही, जहां बालताल मार्ग की तरफ 1745, वहीं प्राचीन पहलगाम मार्ग की तरफ 3456 यात्री रवाना हुए। यात्रा में शामिल पुरुषों की संख्या 3970 जबकि महिलाओं की संख्या 1126। यात्रा में बच्चे भी शामिल रहे जिनकी संख्या 5 रही, साधु 92 और साधवी 9 और इस दौरान ट्रांसजेंडर भी एक इस यात्रा में आज की यात्रा में शामिल है। और आज भी सुबह तड़के ये यात्रा यहाँ जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हुई। सुबह का मौसम अब यहाँ सुहाना होता है, हालांकि दिन डलते डलते उमस और गर्मी श्रद्धालुओं के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी थोड़ा बेचैन जरूर करती है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ जोशो खरोश बराबर जारी है और तीर्थयात्री खुलकर न सिर्फ तीर्थ यात्रा का हिस्सा बनते हैं बल्कि यहाँ के पर्यटन स्थलों, यहाँ की जो ऐतिहासिक मंदिर है और उसके अलावा यहाँ जिस तरह से तीर्थयात्रियों के लिए इंतजाम किए गए हैं उन सभी का वो लुत्फ भी उठाते देखे जा सकते हैं। और जम्मू

0: जो माहौल है वो बहुत बेहतरीन परिस्थितियों के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका जावेद महराब जी, आप महत्वपूर्ण जानकारी यात्रा के हवाले से हमारे श्रोताओं को दे रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत शुक्रिया।
1: श्रोताओं आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का विशेष यात्रा प्रसारण, मैं हूं फैजान कुरैशी। ये प्रसारण आप FM बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, OTT प्लेटफॉर्म वेव्स, न्यूज़ ऑन AIR ऐप के आराधना चैनल तथा DTH के माध्यम से देश और विदेश तक प्रसारित किया जा रहा है। इस विशेष प्रसारण के दौरान हम आप तक श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी हर महत्वपूर्ण और प्रामाणिक जानकारी पूछाएंगे। यात्रा मार्ग की वर्तमान स्थिति, मौसम के हाल के साथ साथ प्रशासन द्वारा जारी ताज़ा सूचनाओं से भी आपको लगातार अवगत करते रहेंगे। हमारे संवाददाता भी इस दौरान पल पल की ताज़ा जानकारी लेकर आपके साथ जुड़े रहेंगे।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का विशेष यात्रा प्रसारण, जो एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, ओटीटी प्लेटफार्म वेव्स, न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप के आराधना चैनल तथा डीटीएच के माध्यम से देश और विदेश तक प्रसारित किया जा रहा है। श्रोताओं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद तस्कीन, जो रामबन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तस्कीन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि इस समय यात्रा का समग्र माहौल कैसा है, यात्रियों के उत्साह, प्रशासन की तैयारियों और मौके पर की ताज़ा स्थिति के बारे में हमें विस्तार से बताइए।
1: जी, जो उत्साह है, जो जोश और खरोश है यात्रियों में, वो पहले दिन से ही जारी है और आज 15वां बैच है। बिल्कुल जोश और खरोश, कमी नहीं आई है। बूढ़े, बच्चे, जवान सब श्री अमरनाथ यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं और हजारों की तादाद में अब तक 3 लाख से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं पवित्र गुफा का, और यह सिलसिला बिल्कुल बरकरार जारी है। तो आज की जो स्थिति, अगर हाईवे की कहेंगे तो हाईवे पर दोनों काफले इस वक्त रामबन डिस्ट्रिक्ट में पहुंच चुके हैं। जो बालतल का 74 गाड़ियां हैं आज के काफले में, 1745 यात्री, और 7:30 बजे ये बालतल का जो जम्मू से सुबह रवाना किया था काफला श्री अमरनाथ यात्रियों का, तो ये बानहाल पहुंच चुका है और यहाँ पर इनका जो ब्रेकफास्ट वगैरह का जो रूटीन में होता है तो वो कराया जा रहा है। जबकि पहलगाम 117 गाड़ियों पर मुश्तमिल है, 3456 यात्री इसमें सवार हैं, तो 7:10 पर अभी कुछ

0: पहले चंद्रकूट के जो शिविर है, यात्रा निवास है, वहां पर इनको नाश्ता वगैरह कराया जाएगा। तो वहां पर ये पहलगाम का काफिला भी पहुंच चुका है और उसके बाद से बानिहाल की तरफ रवाना किया जाएगा और यहाँ से कश्मीर की तरफ। इस दौरान जो पहलगाम से वापस जो कानवाई आ रहे हैं, जो दर्शन के बाद श्री अमरनाथ यात्री जम्मू की तरफ आ रहे हैं, तो वो कानवाई भी अभी कुछ वक्त पहले वानहाल पहुंच गई है 7:20 पर। तो यानी इस वक्त दो काफले जो कश्मीर से वापस आ रहे हैं वो भी वानहाल पहुंच चुके, और जम्मू से जो ये बालतल का काफला है वो भी वानहाल पहुंच चुका है। इस दौरान जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है, आज धूप सुबह से निकली हुई है। अगर कहेंगे पिछले कई रोज से लगातार बादल होते थे, हल्की हल्की बारिशें भी पीछे हुई है, तो उसके बावजूद मौसम जो है इस एरिया में, खासकर बानहाल सेक्टर में कहेंगे, बहुत खुशगवार है। और जो यात्रा ट्रैफिक है वो अपनी अपनी मंजिलों की तरफ बढ़ रहा है। इस दौरान जो बाकी ट्रैफिक है, अभी कश्मीर से जो ट्रैफिक है उसे 11:30 बजे बाद से चलने की इजाजत होगी कश्मीर से जम्मू की तरफ, जबकि सुबह 7 बजे से जो नगरोटा से कश्मीर आने वाला मुसाफिर ट्रैफिक होता है, लवीज होती है,
1: जी
0: उन्हें 7 बजे से इजाजत दी गई है। और 7 बजे से 12 बजे तक इन्हें नगरोटा से छोड़ा जाएगा, और 8 बजे से 1 बजे के दरमियान इन्हें ये जो चंद्रकूट से कश्मीर की तरफ आने की, उधमपुर से, सॉरी, 8 बजे से 1 बजे तक उधमपुर से कश्मीर
1: उधमपुर
0: की
1: से
0: तरफ आने की इजाजत दी जाएगी।
1: जी
0: फिलहाल जो यात्रा ट्रैफिक बराबर गुजर रहा है, और जो इंतजामात इनके वो तो बहुत जबरदस्त हैं, पहले से ही हैं। और बानहाल में भी और चंद्रकूट में भी, अगर आप जम्मू डिवीजन में कहेंगे, तो ये दो जो यानी भगवती नगर के बेस कैंप को छोड़कर जो बानहाल और चंद्रकूट का ये है, ये बहुत अहमियत रखते हैं यात्रियों के लिए, क्योंकि इस सेक्टर पर इनकी जो ये मौजूदगी है, इनको बीच में, अगर कहेंगे जम्मू और श्रीनगर के बीच में है रामबन डिस्ट्रिक्ट, तो इस पर जो पूरे इंतजाम है यात्रियों के लिए, उनको यात्री उन इंतजाम से भरपूर फायदा ले रहे हैं, इनसे मुस्तफीद भी हो रहे हैं।
1: जी।
0: फिलहाल हाईवे पर ट्रैफिक चल रहा है और उम्मीद है कि आइंदा 1.5-2 घंटों में ये दोनों काफले कश्मीर की तरफ रवाना किए जाएंगे, यहाँ बानहाल से। जी
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया तस्किन जी, ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को देने के लिए।
0: जी शुक्रिया।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का विशेष यात्रा प्रसारण जो FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, OTT प्लेटफॉर्म वेव्स, न्यूज़ ऑन AIR ऐप के आराधना चैनल तथा DTH के माध्यम से देश और विदेश तक प्रसारित किया जा रहा है। इस विशेष प्रसारण के दौरान हम आप तक श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी हर महत्वपूर्ण और प्रामाणिक जानकारी पूछाएंगे। यात्रा मार्ग की वर्तमान स्थिति, मौसम के हाल के साथ साथ प्रशासन द्वारा जारी ताज़ा सूचनाओं से भी आपको लगातार अवगत करते रहेंगे। श्रोताओं, अब रुख करते हैं हमारे संवाददाता के पास, यानी एस तारिक, जो अनंतनाग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तारिक जी, बताइए, इस वक्त आप जिस जगह पर मौजूद है वहाँ से श्री अमरनाथ जी यात्रा को लेकर सबसे बड़ी और ताज़ा जानकारी क्या है? यात्रियों के उत्साह और प्रशासन की व्यवस्थाओं के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: जी फरजान कुरैशी साहब, आपका बहुत शुक्रिया और प्रिय श्रोताओं को भी मेरा शुभकामनाएं। पहलगाम के प्राचीन मार्ग और इसके आसपास के क्षेत्र में मौसम सुहाना और आलिया बूंदाबांदी के कारण गर्मी के बारे में कुछ गिरावट आई है, जिससे यात्रा में और अधिक सहनीयत आ गई है। बाबा बर्फानी श्री अमरनाथ के भक्तों की अध्यात्मिक यात्रा पूरे आस्था, उमंग और सुगम ढंग से जारी है। आज सुबह 4:45 मनोहर आधार शहर से लगभग 5,000 से ज्यादा जत्था चंद्रवारी पहुंच चुका है, जहां वो पंचकर्मी की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। पहलगाम के निजी होटलों और बाकी जो अकोमोडेशन है वहां में ठहरे हुए दीगर यात्री भी है, वो लगातार चंद्रवारी पहुंच रहे हैं।
0: जी
1: तकरीबन दोपहर 12 प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाता है चंद्रवारी में, जिसके बाद किसी भी यात्री को आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाती है, ताकि संकल्प यात्रा में किसी भी प्रकार का विघ्न पैदा ना हो।
0: जी
1: और शीशनाग और पंचकर्मी में रात्रि विश्राम करने वाले हजारों यात्री की जो अवैध मतलब दोपहर की और पैदल यात्रा जारी है और वो जल्दी ही गुफा पहुंच जाएंगे। इधर जम्मू के भगवती नगर आधार शहर से 5,201 यात्रियों पर मुश्तमिल 15वां जत्था घाटी की ओर गतिशील है, जो दोपहर के आसपास गाजीपुर पहुंचेगा, जहां से बालतल पहलगाम के लिए अलग अलग जत्थे रवाना किए जाएंगे। इनमें से पहलगाम के प्राचीन मार्ग के लिए 117 छोटी बड़ी वाहनों में 3,456 यात्रियों के मुश्तमिल जत्थे को कड़ी सुरक्षा के बीच बाबा बर्फानी के प्राचीन मार्ग या और रवाना किया जाएगा। इन यात्रियों में 2,730 पुरुष, 322 महिलाएं, 52 साधु, 9 साधवी, 2 बालक और 1 ट्रांसजेंडर शामिल है।
0: ये
1: यात्री आज दोपहर तक लगभग पहलगाम पहुंचेंगे और अभी तकलीफ नहीं होता है और रात्रि विश्राम आधार शिविर में ही करेंगे। 52 दिनों के मुश्तमिल श्री अमरनाथ जी यात्रा में 3 जुलाई से कल साय तक तकरीबन 3,24,000 से ज्यादा भक्तों को बाबा बर्फानी के पवित्र धाम में दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जबकि

0: दर्शन करने वाले यात्रियों की संख्या 22,000 से अधिक रही।
1: जी
0: देश के विभिन्न भागों से यात्रियों के आने का काम लगातार जारी है। तो सबसे अहम जो पहलगाम के साथ जुड़ा हुआ है वो है मौसम, और खासकर जो यात्रा मार्ग है उसके लिए, तो पहलगाम और इसके आसपास के क्षेत्र के साथ साथ यात्रा मार्ग पर मौसम सुहाना है। अब आकाश में बादल छाए हुए हैं,

0: Zeker omdat het proces in verschillende vorm roept ze daar in het ambulance politie. Maar dan ben ik hospital door de PTR het is een politie die een hospital bij de telefonie. Dat je ook maar zegt, die wat kan ze zonder die helft niet. Maar misschien waarom je die als politie gewoon in het hospital aan de PTR het is een die wat die aantrekken. तो बीच में देश वाले प्राप्त हो सके और यात्रा के दौरान इनकी सुरक्षा निर्याण और दुनिया पर इलाज को संचित किया जा सके इस बीच सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लेने के लिए तीन सुप्रीम ऑफ पुलिस रामकुमार प्रमोद अशोक नागपुर ने ज्वाइंट पुलिस कंट्रोल रूम अनंतनाग में एक विस्तारित बैठक की है और बैठक में सीनियर पुलिस अधिकारियों और यात्रा ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों ने भाग लिया SSP अनंतनाग ने वर्तमान परीक्षा परी नरसिंह पुलिस कर्मियों की तैनाती CCTV और जो निगरानी करते हैं स्पेशल रिकॉग्निशन सिस्टम ड्रोन निगरानी यातायाती वो जो नियंत्रण या संचार व्यवस्था और JPCR के संपूर्ण कारकर्दगी का विस्तार से जायजा लिया उन्होंने यात्रा के धर्म सुरक्षक और सुचारू संचालन के लिए 24 घंटे जागरूकता सभी संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वयों और किसी भी आपातकालीन या गतिक से निपटने के लिए तैयारी का जो जोर दिया है तो इस तरीके से जो आज की यात्रा है बिल्कुल आज जो मामूल जल तरतीब उसी तरीके से जारी है पहले दिन से ही जारी है जिन्हें बड़ी सख्त तरीन सिक्योरिटी के साथ बल्कि अगर हम लोग टनों से बात करें नवयोग टनों से लेके बिल्कुल पवित्र गुफा तक तीन दायरों वाली सिक्योरिटी है इसे कोई भी चूक नहीं हो सकती है हर जगह पे जो मॉनिटरिंग हो रही है CCTV के जरिए उन सारी चीजों की जो निगरानी कर रहे हैं वो वादी के जो उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा साहब खुद कर रहे हैं और जो ऑफिसर कैंप डायरेक्टर जेल बाकी सब इनमें बिल्कुल वो कोऑर्डिनेशन है ताकि जो यात्रा है वो बिल्कुल सफलता के साथ आगे बढ़े जी
1: जी ये थे अनंतनाग से एस तारिक जी बहुत बहुत धन्यवाद तारिक साहब ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को देने के लिए यात्रा के हवाले से

श्रोताओ, आप सभी यात्रियों की सुरक्षा और मंगल यात्रा के लिए हमारी शुभकामनाएं। अब समय हो चला है दिल्ली से प्रसारित राष्ट्रीय समाचार का। आइए सुनते हैं ताज़ा समाचार।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग में आसानी के लिए IRCTC की नई वेबसाइट शुरू की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। अमरीका ने होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो एलिवेटेड राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने वाराणसी में सड़क संपर्क बेहतर बनाने और भीड़भाड़ तथा यात्रा समय को कम करने के लिए इन परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कल ये जानकारी दी।
1: सेमिकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 माने प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमिकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC की वेबसाइट का नया स्वरूप जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि IRCTC ने इसमें 4 बड़े सुधार किए हैं।
2: इन सुधारों में पहला सुधार है कि इसमें कैप्चा, पॉपअप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीजें नहीं हैं। दूसरा, यात्री सभी क्लास में सीट की उपलब्धता देख सकते हैं। तीसरा, इसमें टिकट बुक करने के लिए जरूरी स्टेप्स की संख्या कम है और वेबसाइट अब यात्रियों की जानकारी सेव कर लेगी, जिससे दोबारा बुकिंग करना आसान हो जाएगा। मौजूदा वेबसाइट के होम पेज पर भी इस नए बीटा वर्जन का लिंक उपलब्ध है। मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं से इसके आसान फीचर्स पर फीडबैक देने का अनुरोध किया है। IRCTC वेबसाइट पहली बार 2002 में शुरू की गई थी और अभी यह हर दिन औसतन लगभग 14.5 लाख टिकट की बुकिंग संभालती है। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब जाएंगे।

0: प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए से लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जालंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से देश भर में शुरू हो रही है।

0: नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जगत के नाथ कहे जाने वाले श्री जगन्नाथ को भगवान श्री कृष्ण का रूप माना जाता है। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा भव्य रथों पर विराजमान होकर श्री मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित श्री गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। मान्यता है कि ये मंदिर भगवान की मौसी का घर है, जहां तीनों देवता 9 दिनों तक विराजमान रहते हैं। इसके बाद बहुधा यात्रा के साथ वे दोबारा मंदिर लौटते हैं। रथ यात्रा की शुरुआत पाहंडी अनुष्ठान से होती है। इसमें मंत्रोच्चार, भजन कीर्तन और पारंपरिक रीति रिवाजों के बीच तीनों विग्रहों को रथों पर विराजमान कराया जाता है। इसके बाद लाखों श्रद्धालु रस्सियों से रथ खींचते हैं, जिसे अत्यंत शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। भगवान के इस नगर भ्रमण को भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद देने का प्रतीक माना जाता है।
1: लीला चलवा रे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले।
2: ओडिशा के पुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में अपार उत्साह दिखाई दे रहा है।
3: सुबह की पहली किरणों के साथ पुरी का पवित्र बड़दंड जगमगा उठा है और तीर्थयात्रियों के इस शहर में भक्ति का सागर उमड़ पड़ा है। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन अपनी सालाना यात्रा पर श्रीगुंडीचा मंदिर जाएंगे। पुरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव, 3 शानदार ढंग से सजाया गया रथ, नंदी घोष, ताड़ध्वज और देवी दलन पर छेरा पहरा की रस्म निभाएंगे। फिर भक्त जय जगन्नाथ के जयकारों के बीच इन रथों को ग्रांड रोड पर खींचना शुरू करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
2: हमारी संवाददाता ने बताया है कि गुजरात के अहमदाबाद में भी रथ यात्रा धार्मिक उत्साह के साथ निकाली जा रही है।
4: सज रहा है रथ प्रभु का चंद्रमासा चेहरा।
5: अहमदाबाद में आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पावन अवसर पर सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ जी की 149वीं वार्षिक रथ यात्रा धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ निकाली जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जमालपुर स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर में सुबह मंगला आरती में भाग लेकर भगवान का आशीर्वाद लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोने के झाड़ू से रथों का मार्ग साफ करने की प्रतीकात्मक रस्म पहिन विधि सम्पन्न कर रथ यात्रा को रवाना किया। रथ यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए हैं। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।

0: रांची से हमारी संवाददाता ने बताया है कि झारखंड में भी रथ यात्रा को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं।
1: राजधानी रांची के ऐतिहासिक धुरवा स्थित जगन्नाथपुर मंदिर में सुबह से ही अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। दोपहर में विग्रहों के रथारूढ़ होने के बाद शाम 5:01 पर महाप्रभु का रथ मौसीबाड़ी के लिए प्रस्थान करेगा। इधर हजारीबाग में इस्कॉन द्वारा आईआईटी के विशेषज्ञों की मदद से 40 फीट ऊंचे आधुनिक तकनीक वाले रथ पर भगवान विराजमान होंगे, जहां कोलकाता की टीम विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति देगी। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। केरलम का सबरीमला मंदिर आज से मासिक पूजा के लिए खुलेगा। मंदिर में आज शाम से लेकर 21 जुलाई तक दर्शन किए जा सकेंगे। भीड़ भाड़ से बचने के लिए यह तीर्थयात्रियों को केवल वर्चुअल कतार प्रणाली के माध्यम से ही प्रवेश मिलेगा। मध्य प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली उड़ान सेवा को कल झंडी दिखाकर रवाना किया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। अमरीका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सवेरे एक जोरदार धमाके के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियां प्रभावी कर दी गईं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत सहित इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीकी सेना ने कहा है कि उसने ईरान के लिए आर्थिक रूप से बहुत प्रमुख खार्ग द्वीप की ओर जा रहे एक खाली तेल टैंकर को रोक दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि उनकी अमरीका के साथ बातचीत की कोई योजना नहीं है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं दुर्गा प्रसाद।
2: अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल मुकाबले में अब रविवार देर रात अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन ने पहला गोल किया। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 85वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिलवा दी। 90वें मिनट में लोटारो मार्टिनेज ने गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से शानदार जीत दिलवाई। इससे पहले अर्जेंटीना ने 2022 में कतर में विश्व कप जीता था। और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे से कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंगम में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। श्रृंखला का तीसरा मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान में खेला जाएगा।
0: मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उड़ीसा के कुछ स्थानों पर आज अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। वहीं असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में, सिक्किम और उत्तराखंड में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है चिप और रिएक्टर के लिए खजाना खोला। नवभारत टाइम्स के अनुसार चिप का हब बनेगा भारत, सेमिकॉन के दूसरे चरण को मिली कैबिनेट की मंजूरी। जनसत्ता की सुर्खी है सेमीकंडक्टर और मोबाइल के लिए 1,90,000 करोड़ की योजनाएं मंजूर। दैनिक जागरण ने आयात घटाने की चुनौती शीर्षक से संपादकीय में दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनेक फैसलों में अधिकांश के केंद्र में देश की आर्थिक स्थिति को बल प्रदान करना रहा है। ये फैसले रेखांकित करते हैं कि सरकार निर्यात बढ़ाना चाहती है, आयात घटाना और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहती है। पंजाब केसरी के अनुसार भारत ब्रिटेन में व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा किसानों और एमएसएमई को मिलेगा लाभ। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा समझौते से 99% निर्यात शुल्क मुक्त को हो जाएगा। लोकसत्ता के अनुसार यूके की विस्की, कारें और ब्यूटी प्रोडक्ट्स अब भारत में मिलेंगे सस्ते। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का लेख देते हुए लिखा है जगन्नाथ है महाप्रभु, उनका प्रसाद महाप्रसाद। जगन्नाथपुरी में पूरे वर्ष भक्त मंदिर में आकर महाप्रभु के दर्शन करते हैं और वर्ष में एक बार महाप्रभु बाहर आते हैं।

0: जागरण की सुर्खी है, जींद से ग्रीन क्रांति, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को कल हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। हेरिटेज और पर्वतीय रेल मार्गों पर चरणबद्ध रूप से चलेंगी 35 हाइड्रोजन रेलगाड़ियां। अमर उजाला का शीर्षक है, अमरीकी हमलों में 7 ईरानी सैनिकों की मौत, 300 से ज्यादा घायल। अमरीका की होर्मोज में सख्त नाकेबंदी, ईरान ने खाड़ी देशों में दागे मिसाइल और ड्रोन। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, एआई की मदद से हरियाणा में मिले 25,666 नए टीबी मरीज। टीबी मुक्त हरियाणा में 100 दिन के दौरान 4,73,000 लोगों की हुई जांच।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग में आसानी के लिए IRCTC की नई वेबसाइट शुरू की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Union Cabinet clears 2 elevated road projects worth over 25,000 crore rupees for Varanasi in Uttar Pradesh. Railway Ministry launches new beta version of IRCTC website to make train ticket booking simpler and more user-friendly. World famous Rath Yatra of Lord Jagannath and his 2 siblings begins today at Puri in Odisha. US says it launched new wave of strikes on Iran aimed at protecting vessels in Strait of Hormuz. In football, defending champions Argentina beat England 2-1 in second semi-final of FIFA World Cup to set up title clash with Spain. And in men's cricket, second ODI of 3 match series between India and England to be played in Cardiff this evening. And now the news in detail. The Union Cabinet has approved 2 elevated highway projects worth over 25,000 crore rupees for Varanasi in Uttar Pradesh. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, chaired by Prime Minister Narendra Modi, approved these projects to improve road connectivity and reduce congestion and travel time in Varanasi. The projects include a 6-lane greenfield elevated corridor covering over 46 kilometers between National Highway 19 and Varanasi Ring Road on hybrid annuity model. It will be built at a total capital cost of over 14,400 crore rupees. Briefing media in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the other project is related to the development of around 43-kilometer-long, 6-lane and 4-lane elevated corridor along Varuna River Bank in Varanasi city at a cost of around 11,000 crore rupees.
3: Varuna Nadi ke kinare kinare.
4: The project is a fully elevated 6-lane and 4-lane corridor along the Varuna River. It will have a total length of 43 kilometers with an estimated investment of 10,998 crore rupees and is expected to be completed in approximately 4 years. The fully elevated 6-lane corridor running alongside the Ganga River, it will span 46 kilometers and is estimated to be built at a cost of 14,448 crore rupees.
3: 448 crore rupees.
2: The Union Cabinet also approved the Semicon 2.0 with a budgetary outlay of 1,27,500 crore rupees to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Mr. Vaishnaw said, building on the momentum of Semicon 1.0, the scheme aims to further the government's commitment to putting India on the global semiconductor map.
3: Semicon 2.0.
4: Semicon 2 is built around 6 key pillars. The first pillar focuses on chip design. The second places major emphasis on semiconductor machinery and materials. The third aims to establish many new semiconductor fabrication units. The scheme also includes provisions to further strengthen the ATMP and OSAT industry.

0: famous Rath Yatra in Puri begins today. President Draupadi Murmu, in an op-ed in Hindustan Times, has written about her childhood memory of prayers and hymns to Sri Jagannath. She has expressed her feelings, saying 13 festivals are also said to be celebrated during the 12 months of the year in Kshi Kshetra. But the splendor of Rath Yatra is unique and incomparable. And finally, under the headline, Power of Second Life, the Times of India writes about discarded X-ray sheets transformed into stylish dresses, orange peels creating fabric, and for use for shoes refurbished for school children in Ladakh, showing India's journey towards sustainability. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Shagun. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Union Cabinet clears two elevated road projects worth over 25,000 crore rupees for Varanasi in Uttar Pradesh. Railway Ministry launches new beta version of IRCTC website to make train ticket booking simpler and more user-friendly. World-famous Rath Yatra of Lord Jagannath and his two siblings begins today at Puri in Odisha. US says it launched new wave of strikes on Iran aimed at protecting vessels in Strait of Hormuz. In football, defending champions Argentina beat England 2-1 in second semi-final of FIFA World Cup to set up title clash with Spain. And in men's cricket, second ODI of three-match series between India and England to be played in Cardiff this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मरकजी काबीना ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के सतह जमीन से ऊपर दो सड़क प्रोजेक्टों को मंजूरी दे दी है। रेलवे की वजारत ने ट्रेन के टिकट बुक करने के अमल को और ज्यादा सहल और साजगार बनाने की खातिर आईआरसीटीसी वेबसाइट के नए बीटा सिलसिले का आगाज किया है। भगवान जगन्नाथ और उनके दो भाई बहनों के आलमी शोहरत याफ्ता रथ यात्रा आज उड़ीसा के शहर पुरी में शुरू हो रही है। अमरीका ने कहा है कि उसने आबनाए हुरमुज में बहरी जहाजों के तहफ्फुज के मकसद से ईरान पर फिर हमले किए हैं। फुटबॉल में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना इंग्लैंड को 1-2 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है, जहां उसका मुकाबला स्पेन से होगा। और मर्दों के क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3-1 रोजा मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के सतह जमीन से ऊपर दो शाहराह प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में इक्तसादी उमूर की काबीना कमेटी ने वाराणसी में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और सफर में लगने वाला वक्त कम से कम करने की खातिर इन प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में नामानिकारों को जानकारी देते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर के अलावा दूसरा प्रोजेक्ट वाराणसी शहर में तकरीबन 43 किलोमीटर तवील एलिवेटेड कॉरिडोर से मुतालिक है, जिसमें 6 और 4 लेन होंगी। इस पर तकरीबन 11,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
3: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर, 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 10,998 करोड़ रुपीस की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर, 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा।
2: मरकजी काबीना ने भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग इको निजाम को मुस्तहकम बनाने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के अखराजात के साथ सेमीकॉन के दूसरे मरहले को भी मंजूरी दी है। जनाब वैष्णव ने कहा कि सेमीकॉन के पहले मरहले की रफ्तार को आगे बढ़ाते हुए मस्कुरा स्कीम का मकसद आलमी सतह पर सेमीकंडक्टर मंजरनामे पर भारत को आगे रखने के सरकार के अहद के सिलसिले में कदम बढ़ाना है। वजीर मौसूफ ने बताया कि सेमीकॉन के दूसरे मरहले के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए की मालियत की सरमायाकारी होने की उम्मीद है।
3: सेमीकॉन 2.0, 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माने प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकेंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP OSAT इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग

0: चुके हैं उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
1: जनाब वैष्णो ने कहा कि मरकजी काबीना ने 62,500 करोड़ रुपए के अखराजात के साथ मोबाइल फोन तैयार करने की स्कीम को भी मंजूरी दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के दरमियान भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जनाब मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में तकरीबन 14,700 करोड़ रुपये मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और उन्हें मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। रेलवे की वजारत ने ट्रेन के टिकट बुक करने के अमल को और ज़्यादा सहल और साजगार बनाने की खातिर इंडियन रेलवे कैटरिंग और टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC वेबसाइट के नए बीटा सिलसिले का आगाज़ किया है। IRCTC ने इस नई बीटा वेबसाइट को बेहतर बनाते हुए 4 अहम इकदाम किए हैं। मुसाफिर अब सभी जुमरों में सीटों की दस्तियाबी को देख सकेंगे। इसके अलावा टिकट बुक करने का अमल अब और ज़्यादा सहल हो जाएगा। इसके साथ साथ वेबसाइट में अब मुसाफिरों की तफसीलात महफूज रहेंगी, जिससे उन्हें दोबारा बुकिंग करने में आसानी होगी। इसके लिए वेबसाइट का पता है irctc.co.in/eticket/। दिल्ली के तारीखी लाल किले कॉम्प्लेक्स को 15 अगस्त को होने वाली 80वीं योम आज़ादी की तकरीबात तक आवाम के लिए बंद कर दिया गया है। योम आज़ादी के जश्न के लिए जारी तैयारियों के मद्देनज़र महकमे आसार कदीमा ने इस सिलसिले में एक हुक्मनामा जारी किया है। महकमे के एक अहलकार ने कहा है कि योम आज़ादी से कबल हर साल इस तरह के अहकाम जारी किए जाते हैं। मध्य प्रदेश से पहली बैनुल अक़वामी फ़्लाइट सर्विस का आगाज़ किया गया है। वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर से मुत्तहिद अरब अमारात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली बराह रास्त परवाज को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी का हमेशा से ये मानना है कि एक आम आदमी को भी हवाई जहाज़ में सफ़र करने का मौका मिलना चाहिए। रियासत की एविएशन पॉलिसी इसी नज़रिए के तहत तैयार की गई है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। उड़ीसा के शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई भगवान बलभद्र और छोटी बहन देवी सुभद्रा की आलमी शोहरत याफ्ता रथ यात्रा आज शुरू हो रही है। रथ यात्रा के सालाना फेस्टिवल के दौरान भगवान जगन्नाथ और उनके दो भाई बहन मखसूस रथों में गुंडीचा मंदिर जाते हुए लोगों को दर्शन का मौका फराहम करते हैं। रथ यात्रा को देखने के लिए मुल्क और बैरून मुल्क से लाखों अकीदतमंद वहां जमा हुए हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन श्री गुंडीचा मंदिर के अपने सालाना सफर पर रवाना हो रहे हैं और पुरी के पवित्र शहर की फजा जय जगन्नाथ की अकीदतमंदों के नारों से गूंज रही है। पुरी में आज सुबह सवेरे से तेज बारिश होने के बावजूद लाखों अकीदतमंद बारिश की परवाह न करते हुए पवित्र रथों का इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। खराब मौसम के तनाजुर में हुक्काम चौकसी बरत रहे हैं। मौसमियात महकमे ने खलीज बंगाल के ऊपर हवा के कम दबाव का हल्का बनने के जेर असर पुरी में बारिश के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
1: उधर झारखंड में सालाना रथ यात्रा पूरी रियासत में रवायती जोशोखरोश और अकीदत के साथ हो रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: जगन्नाथ चक्कानेन लीला चलवारे।
4: रांची के दुर्वा में तारीखी जगन्नाथपुर के मंदिर में आज सुबह मजहबी रसूमात का आगाज हो गया है। दोपहर बाद देवी देवताओं को रथ पर विराजमान कराए जाने के बाद शाम 5 बजे रथ यात्रा मासीबाड़ी के लिए रवाना होगी। जिला इंतजामिया ने CCTV निगरानी और बड़ी तादाद में सिक्योरिटी अहलकारों की तैनाती समेत वसी हिफाजती इंतजाम किए हैं। खुंटी में मकामी इंतजामिया ने कल तारीखी रथ मेले के लिए किए गए हिफाजती इंतजाम का जायजा लिया। रांची से महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस अली।
3: तू न संभाले तो हमें कौन संभाले।
1: गुजरात में अहमदाबाद के जमालपुर इलाके में भी 400 साल कदीम जगन्नाथ मंदिर से भगवान जगन्नाथ की 149वीं रथ यात्रा शुरू हो गई है। इसके लिए सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त किया गया है। बड़ी तादाद में अकीदतमंद दर्शन के लिए मंदिर के अहाते में इकट्ठा हुए।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा के इस विशेष प्रसारण में आप सभी श्रद्धालुओं का एक बार फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का विशेष यात्रा प्रसारण जो FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, OTT प्लेटफॉर्म वेव्स, न्यूज़ ऑन AIR ऐप के आराधना चैनल तथा DTH के माध्यम से देश और विदेश तक प्रसारित किया जा रहा है। और श्रोताओं, अब रुख करते हैं हमारे संवाददाता के पास। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं रहीम रिजवान जी, जो गांधरबल से हैं। जी रिजवान जी, बताइए इस वक्त आप जिस जगह पर मौजूद है वहां से श्री अमरनाथ जी यात्रा को लेकर सबसे बड़ी ताज़ा जानकारी क्या है? यात्रियों के उत्साह और प्रशासन की व्यवस्थाओं के बारे में हमें हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: खरमकदम करते हैं आपका। मैं इस वक्त बालतल में मौजूद हूं और श्री अमरनाथ जी यात्रा बालतल मुख्य मार्ग से आज 14वें रोज बीते दिनों की तरह सुचारू रूप से जारी है। श्रद्धालु बाबा बर्फानी के पवित्र दर्शन के लिए लगातार पवित्र गुफा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा यात्रा मार्ग पर सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं के समुचित प्रबंध किए गए हैं, जिससे श्रद्धालु संतोष व्यक्त कर रहे हैं। अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु पवित्र गुफा में दर्शन तथा प्रार्थना करते हैं, जिससे उन्हें मन को शांति प्राप्त होती है। श्रोताओं, आज बालतल के पूरे क्षेत्र में मौसम सुहाना है। खुशगवार मौसम के बीच बालतल बेस कैंप से 7,959 श्रद्धालु दर्शन के लिए गुफा की ओर रवाना हुए। बम बम बोली एवं जय बाबा बर्फानी का पवित्र नाद करते हुए जमीन कंट्रोल गेट पार करके गुफा की तरफ जाने वाले इन श्रद्धालु में 6,054 पुरुष, 1,612 महिलाएं, 120 बालक बालिका, 17 साधु, 10 साधियां एवं 146 सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। अगस्त्य बालतल मुखी मार्ग से पवित्र गुफा तक यात्रियों को ऊंचे पर्वतों के बीच 14 किलोमीटर का कठिन फासला तय करना पड़ता है, फिर भी बेशतर यात्री पद यात्रा करके ही पवित्र गुफा पहुँचते हैं, जिससे उन्हें मन को शांति प्राप्त होती है एवं उनका पवित्र सफर सुखद तरीके पर संपूर्ण हो जाता है। जबकि डांडी एवं गोडूं पर सवार होकर गुफा जाने वाले यात्री भी यहां के पूरे क्षेत्र की सुंदरता का आनंद लेते हैं। इस तरह देश के विभिन्न भागों से घाटी आगमन होने वाले हजारों की संख्या में श्रद्धालु आए रोज पवित्र गुफा पहुंचकर माथा टेकते हैं, पूजा पाठ में शिरकत करके प्रार्थना करते हैं, जिससे उन्हें अवश्य मन को शांति प्राप्त होती है तथा वे संतोष व्यक्त करके सुरक्षित वापस रवाना हो रहे हैं। इन सरकारी आंकड़ों के अनुसार बीती रात 11 बजे तक 21,667 बाबा बर्फानी के भक्तों ने शिवलिंगम के दर्शन किए एवं वे बालतल बेस कैंप सुरक्षित पहुंचे। देर रात गए तक बालतल बेस कैंप पहुंचने वाले इन श्रद्धालु में 15,381 पुरुष, 5,503 महिलाएं, 346 बालक बालिका, 86 साधु, 18 साधियां, 10 ट्रांसजेंडर एवं 323 सुरक्षा कर्मी भी शामिल थे। बालतल बेस कैंप में रात्रि विश्राम के बाद इन श्रद्धालुओं को छोटी बड़ी वाहनों में कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू भगवती नगर बेस कैंप की ओर जाने की अनुमति दी जाती है। श्रोताओं, पवित्र गुफा से बालतल बेस कैंप तक जिस तरह सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं, इसी तरह श्रीनगर कारगिल राजमार्ग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों अतराफ यात्रियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मी जगह जगह चाकू चौबंद रखे गए हैं, जो यात्री वाहनों को तरजीह बुनियादों पर आगे बढ़ने की अनुमति देते हैं। इस दौरान किसी भी सरकारी या प्राइवेट गाड़ी को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जाती है। इस बीच जिला प्रशासन ने यात्रा रूट के हर पड़ाव पर श्रद्धालुओं के लिए उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध रखी हैं। व्यवस्थाओं को लेकर यात्री बेहद संतुष्ट हैं। इस तरह बालतल मुखी मार्ग से तीर्थ यात्रा आज भी खुश असलूबी से जारी है। जी फैजा
0: जी, रहीम रिजवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप यात्रा के हवाले से हमारे श्रोताओं को महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया रहीम जी आपका।
1: धन्यवाद आपका।

विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानु यथा सद्मिद्वृधे।

0: करो। अगर हो चाहे यहाँ सुनना सही साइड है और दूसरे शहरों के दोस्त बन रहे।
1: श्री अमरनाथ जी यात्रा के इस विशेष प्रसारण में आप सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता श्रीनगर से इमरान नाइकू। इमरान नाइकू जी, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि इस समय यात्रा का समग्र माहौल कैसा है, यात्रियों का उत्साह, प्रशासन की तैयारियों और मौके पर की ताजा स्थिति के बारे में हमें विस्तार से बताइए।
0: थैंक यू वेरी मच फैजान साहब। चूंकि अमरनाथ जी यात्रा जारी है और आज भी हम देख रहे हैं कि अमरनाथ जी यात्री जो है इन्हें श्रीनगर के इस पांथा चौक ट्रांसिट कैंप से अमरनाथ जी यात्रा के पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किया गया है। और इस जत्थे में जो अलग अलग जत्थे रवाना किए गए आज सुबह, इनमें मेल फीमेल और साधु साध्वी भी शामिल थे और कुछ इसमें बच्चे भी शामिल थे। और दोनों रूट्स की तरफ रवाना किया गया और कल भी शाम को यहाँ दो अमरनाथ जी यात्रियों के जत्थे श्रीनगर के पांथा चौक ट्रांजिट कैंप में पहुंचे थे और यहाँ पे उन्होंने नाइट स्टे किया, उन्होंने यहाँ विश्राम किया। इस सिलसिले में जैसे कि पहले दिन से हम बता रहे हैं कि उनके लिए हर तरह की प्रशासन ने या गवर्नमेंट ने सुविधाएं रखी है, अरेंजमेंट्स किए हैं। वो चाहे खाने पीने की चीजें हो, लंगर हो, कम्युनिटी किचन हो, वो पीने का पानी हो, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी हो, या जितनी भी बेसिक जो फैसिलिटीज है उसको गवर्नमेंट ने इंश्योर किया है और वो फैसिलिटीज जो है अमरनाथ जी यात्रियों के लिए प्रोवाइड की जा रही है। प्रशासन के साथ साथ यहाँ जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, वॉलंटियर्स है, वो अपनी सर्विसेज जो है अमरनाथ जी यात्रियों के लिए दे रहे हैं। और इसके अलावा जो श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के जो अहलकार हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, या वो भी अपनी जो खिदमात है, जो अपनी सर्विसेज है, वो पहले दिन से ही अमरनाथ जी यात्रियों को प्रोवाइड कर रहे हैं। और यात्री मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों से पहुंच रहे हैं और यात्रा को लेके अपनी जो अपने ख्याल थे, अपना फीडबैक वो दे रहे हैं। और हम भी पहले दिन से इनसे मुसलसल बात कर रहे हैं और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए जो यात्री जिनका पहली मर्तबा यात्रा यहाँ पे है या जो कई सालों से यात्रा यहाँ पे किए लिए यहाँ पे आ रहे हैं, हर एक का एक अपना अलग एक्सपीरियंस है। लेकिन एक चीज जो सेम सबका है फीडबैक को लेके जब हम यात्रियों के बारे में बात करते हैं, वो है कि जो प्रशासन की तरफ से उनको फैसिलिटीज रखी गई है, जो यहाँ अरेंजमेंट्स किए गए, तो उस पर वो अपना एक पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं। और खासकर जो बीआरओ की तरफ से ट्रैक्स को बेहतर किया गया है और इसके अलावा जो पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ और बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से जितनी भी फैसिलिटीज अमरनाथ जी यात्रियों के लिए रखी गई है, तो इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि या बाकी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो यात्रियों के लिए फैसिलिटीज रखी गई है उसको लेके यात्री जो है अपना फीडबैक दे रहे हैं। साथ साथ जो श्रीनगर में एचएमटी इलाके में इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर एस्टैब्लिश किया गया है और इस कमांड कंट्रोल सेंटर से पूरी यात्रा को मॉनिटर किया जा रहा है और डिफरेंट गवर्नमेंट के जो मोर देन 25 डिपार्टमेंट्स है वो उनके जो लोग हैं, अहलकार हैं, वो पूरी इस यात्रा को मॉनिटर कर रहे हैं। और जहां पे भी किसी यात्री को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो या कहीं लगे कि कोई रुकावट पेश आ रही है तो विद इन नो टाइम कोऑर्डिनेशन के जरिए से उस प्रॉब्लम को दूर किया जा रहा है। सो एज ऑफ नाउ हम देख रहे हैं कि यात्रा बड़ी पीसफुल तरीके से जारी है, यात्री बहुत खुश है, अरेंजमेंट्स को लेके कोई शिकायत अभी तक नहीं है, प्रशासन के बारे में कोई शिकायत अभी तक नहीं है और यहाँ की हॉस्पिटलिटी, यहाँ का माहौल, यहाँ की फिजा, यहाँ के लोगों का व्यवहार को लेके यात्रियों का कहना है कि सब कुछ ठीक है और प्यार, मोहब्बत, अमन, भाईचारे और मजहबी हम

0: अंगी कमिनल हॉमिनी के साथ अभी यात्रा जो है जारी भी है और यात्रियों का ये फीडबैक भी है।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद इमरान नायकू जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए। और अगर आगे भी हमें कोई नई जानकारी आपकी जरूरत पड़ी तो हम दोबारा आपसे संपर्क करेंगे।

श्री अमरनाथ जी यात्रा की इस विशेष प्रसारण में आप सभी श्रद्धालुओं का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का विशेष यात्रा प्रसारण जो FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, OTT प्लेटफॉर्म वेव्स, न्यूज़ ऑन AIR ऐप के आराधना चैनल तथा DTH के माध्यम से देश और विदेश तक प्रसारित किया जा रहा है। जी अब बात करते हैं आज की यात्रा आंकड़ों की। आज 16 जुलाई 2026 को कुल 2555 श्रद्धालुओं ने श्री अमरनाथ जी की पवित्र पवित्र यात्रा की। इनमें 1975 पुरुष, 52 महिलाएं, 17 बच्चे, 5 साधु, 1 साध्वी और 45 सुरक्षा बलों के जवान शामिल हैं। इस प्रकार आज कुल 2595 यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। जी श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का विशेष यात्रा प्रसारण जो FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, OTT प्लेटफॉर्म वेव्स, न्यूज़ ऑन AIR ऐप के आराधना चैनल तथा DTH के माध्यम से देश और विदेश तक प्रसारित किया जा रहा है। और हमारी कोशिश है कि हम आप तक यात्रा की हर महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुँचाए, और इस दौरान हम अपने संवाददाता जो हमारे हैं उनके साथ भी हम संपर्क करते हैं और वो भी आपको इस हवाले से ताज़ा जानकारी देते हैं। अब समय हो चला है आकाशवाणी श्रीनगर से प्रसारित समाचार का। आइए सुनते हैं आकाशवाणी श्रीनगर से ताज़ा समाचार।

गायत्री मंत्र वैदिक संस्कृति की, हिंदू संस्कृति की एक महान धरोहर है। संस्कृत में इस मंत्र की परिभाषा कुछ यूं की गई है, गायंतम त्रायते इति गायत्री। गायंतम यानी जो भी कोई इसका उच्चारण करता है, त्रायते यह उसकी रक्षा करता है। वेदों द्वारा प्रदत्त इस महान मंत्र में अत्यधिक शक्ति है। इसकी महानता के दो मुख्य कारण हैं। पहला, इसके स्वरों में अद्भुत शक्तिशाली वाइब्रेशंस हैं, और दूसरा कारण है इसमें समाहित गूढ़ भाव। यह मंत्र एक प्रार्थना है आंतरिक ज्ञानोदय के लिए, जो मानव जीवन का अंतिम ध्येय है, जिसके बाद मांगने के लिए और कुछ नहीं बचता, जिसके बाद सारे मार्ग अपने आप आलोकित होते हैं, ईश्वर प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं। गायत्री मंत्र में तीन प्रकार के स्वर हैं, अनुदात, उदात एवं स्वरित। इन स्वरों में गायत्री मंत्र का यदि जाप किया जाए तो इसके अद्भुत कंपन में वो क्षमता है कि मानव जीवन में दुखों का निवारण कर दे। यदि ध्यान दें तो आप देखेंगे कि मनुष्य के अधिकांश दुखों का कारण है अज्ञान। यदि अज्ञान को ज्ञान के प्रकाश द्वारा आलोकित कर दिया जाए तो आप पाएंगे कि मनुष्य के बहुत से दुख दूर हो जाते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अज्ञानेन तु ज्ञानम आवृत्तम तेन मुह्यंत जंतवा। अज्ञानेन, अज्ञान के आवरण से हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि ढकी हुई है, और इस कारण मानव जाति दुखों के भंवर में फंसी तिलमिला रही है। गायत्री मंत्र इस अज्ञान के आवरण को निकाल फेंकने का एक अचूक रामबाण नुस्खा है। एक बार अज्ञान का यह पर्दा हटा, हम इस काबिल हुए कि सच्चाई को देख और समझ सकें, तो तुरंत उन सारे दुखों का अंत हो जाएगा जो अज्ञान के गर्भ से जन्म कर हमारे जीवन रूपी चंदन पर सर्पों की भांति लिपटे हुए हैं। ये सारे दुख वास्तविक भले ही हों पर नाजायज हैं, अवैध हैं। मित्रों, ध्यान से सुने इस गूढ़ सत्य को। हम ब्रह्मांड में रहते हैं और हमारे भीतर एक ब्रह्मांड बसा हुआ है। इस सत्य के दोनों ही पहलू समझने आवश्यक हैं। हम ब्रह्मांड में रहते हैं, सभी जानते हैं, हमारे भीतर एक ब्रह्मांड रचा बसा है, बहुत कम लोग जानते हैं। गायत्री मंत्र हमें शक्ति के, ज्ञान के स्रोतों से, ऊर्जा के स्रोतों से जोड़ता है, दोनों ओर, बाहरी ब्रह्मांड में भी तथा भीतरी ब्रह्मांड में भी। इन दोनों स्रोतों का निर्देश किया गया है गायत्री में सवितुः शब्द में। सवितुः का शाब्दिक अर्थ है संस्कृत में सूर्य, भास्कर, रवि, आदित्य, दिवाकर या प्रभाकर, जो भी नाम आप दे लें। गायत्री मंत्र एक प्रार्थना है अपने बाहरी रूप में भगवान भास्कर के प्रति, जो बाहरी ब्रह्मांड का प्रतीक है, और अपने आंतरिक स्वरूप में गायत्री मंत्र एक प्रार्थना है हमारे आंतरिक सूर्य के प्रति, और ये आंतरिक आदित्य है हमारी चेतना। गायत्री मंत्र हमें शक्ति के, ऊर्जा के इन दो महत्वपूर्ण स्रोतों से जोड़ता है, एक बाहरी सूर्य से, एक आंतरिक आदित्य से, हमारी चेतना से। अतः गायत्री मंत्र में प्रकाश की प्रार्थना है, धियो योनः प्रचोदयात्, अर्थात हम सभी ज्ञान के प्रकाश से आलोकित हों। यहां एक ध्यान देने योग्य बात है, हालांकि प्रार्थना एक अकेले व्यक्ति द्वारा की जा रही है, परंतु फल की प्रार्थना, ज्ञानोदय की कामना सभी के लिए की जा रही है। गायत्री मंत्र में धियो योनः प्रचोदयात् की कामना सर्वप्रधान है, अकेले प्रार्थी के लिए नहीं। यह प्रार्थना सभी का समावेश करके की गई है, अकेले के हित की मांग नहीं है इसमें। गायत्री मंत्र में सवितुः शब्द का प्रयोग है सूर्य के संदर्भ में। सूर्य आलोकित तो करता है परंतु स्वयं प्रदूषित नहीं होता,
ठीक इसी तरह आपकी आंतरिक चेतना का सूर्य आपके मन को, आपके विचारों को, आपकी भावनाओं को प्रकाश देता है, किंतु इनमें से किसी के द्वारा चेतना का सूर्य स्वयं प्रदूषित नहीं होता। इस बात के गहन अर्थ को आत्मसात करके यदि हम अपनी चेतना के सूर्य को प्रकाशमान कर सकें तो समझिए ज्ञानोदय हुआ। ज्ञानोदय का एक और महत्वपूर्ण पहलू है स्वयं के वास्तविक स्वरूप को समझना। हम मात्र यह शरीर नहीं हैं, क्योंकि शरीर को देखने वाला कोई और शरीर के भीतर बैठा है। हम केवल विचार, मन, भाव या बुद्धि भी नहीं हैं, क्योंकि इन सब की ओर निहारने वाला कोई और भीतर बैठा है, और यह निहारने वाला और कोई नहीं आपकी चेतना है। इस चेतना पर शरीर और मन का कोई असर नहीं पड़ता। इस चेतना को गायत्री मंत्र में ओम के प्रणव शब्द से दर्शाया गया है। यह चेतना शरीर की तीनों ही स्थितियों में भू, भुवः, सुवः, अर्थात जागृत, स्वप्नावस्था एवं निद्रावस्था में व्याप्त रहती है अपनी चौथी तुरीयावस्था को लेकर। चेतना की तुरीयावस्था स्थिति है मौन की, शून्य की। मनुष्य की चेतना इस शून्य की स्थिति के द्वारा इस मौन की स्थिति में अन्य तीन स्थितियों में व्याप्त रहती है। यही शून्य की स्थिति चेतनावस्था सूर्य के समरूप बताई गई है सवितुः शब्द द्वारा। बाहरी सूर्य की तरह यह चेतना का आंतरिक सूर्य भी दैदीप्यमान दैवी स्वरूप है, भर्गो देवस्य है। ऐसे दैदीप्यमान दैवी चेतना सूर्य पर धीमहि ध्यान लगाते हैं। मैं यह चेतना हूं जो ओम के नाम से दर्शाई गई है, जो मौन है, जो शून्य है, जो जागृत, स्वप्न एवं निद्रा तीनों ही अवस्थाओं में व्याप्त है, जो बाहरी सूर्य की तरह दैवी और दैदीप्यमान है। हम ऐसे चेतना सूर्य पर धीमहि ध्यान लगाते हैं। यदि हम यह भावार्थ सच्चे अर्थों में समझ सकें तो जानिए ज्ञानोदय हुआ। गायत्री मंत्र का जप करने की पद्धति क्या है? यदि आप गायत्री मंत्र बाहरी सूर्य नारायण के प्रति प्रार्थना के रूप में जप रहे हैं तो इसका जाप दिन के समय ही करें, और यदि अपने आंतरिक सूर्य अपनी चेतना के प्रति ज्ञानोदय की भावना का ध्यान कर रहे हैं तो दिन या रात किसी भी समय करें। सर्वोत्तम समय है सूर्योदय का, इसके बाद सबसे उत्तम समय है सूर्यास्त के क्षण। इन दोनों में से किसी भी समय भगवान भास्कर की ओर मुख करके एक आसन पर बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद करें और मध्यम स्वर में, स्वर न बहुत धीमा हो और न बहुत ऊंचा, 7 बार गायत्री मंत्र का पाठ करें। 7 बार, क्योंकि योग के अनुसार मानव शरीर में 7 महत्वपूर्ण चक्र हैं। हर चक्र का ध्यान करते हुए 1 बार गायत्री का पाठ करें। इसके उपरांत 7 बार मन ही मन में जाप करें, अपने आंतरिक सूर्य का ध्यान करते हुए, अपनी चेतना में ज्ञानोदय की जागृति की कामना लिए। इसके पश्चात मौन की, शून्य की स्थिति में कुछ देर रहें, तत्पश्चात आंखें खोलें। मित्रों, बाहरी सूर्य की आराधना के रूप में गायत्री मंत्र एक प्रार्थना है, एक प्रेयर है, और आंतरिक सूर्य अपनी चेतना की जागृति एवं ज्ञानोदय के भाव के रूप में गायत्री मंत्र एक ध्यान है, एक मेडिटेशन है। सारे दिन मन में यह भाव लिए रहें कि आपके अपने भीतर आपकी चेतना एक आंतरिक सूर्य है जो साक्षी है आपके शरीर की, आपके मन की, भावनाओं एवं विचारों की, जो आलोकित कर रही है आपके भीतरी ब्रह्मांड को, ठीक उसी तरह जिस तरह सूर्य आलोकित कर रहा है बाहरी ब्रह्मांड को। इस भीतरी चेतना को ओम शब्द से संबोधित किया गया है
जो शून्य और मौन की अवस्था को लेकर आपके जीवन की तीनों अवस्थाओं जागृत, स्वप्न एवं निद्रा में व्याप्त है। जिस आसन का आप उपयोग कर रहे हों, वह आसन केवल इसी जप के लिए आप ही उपयोग करें, ताकि जिन वाइब्रेशंस की उत्पत्ति हो रही हो वो अपवित्र न हो। गायत्री मंत्र के भाव से, प्रार्थना से अपनी चेतना को हर समय आलोकित रखिए और फिर देखिए कि यह प्रकृति, यह विश्व, यह रचना कितनी सुंदर है। इसकी सुंदरता की हर कड़ी में उस रचनाकार का आभास है। गायत्री मंत्र की यह प्रार्थना आपका संपूर्ण समर्पण है उस रचनाकार के प्रति।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का विशेष यात्रा प्रसारण। इस विशेष प्रसारण के दौरान हम आप तक श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी हर महत्वपूर्ण और प्रामाणिक जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यात्रा मार्ग की वर्तमान स्थिति, मौसम के हाल के साथ साथ प्रशासन द्वारा जारी ताज़ा सूचनाओं से भी हम आपको आगाह करते रहेंगे। यात्रा के दौरान अपना यात्रा परमिट और पहचान पत्र हमेशा अपने साथ रखें। मौसम में अचानक बदलाव हो सकता है, इसलिए रेनकोट और गर्म कपड़े साथ रखना न भूलें। और आप सभी से निवेदन है कि यात्रा के दौरान प्रशासन द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन करें। सुरक्षित यात्रा ही सफल यात्रा है।

0: यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम एक महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का विशेष यात्रा प्रसारण जो FM बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, OTT प्लेटफॉर्म वेव्स, न्यूज़ ऑन AIR ऐप के आराधना चैनल तथा DTH के माध्यम से देश और विदेश तक प्रसारित किया जा रहा है। और मैं हूं फैजान कुरैशी। यात्रा के दौरान अपना यात्रा परमिट और पहचान पत्र हमेशा अपने साथ रखें। मौसम में अचानक बदलाव हो सकता है, इसलिए रेनकोट और गर्म कपड़े साथ रखना न भूलें। आप सभी से निवेदन है कि यात्रा के दौरान प्रशासन द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन करें। सुरक्षित यात्रा ही सफल यात्रा है।
1: जानकारी। यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
2: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्ट पेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्री पेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहनें। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
0: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्टपेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का विशेष यात्रा प्रसारण जो FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, OTT प्लेटफॉर्म वेव्स, न्यूज़ ऑन AIR ऐप के आराधना चैनल तथा DTH के माध्यम से देश और विदेश तक प्रसारित किया जा रहा है। इस विशेष प्रसारण के दौरान हम आप तक श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी हर महत्वपूर्ण और प्रामाणिक जानकारी पहुंचा रहे हैं। यात्रा मार्ग की वर्तमान स्थिति, मौसम के हाल के साथ साथ प्रशासन द्वारा जारी ताज़ा सूचनाओं से भी हम आपको लगातार आगाह करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। यात्रा के दौरान अपना यात्रा परमिट और पहचान पत्र हमेशा अपने साथ रखें। मौसम में अचानक बदलाव हो सकता है, इसलिए रेनकोट और गर्म कपड़े साथ रखना न भूलें। आप सभी से निवेदन है कि यात्रा के दौरान प्रशासन द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन करें, क्योंकि सुरक्षित यात्रा ही सफल यात्रा है।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का विशेष यात्रा प्रसारण, जो FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, OTT प्लेटफॉर्म वेव्स, न्यूज़ ऑन AIR ऐप के आराधना चैनल तथा DTH के माध्यम से देश और विदेश तक प्रसारित किया जा रहा है। इस विशेष प्रसारण के दौरान हम आप तक श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी हर महत्वपूर्ण और प्रामाणिक जानकारी पूछा रहे हैं। यात्रा मार्ग के वर्तमान स्थिति, मौसम के हाल के साथ साथ प्रशासन द्वारा जारी ताज़ा सूचनाओं से भी आपको हम लगातार अवगत कर रहे हैं। यात्रा के दौरान अपना यात्रा परमिट और पहचान पत्र हमेशा अपने साथ रखें। मौसम में अचानक बदलाव हो सकता है, इसलिए रेनकोट और गर्म कपड़े साथ रखना न भूलें। आप सभी से निवेदन है कि यात्रा के दौरान प्रशासन द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन करें, क्योंकि सुरक्षित यात्रा ही सफल यात्रा है। अब बात करते हैं आज की यात्रा के आंकड़ों की। आज 16 जुलाई 2026 को कुल 2,595 श्रद्धालु ने श्री अमरनाथ जी की यात्रा की। इनमें 1,975 पुरुष, 52 महिलाएं, 17 बच्चे, 5 साधु, 1 साध्वी और 45 सुरक्षा बलों के जवान शामिल है। इस प्रकार आज कुल 2,595 यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। और श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का। पहलगाम 100.1 MHz, OTT प्लेटफॉर्म वेव्स, न्यूज ऑन एयर ऐप के आराधना चैनल तथा DTH के माध्यम से देश और विदेश तक प्रसारित किया जा रहा है।

ये आकाशवाणी है। अब हम आपको महाप्रभु जगन्नाथ जी के धाम ओडिशा के पावन क्षेत्र पुरी लिए चलते हैं, जहां से आप वहां आयोजित हो रही रथ यात्रा का आंखों देखा हाल सुनेंगे। विवरण दे रहे हैं श्री मोहनलाल मजीठिया हिंदी में और प्रोफेसर रजनीकांत नायक अंग्रेजी में। आइए श्री जगन्नाथ धाम पुरी चलें।

0: This is Akashvani. We now take you over to the Mahaprabhu Jagannath Ji Dham, Pavan Chitra Puri in Odisha, for the live broadcast of the celebration of Rath Yatra. Our commentators are Sri Mohanlal Majithia in Hindi and Professor Rajinikant Nayak in English.
1: Ye Akashvani hai. Ab hum aapko Mahaprabhu Jagannath Ji ke Dham, Odisha ke Pavan Kshetra Puri liye chalte hain, jahan se aap वहाँ आयोजित हो रही रथ यात्रा का आंखों देखाल सुने के विवरण दे रहे हैं श्री मोहनलाल मजीठिया हिंदी में और प्रोफेसर रजनीकांत नायक अंग्रेजी में. आइए श्री जगन्नाथ धाम पुरी चले.
2: जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ.

आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी धाम से रथ यात्रा के इस पावन अवसर पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे साथ मेरे साथी कमेंटेटर अंग्रेजी में प्रोफेसर रजनीकांत नायक यहां उपस्थित हैं। मंदिर प्रशासन की जो कार्यालय है उसके छत पर हमें इस बूथ में हम बैठे हैं और हमारे बिल्कुल सामने तीन सुसज्जित रथों पर ठाकुरों के हम दर्शन करेंगे और सामने मेरे श्री मंदिर है, श्री मंदिर की शिखर पर नील चक्र है, नील चक्र से बंधा हुआ पतिता पावन ध्वज है और ये समूचा दृश्य बहुत ही आकर्षक, बहुत ही मनभावन लग रहा है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, श्रोताओं को, हमारे आकाशवाणी के श्रोताओं को, अभी तक जो मंदिर की अंदर की जो नीतियां थी भगवान के पूजा की, उन्हें सुबह जगाकर, उन्हें रात के वस्त्र को उतारकर नए वस्त्रों से सजाकर, उनकी जो दिनचर्या होती है वो सारी नीतियां समापन होने के बाद धीरे धीरे एक के बाद एक रथों पर उन्हें लाया जा रहा है। सबसे पहले चक्रराज सुदर्शन महाराज, उन्हें रथों पर लाया जाता है। जैसे कोई बहुत ही गणमान्य व्यक्ति किसी स्थान पर यात्रा करते हैं तो सबसे पहले उनके सुरक्षा अधिकारी वहां जाकर सुरक्षा व्यवस्था की जो निगरानी करते हैं, देखभाल करते हैं और संतुष्ट होने के बाद वो खबर भेजते हैं कि हाँ, यहाँ सब कुछ कुशल मंगल है। उसके बाद वो गणमान्य व्यक्ति वहां पधारते हैं। ठीक उसी प्रकार सुदर्शन महाराज महाप्रभु श्री जगन्नाथ के सुरक्षा अधिकारी हैं। सबसे पहले उन्हें सेवक लोग अपने दोनों हाथों से उचक कर आगे पीछे झूला झुलाते हुए लाते हैं और तीन रथों में बीच का जो रथ है देवी सुभद्रा जी का रथ, जिसे देवदलन या दर्पदलन कहा जाता है, काले और लाल वस्त्र से आच्छादित बहुत ही सुंदर कारुकार्य है, बहुत ही सुदृश्य है, उस रथ पर उन्हें विराजमान किया जाता है सुदर्शन महाराज को। उसके बाद आते हैं बड़े भाई दाऊ जी, बलभद्र जी। बलभद्र जी, उनके दोनों हाथ हैं, दोनों हाथ को पकड़कर पीछे रेशम की डोरी से बांधकर सेवक लोग उन्हें झुलाते झुला झुलाते रथ पर विराजमान करवाते हैं। ये दोनों अभी उपस्थित हो चुके हैं। ये जो प्रक्रिया है श्री मंदिर के भीतर से ठाकुरों को बाहर बड़दांड पर लाना और रथों पर विराजमान कराना, इस प्रक्रिया को यहाँ की जो श्री मंदिर की जो भाषा है उसे पहंडी कहते हैं। वैसे देखा जाए तो पहंडी शब्द जो है वो संस्कृत के पदहुंडन शब्द से आया है। पदहुंडन मतलब एक एक कदम। तो एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए भगवान श्री जगन्नाथ को, श्री बलभद्र जी को, माता सुभद्रा को उस पहंडी प्रक्रिया में लाना जाता है। देवी सुभद्रा, उनके हाथ पांव नहीं है तो उन्हें सेवक लोग अपने कंधों पर उचक कर लाते हैं, जिसे शून्य पहंडी कहा जाता है। वो सेवकों के कंधे पर सोते हुए आसमान की तरफ अपना मुंह करके उन्हें लाया जाता है और बीच वाले रथ में उन्हें विराजमान करवाया जाता है। पहले सुदर्शन महाराज, फिर बलभद्र और देवी सुभद्रा अपने अपने रथों पर विराजमान हो चुके हैं। बलभद्र जी का रथ जो है वो लाल और हरे रंग के वस्त्र से आच्छादित है, उसका नाम है कालध्वज। और अब सभी बहुत ही आतुर होकर देख रहे हैं कब अपने इष्ट देव, जगत के नाथ, कल्याणकारी भगवान श्री जगन्नाथ पधारेंगे। जैसी कि हमें सूचना मिली है, भगवान श्री जगन्नाथ जी की पहंडी शुरू हो चुकी है। घंट ध्वनि, शंख ध्वनि, हरि बोल, जय जगन्नाथ के उद्घोष के साथ सभी भक्त, जो श्रद्धालु यहाँ लाखों की संख्या में उपस्थित हुए हैं, धुआंधार बारिश को नज़रअंदाज करके सभी अपने भगवान के दर्शन के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं इस बड़दांड में। यह बहुत ही रोचक दृश्य है। भगवान श्री जगन्नाथ जी आएंगे, रत्न सिंहासन को त्याग कर

0: यहाँ की जो रथ यात्रा है, ये देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं को खींच लाता है अपनी ओर। कोई भी भक्त एक ऐसा अवसर खोना नहीं चाहता जहाँ उसे अपने इष्ट देव के, अपने प्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन उसके सामने बड़दांड पर मिल जाएं। बड़दांड यानी कि श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक का करीब 3 मील का सीधा रास्ता, जिस रास्ते तीनों रथ यहां से खींचे जाएंगे एक के बाद एक। सबसे पहले बलभद्र जी का रथ खींचा जाएगा, फिर देवी सुभद्रा जी का, और उसके बाद भगवान श्री जगन्नाथ जी बड़े आराम से बड़े भाई को और बहन को आगे भेजकर फिर बाद में अंत में वो आएंगे। वो अपने मन के मालिक हैं, अपने मर्जी के मालिक हैं। जब रथ खींचे जाएंगे तब करीब करीब 3 बजे, 3:30 बजे का समय जो है उस समय खींचे जाएंगे। अभी हम देख रहे हैं जो भक्त हैं वो इंतज़ार में हैं, क्योंकि बड़े भाई दाऊ जी महाराज वो अपने ताल ध्वज रथ पर विराजमान हो चुके हैं, माता सुभद्रा देवदलन रथ पर विराजमान हो चुकी हैं, और उनके रथ में सुरक्षा अधिकारी के रूप में चक्रराज सुदर्शन भी मौजूद हैं। इंतजार है तो बस जगत के नाथ जगन्नाथ जी का। किसी को चकानयन के दर्शन की इच्छा होती है तो किसी को रथ खींचने की लालसा, और अगर रथ खींच ना सके तो रथ की पवित्र रस्सी को छू भर लेने से जो आत्मसंतोष मिलता है उसी से ही भक्त प्रसन्न हो जाता है। भक्त और भगवान के मिलन का यह दृश्य अद्भुत है, अलौकिक है। महाप्रभु की महिमा का वर्णन करने बैठे तो शब्द कम पड़ जाते हैं। बड़े बड़े चक्राकार नयन जिसकी पलक नहीं पड़ती, प्रभु जी के ऐसे रूप को देखकर भक्त के हृदय में श्रद्धा और भक्ति का लहर उठने लगते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का एक छंद याद आ रहा है, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। अर्थात निराकार ईश्वर बिना पैरों के चलते हैं, बिना कानों के सुनते हैं, बिना हाथों के ही कई प्रकार के कार्य करते हैं, बिना मुख के जगत के सारे रसों का आनंद लेते हैं, और बिना वाणी के सर्वश्रेष्ठ वक्ता कहलाए जाते हैं। ऐसे महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का यहाँ आना स्वाभाविक बात है। जैसा कि मैंने पहले कहा, स्कंद पुराण में वर्णित है, रथेतु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। रथ पर वामन रूपी भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन को अगर एक बार श्रद्धालु दर्शन कर लेता है तो उसे पुनर्जन्म लेना नहीं पड़ता, वो जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्त हो जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस बीच मैं देख रहा हूँ बारिश की बूंदें अभी भी जारी हैं, फिर भी श्रद्धालुओं की भक्ति में, उनकी श्रद्धा में, उनके विश्वास में, उनके उल्लास में कोई कमी नहीं है। वो आतुर नयन से इस बड़दांड पर आंखें गाड़े बैठे हैं। हमारे महाप्रभु आएंगे और अपने रथ पर विराजमान होंगे, फिर हमें अपने बाहें फैलाए वो हमारा स्वागत करेंगे, हमसे मुलाकात करेंगे, हमें बुलाएंगे कि आओ मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए, तुम्हें आलिंगन करने के लिए व्याकुल हूँ, और चलो मेरी रथ की डोर को पकड़ो, खींचो और मुझे अपने जन्म बेदी तक ले चलो। अब आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं निवेदन करूंगा मेरे साथी कमेंटेटर प्रोफेसर रजनीकांत नायक जी से अंग्रेजी में। जय जगन्नाथ।
1: Brothers and sisters, as I was telling you, the mighty chariots of Lord Jagannatha and his divine siblings roll down the grand avenue of Puri with its thronging assemblies of millions of drunken devotees. I want to emphasize, people have to be drunken in order to brave the rains, and I have seen them literally doing the same thing in the scorching heats of summer also. They don't seem to care because it is their Lord, it is their God, it is their Jagannatha who is going on a journey, and it is they are all bound to follow him.

0: blue mountain to the lowliest of the lowly among us, because he is supposed to be in his Patita Pavana avatar. Patita Pavana means he is a savior of the lowliest of the lowly, savior of the fallen. And he proves once for all that God is not exclusive or remote, but he is accessible to human prayers, to the reaches of man. In fact, that Godhead being accessible to humans is also the subject of matter of great classics like Prologue of Chaucer, the Iliad of Homer, the Odyssey of Homer, or even our very own Ramayana and Mahabharata. With this, I pass on the mic to my fellow commentator, Majithia ji, to continue the commentary in Hindi. Majithia ji.
1: धन्यवाद प्रोफेसर रजनीकांत नायक जी. जैसा कि मैंने अभी श्रोताओं को बताया कि पौंडी प्रक्रिया से बड़े भाई बलभद्र, देवी सुभद्रा अपने अपने रथों पर विराजमान हो चुकी हैं और सभी को इंतज़ार है जगत के नाथ भगवान श्री जगन्नाथ जी का. और ऐसा लग रहा है मंदिर के भीतर कुछ हलचल हो रही है. कदाचित जगन्नाथ जी रत्न सिंहासन से नीचे उतर आए हैं. मेरे सामने रथों के आगे कई तरह के भक्त अपनी अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जो यहां से मैं देख पा रहा हूं. कुछ नृत्यांगनाएं ओडिशा की पारंपरिक नृत्य कला ओडिसी नृत्य का प्रदर्शन कर रही हैं. यही ओडिसी नृत्य वो जगन्नाथ जी को समर्पित करती हैं. कोई हनुमान जी का वेश धारण कर, कोई शिव जी का वेश धारण कर भगवान के सामने अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है. ये एक रस्सी से बना चक्र घुमा रहे हैं, जिसे बनाटी कहा जाता है. यहाँ की ये पारंपरिक कला है जिसको यहाँ ये लोग प्रदर्शित कर रहे हैं. इस प्रकार जो जिस भी कला में माहिर है वो अपनी अपनी कला को भगवान की सेवा में अर्पित कर अपने आप को धन्य महसूस करते हैं. अभी तक जगन्नाथ जी के श्री मंदिर से बाहर आने की कोई सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई है. बल्कि जो हमें लग रहा है, भक्तों में जो उत्साह लग रहा है, जय जगन्नाथ की जो गूंज हमें सुनाई दे रही है, उससे लग रहा है कि कुछ ही देर में भगवान श्री जगन्नाथ यहाँ पधारेंगे. इतने में मैं अपने श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि जगन्नाथ जी को, बलभद्र जी को और देवी सुभद्रा जी को सर पर एक सुंदर सा मुकुट नुमा टाहिया पहनाया जाता है. यहाँ की स्थानीय भाषा में उसे टाहिया कहते हैं. टाहिया एक बहुत ही सुंदर मुकुट है, बहुत ही पवित्र और पारंपरिक आभूषण होता है, जिसे रथ यात्रा और स्नान पूर्णिमा जैसे विशेष अवसरों पर ठाकुरों को पहनाया जाता है. मुख्य रूप से टाहिया सोल से बना होता है. सोल यानी एक प्रकार की प्राकृतिक घास जो बहुत ही हल्की और स्पंज जैसी मुलायम होती है. इसे छीलकर अंदर का सफ़ेद और चमकदार गुदा निकाला जाता है और उस गुदे से सुंदर कलाकृतियाँ बनती हैं, जैसे कि सोल से बनी कमल की पंखुड़ियाँ, मोर के पंख के आकार की नक्काशी और सोल से ही बने कदम्ब के फूल टाहिया को बहुत ही आकर्षक बनाते हैं. ये इतनी नाजुक और बारीक कारीगरी होती है कि इसे बनाने में कई दिन और कई कारीगरों को काफ़ी समय लगता है. जगन्नाथ मंदिर की परंपरा के अनुसार टाहिया, रथ यात्रा, बाहुड़ा यात्रा, नीलाद्री बीजे के दिन देवताओं को पहनाए जाते हैं. जब भगवान रत्न सिंहासन से उतरकर रथ की ओर जाते हैं, तब इसे बहुत ही पारंपरिक तरीके से उनके सिर पर पहनाया जाता है, उन्हें सिर पर धारण कराया जाता है. लेकिन रथों तक आते आते उनके जो आतुर भक्त लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो टाहिया को खींचकर उससे एक टुकड़ा अपने अधिकार में लेने की कोशिश करता है. भगवान भक्तों का ये जोश, ये उल्लास, ये उन्माद देकर स्वयं खुश होते हैं और ये कहते हैं कि चल आज तेरी इच्छा भी पूर्ण हो जाए, ले जा मेरे टाहिया का एक अंश, उसे संभाल कर रख, तेरा मंगल हो. ऐसा आशीर्वाद देकर भगवान भक्त की इस मनोकामना पूर्ण करते हैं. कुछ ही देर में लग रहा है कि भगवान जगन्नाथ मंदिर से बाहर आएंगे और अब

0: right thing, because our Lord happens to be Patita Pavana, who literally descends from the Ratna Bedi to give a darshan to his millions of devotees who seem to be coming to get instant moksha by having just a look at him, or by pulling his ropes, pulling the ropes of the cars, or even, you know, literally competing with themselves. As the Pahundi Bija continues, we watch them literally tearing apart in a mob frenzy. They seem to be doing it. They tear apart the tahiya, as my fellow commentator was telling, which is a very beautiful tiara around the heads of the lords. And the tahiya is literally torn to pieces. Such beautiful, you know, relationship between the bhakta and the Bhagavan. You know, it is perhaps Puri alone which shows this in such a beautiful way. Majithia ji, please continue.
1: अभी भी हम इंतज़ार कर रहे हैं भगवान श्री जगन्नाथ जी के आने का. वो अभी भी मंदिर के भीतर से हैं और बाहर अभी तक वो आए नहीं हैं. इस बीच मैं हमारे श्रोताओं को बताना चाहूँगा, मेरे सामने जो भव्य श्री मंदिर है उसके शिखर पर नीलचक्र है. नीलचक्र अष्ट धातु से निर्मित है और ये नीलचक्र भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का प्रतीकात्मक रूप मात्र है. उस नीलचक्र की ऊंचाई लगभग 11 फीट 8 इंच की है और गोलाई 7 फीट 6 इंच की, जबकि वजन लगभग 1500 किलो तक. मंदिर की चूड़ा या शिखर पर नीलचक्र के साथ ध्वजा बंधी होती है, या बाना, यहाँ की भाषा में उसे बाना कहते हैं, जिसे पतिता पावन बाना कहा जाता है. जो श्रीमंदिर तक आ नहीं पाते वो दूर से ही श्रीमंदिर के शिखर पर बंधे इस पतिता पावन बाना को देखकर धन्य हो जाता है. उसे ऐसा लगता है कि मैंने स्वयं अपने इष्ट देव भगवान श्री जगन्नाथ जी का दर्शन कर लिया है. तो पतिता पावन बाना यानी कि पतितों के उद्धार के लिए ये भगवान श्री जगन्नाथ जी का स्वरूप है. ये गाढ़े लाल या पीले रंग का होता है. इसका आकार त्रिकोणाकार होता है और इसके बीच श्वेत रंग से चंद्र और बिंदु उसमें बनाए जाते हैं और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है दूर से देखने पर. मंदिर के शिखर पर से नील चक्र पर बंधा हुआ ये पतिता पावन ध्वज बहुत ही आकर्षण होता है इसका. प्रतिदिन संध्या समय पुराने ध्वज को नीचे उतारा जाता है और नया ध्वज बांधा जाता है. इस कार्य के लिए विशेष सेवक होते हैं जिन्हें गरुड़ सेवक कहा जाता है. ये गरुड़ सेवक यानी कि उनके इष्ट देव गरुड़ होते हैं. ये गरुड़ सेवक प्रतिदिन संध्या में नए ध्वज लेकर मंदिर के शिखर पर चढ़ते हैं, पुराने ध्वज को उतार कर नया ध्वज बांधते हैं और जब मंदिर से शिखर से नीचे उतरते हैं तो मंदिर की ओर पीठ करके नीचे उतरते हैं. ये परंपरा रही है, विशेष परंपरा नील चक्र पर बाना बांधने की और बांधकर उतरने की. ये सदियों से चली आ रही परंपरा है. 12वीं सदी में बना ये भगवान का मंदिर बहुत ही आकर्षण का केंद्र रहा है. देश भर से, विदेशों से लाखों श्रद्धालु आते हैं. कई भक्त ऐसे होते हैं जिन्हें परंपरा अनुसार मंदिर के अंदर प्रवेश वर्जित है. इसीलिए शायद रथ यात्रा का ये अवसर है. भगवान पहले मानवीय लीला के अंतर्गत बीमार होते हैं और 15 दिनों तक वो दर्शन नहीं देते हैं अपने भक्तों को. फिर स्वस्थ होकर जड़ी बूटी और विशेष प्रकार की आयुर्वेदिक औषधि से उनकी चिकित्सा होती है. फिर भगवान स्वस्थ होकर नव यौवन का भेष लेते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं और आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को रथ पर विराजमान होकर श्री गुंडीचा की ओर प्रस्थान करते हैं. ये है श्री मंदिर की जो सामान्य परंपरा. प्रतिवर्ष जो श्रद्धालु मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं पाते हैं उनके लिए ऐसा एक अलौकिक ये अवसर होता है जब वो अपने भगवान को अपने सामने देख पाते हैं.

0: ऐसे कई किंवदंती हैं, दंत कथाएं हैं जो भगवान और भक्त के बीच मधुर संपर्क को, मधुर संबंध को दर्शाता है। जैसे कि एक किस्सा मुझे याद आ रहा है भक्त सालबेग का। भक्त सालबेग जिसकी समाधि इसी बड़दांड में श्रीमंदिर से गुंडीचा जाते समय बीच में आती है। भक्त सालबेग वैसे यवन थे, वो हिंदू नहीं थे, लेकिन उड़ीसा के हर प्रत्येक घर में आज भी उनके रचित उड़िया भजन गाए जाते हैं बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से, बड़े श्रद्धा भाव से। जैसा कि एक भजन है, आहे नीळ शैळ प्रबळ मत बारण मुआर त नळिनी बन कु कर दळन। एक कवि ने हिंदी में इसका अलग भावांतर किया, ऊपर नीला अंबर है नीचे सागर नीला, नील शैल के नील माधव अनोखी तेरी लीला, अनोखी तेरी लीला। इस समय अभी भी हम देख रहे हैं श्रद्धालु आतुर होकर श्री मंदिर के मुख्य द्वार सिंह द्वार की ओर देख रहे हैं, कब मेरे आराध्य, मेरे इष्ट देव, मेरे प्रभु भगवान श्री जगन्नाथ आएंगे, मुझे दर्शन देंगे। उनके चक्राकार नयन देखकर मैं अपने आप को धन्य हो जाऊंगा और मेरा जन्म सार्थक हो जाएगा, वरना फिर अगले वर्ष मुझे दोबारा आना पड़ेगा। अगर मैं दर्शन नहीं कर पाया, अगर मैं रथ की रस्सी को छू नहीं पाया, अगर रथ को खींच नहीं पाया, तो मेरा जन्म व्यर्थ जाएगा। इसलिए ये श्रद्धालु अभी भी आतुर होकर जय जगन्नाथ हरि बोल की गूंज कर रहे हैं, और हर किसी के दिल में, हर किसी के हृदय में एक अद्भुत तरंग उन्माद है। सभी बड़े आतुर होकर सिंह द्वार की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं, देख रहे हैं भगवान अभी तक नहीं आए। वो अभी बड़े अभी भी वो बुला रहे हैं कि भक्त तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो अब आओ हमें दर्शन दो, हमारी मनोकामना पूर्ण करो, और अभी तक हम इंतज़ार में हैं। आप सभी भी इंतज़ार में रहिए, अभी तक की जो यहाँ हमारे समक्ष जो घटा इसके बारे में मैंने आप सभी को बताया। अब दूसरे चरण में दोपहर 3:10 में मैं फिर से आप लोगों को आंखों देखा हाल सुनाऊंगा। फिलहाल मेरे साथी कमेंटेटर प्रोफेसर रजनीकांत नायक और मैं मोहन मजीठिया आपसे विदाई लेते हैं और आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र को ले जाते हैं। चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली।
1: अभी आप महाप्रभु जगन्नाथ जी के धाम ओडिशा के पावन क्षेत्र पुरी में आयोजित रथ यात्रा का आंखों देखा हाल सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे श्री मोहनलाल मजीठिया हिंदी में और प्रोफेसर रजनीकांत नायक अंग्रेजी में। श्री जगन्नाथ जी की इसी रथ यात्रा के दूसरे भाग का आंखों देखा हाल हम आपको सुनवाएंगे आज दोपहर 3:10 से।
2: यू आर लिसनिंग टू द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ द श्री जगन्नाथ रथ यात्रा बींग सेलिब्रेटेड एट पावन क्षेत्र पुरी ओडिशा। Our commentators were Shri Mohan Lal Majithia in Hindi and Professor Rajinikant Nayak in English. The second phase of the live commentary of Shri Jagannath Rath Yatra will be broadcast from 3:10 p.m. onwards. Originated by Akashvani Katak, this broadcast came to you from Akashvani, Delhi.

सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है। श्री डोभाल ने कहा कि बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक साथ लाता है, जिनकी संयुक्त जीडीपी लगभग 50 खरब अमरीकी डॉलर है। प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी गतिविधियों के लिए कथित रूप से धन उपलब्ध कराने और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के सिलसिले में आज 13 परिसरों पर छापेमारी की। ये मामला उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से संबंधित है। इसमें एक संगठित गिरोह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता करने का आरोप है। जांच में एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क का पता चला है, जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विश्वास

व्यक्त किया है कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता, सुरक्षा और रक्षा साझेदारी को मजबूती से आगे बढ़ाएगी। उन्होंने ब्रसल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से ये बात कही। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ ने एक दूसरे के साथ इस विश्वास को विकसित किया है और अब इसे व्यापार तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बेल्जियम के ब्रसल्स में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग महासंघ, भारतीय उद्योग परिसंघ एसोचैम और अन्य क्षेत्रीय संघ के सदस्यों वाले भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस दौरान भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से भारतीय उद्योग के लिए सृजित होने वाले नए अवसरों पर चर्चा की गई। इस समझौते से भारतीय व्यवसायों, लघु और मध्यम उद्यम तथा आम जनता को होने वाले फायदों पर भी विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच देश की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। श्री मोदी जींद के एकलव स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारम्भ करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन ATF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर अब 15.50 रुपए प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर निर्यात पर कर बढ़ाकर 14.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर 2.50 रुपए प्रति लीटर किया गया है। ये बदलाव आज से लागू हो गए हैं। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सुबह लगातार किए गए जोरदार धमाकों के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियों को नुकसान पहुंचाया गया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत समेत इस इलाके में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज सुबह के सत्र में 0.4% की बढ़त आई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 286 अंक बढ़कर 77,471 पर और निफ्टी 75 अंक बढ़कर 24,154 पर पहुंच गया। पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने विश्व की 5वें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को लगातार सेटों में हराकर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण। यात्रा के दौरान अपना यात्रा परमिट और पहचान पत्र हमेशा अपने साथ रखें। मौसम में अचानक बदलाव हो सकता है, इसलिए रेनकोट और गर्म कपड़े साथ रखना न भूलें। आप सभी से निवेदन है कि यात्रा के दौरान प्रशासन द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन करें, क्योंकि सुरक्षित यात्रा ही सफल यात्रा है। अब इस प्रसारण को आगे बढ़ाएंगे मेरी सहयोगी फरजाना।
1: लोगों के लिए कुछ खास जानकारी।
2: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें, क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहनें। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
1: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल, FM पहलगाम, DTH और न्यूज ऑन एयर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। अब हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियोज, जहां से आप समाचार सुनेंगे।
1: अंग्रेजी खबरों के बुलेटिन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान सहित आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की पांचवी बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सदस्य देशों ने आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, साइबर खतरों और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सहयोग को आगे बढ़ाया है।
1: बिम्स्टेक्स लॉन्ग स्टैंडिंग गोल्स,
2: क्षेत्रीय सुरक्षा, संपर्क, निर्माण क्षेत्र और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने में बिम्स्टेक के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। भारत के लिए बिम्स्टेक पड़ोस प्रथम के हमारे दृष्टिकोण और महासागर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए प्रगति का प्रतीक है।
1: होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक ही दिशा में आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि किसी भी दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक मुख्य धारा से कटा हुआ महसूस न करे। प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी गतिविधियों के लिए कथित रूप से धन उपलब्ध कराने और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के सिलसिले में आज 13 परिसरों पर छापेमारी की। ये मामला उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते द्वारा दर्ज की गई FIR से संबंधित है। इसमें एक संगठित गिरोह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान

0: केंद्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता करने का आरोप है। जांच में एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क का पता चला है जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन ATF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर अब 15.50 रुपए प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर निर्यात कर बढ़ाकर 14.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर 2.50 रुपए प्रति लीटर किया गया है। ये बदलाव आज से लागू हो गए हैं। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरों मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सुबह लगातार किए गए जोरदार धमाकों के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियों को नुकसान पहुंचाया गया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत समेत इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बेल्जियम के ब्रसल्स में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग महासंघ, भारतीय उद्योग परिसंघ SOCHM और अन्य क्षेत्रीय संघ के सदस्यों वाले भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस दौरान भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से भारतीय उद्योग के लिए सृजित होने वाले नए अवसरों पर चर्चा की गई। पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने विश्व की 5वें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को लगातार सेटों में हराकर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Defense Minister Rajnath Singh has said the government is ensuring that development and national security progress on the same path. He emphasized that the government's endeavor is to build an India where borders are secured and connected. Addressing the Border Road Organization Tech Symposium in New Delhi, Mr. Singh highlighted that advanced infrastructure has always been the hallmark of a developed civilization. He said the infrastructure being built today will define the country's civilization in the coming years. He said the government's aim is to ensure that no citizen living in any remote area feels cut off from the mainstream.
2: We understand that the stronger a country's infrastructure, the stronger its future will be. We have ensured that no citizen living in the most remote corner of the country feels disconnected from the mainstream. We have undertaken a mission to connect every village, every city, mountains, rivers, and remote regions across the country. We have pursued this vision because we believe that connectivity is an essential pillar of a nation's development.
1: National Security Advisor Ajit Doval has underscored the need for closer cooperation among BIMSTEC member countries to address economic challenges, including disruptions in global supply chains. Speaking at the 5th meeting of the BIMSTEC National Security Chiefs in New Delhi today, Mr. Doval said disruptions in global supply chains have resulted in economic hardship for all countries. He said there is an urgent need for BIMSTEC member countries to collaborate, take decisive actions for mutual benefit, and find solutions through mutual discussions.
3: BIMSTEC's long-standing goals of regional security, connectivity, capacity building, and economic security should continue to drive our collective efforts. For India, BIMSTEC represents our vision of neighborhood first, our commitment to act East policy and the Mahasagar vision.

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि

0: समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
1: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
0: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहनें। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
1: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, डीटीएच और न्यूज़ ऑन एयर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं, आपको बता दें कि आज दोपहर 1 बजे तक कुल 14,091 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं, जिनमें पुरुषों की संख्या है 10,594, महिलाओं की संख्या है 3,194, बालक 124, 41 साधु, 4 साध्वी, 1 ट्रांसजेंडर और 132 सुरक्षा कर्मचारी आप तक क्षण क्षण की सूचना पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ एफएम बालतल, एफएम पहलगाम पर।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं।

0: चप्पल का उपयोग ना करें, क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहनें। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
1: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
0: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
1: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
0: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
1: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। अब हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियोज, जहां से आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार। आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। भारत ने जुग्राफियाई और सियासी महाजराई के दरमियान सिक्योरिटी और इकतसादी चैलेंजों से निमटने के लिए बिम्स्टेक मेंबर मुल्कों के दरमियान करीबी इश्तराक पर जोर दिया है। वजीर दफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि हुकूमत इस बात को यकीनी बना रही है कि तरक्की और कौमी सलामती में शाना बशाना पेशरफ्त हो। सुप्रीम कोर्ट ने CBSE को तजवीज़ किया है कि वो पांचवीं या छठी जमात से तीसरी जबान मुतारिफ कराए। भारत में पहली हाइड्रोजन पर मबनी ट्रेन का आगाज हो रहा है, जिसका मकसद माहौल के लिए साजगार और पायदार रेल मोबिलिटी को फरोग देना है। भारत की सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु आलमी नंबर 5 चीन की खिलाड़ी हान युई को सीधे सेटों में हराकर जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। और क्रिकेट में आज शाम कार्डिफ में भारत और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैच खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने आलमी जुग्राफियाई सियासी तनाज़ियात के दरमियान सलामती के उभरते हुए चैलेंजों से निमटने के लिए करीबी इलाकाई इश्तराक की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक मेंबर मुल्कों को अपने मफादात के लिए एक साथ मिलकर काम करने और फैसला कुन कार्रवाई करने की ज़रूरत है। वो आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक मुल्कों के कौमी सलामती के सरबराहों की पांचवीं मीटिंग में इजहार ख्याल कर रहे थे। जनाब डोभाल ने कहा कि दुनिया को तनाज़ियात और जुग्राफियाई सियासी गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है और मुल्कों को सलामती के मुख्तलिफ खतरात भी दरपेश हैं। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक के रुकन ममालिक ने दहशतगर्दी, सरहद पार से किए जाने वाले मुनज़्ज़म जराइम, साइबर खतरात और बहरी सलामती के चैलेंजों से निमटने में इश्तराक को खातिर ख्वाह मुस्तहकम किया है। उन्होंने मजीद कहा कि बिम्स्टेक ममालिक नए और उभरते हुए खतरात से एक साथ मिलकर निमटने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आलमी सप्लाई चेन में रखना समेत इकतसादी चैलेंजों से निमटने

के लिए बिम्स्टेक रुकन ममालिक के दरमियान करीबी इश्तराक की जरूरत पर जोर दिया। जनाब डोभाल ने इस बात को भी उजागर किया कि बिम्स्टेक बुहेराए हिंद के इंतहाई अहम और फाल खित्तों को जोड़ती है, जिसकी मजमुई GDP तकरीबन 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा है कि सरकार की कोशिश एक ऐसे भारत की तामीर की है जहां सरहदें न सिर्फ

0: किसी भी तरक्की याफ्ता तहजीब की एक अहम पहचान रहा है। उन्होंने कहा कि जो बुनियादी ढांचा आज तामीर किया जा रहा है, वो आने वाले बरसों में मुल्क की तहजीब तैयार करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि दूर दराज के इलाके में रहने वाले किसी भी शहरी को ये महसूस ना हो कि वो असल धारे से अलग है। उन्होंने कहा कि रोहतांग में अटल टनल और सेला टनल जैसे अहम प्रोजेक्ट बीआरओ की सलाहियतों का मजहर हैं। उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी अपनाने के सिलसिले में बीआरओ की सताइश की।
1: हम यह समझते हैं कि जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, उसी देश का फ्यूचर भी सबसे अधिक मजबूत होगा। हमने इंश्योर किया दूर दराज के किसी भी क्षेत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक मेन स्ट्रीम से कटा हुआ महसूस न करे। और साथियों, हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने कनेक्टिविटी को सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट का एक अनिवार्य अंग माना।
0: सुप्रीम कोर्ट ने आज सीबीएसई निसाब के तहत नवीं जमात में एक तीसरी जबान को मुतारिफ किए जाने पर तशवीश का इजहार किया है और कहा कि इससे तलबा पर दबाव में इजाफा होगा। अदालत आलिया ने तजवीज किया है कि उसे पांचवीं या छठी जमात में ही शुरू किया जाना चाहिए ताकि तलबा इससे वाकिफ हो सकें। जस्टिस बीवी नागरत्ना और आर महादेवन पर मुश्तमिल बेंच ने मरकज से जबानी तौर पर कहा है कि वो नवी जमात की सतह पर तीसरी जबान मुतारिफ ना कराए। ये रायजनी मद्रास हाईकोर्ट के उस हुक्म के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की दरखास्त पर समाअत के दौरान की गई, जिसमें रियासत के हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय के क्याम में सहूलत की बात कही गई थी। तमिलनाडु हुकूमत स्कूलों की जानिब से तीसरी जबान से मुतालिक पॉलिसी के निसाब के ताल्लुक से तशवीश के मामले पर मुसलसल जवाहर नवोदय विद्यालयों के क्याम की मुखालिफत करती रही है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर कल मुल्क की पहली हाइड्रोजन पर मबनी ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के दरमियान चलेगी और ये हाइड्रोजन ईंधन सेल टेक्नोलॉजी पर मबनी है, जो रेल को चलाने के लिए हाइड्रोजन को बिजली में तब्दील करती है। इस अमल से सिर्फ भाप निकलती है, जिससे कार्बन का बिल्कुल भी इखराज नहीं होता। भारत में ही डिजाइन करता और तैयार की गई इस रेलगाड़ी में मुल्क की ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: मुल्क की पहली हाइड्रोजन पर मबनी रेलगाड़ी का आगाज रेलवे के शोबे में माहौल के लिए साजगार और पायदार मोबिलिटी की जानिब मुंतकली के सिलसिले में एक अहम संगे मील है। भारत की हाइड्रोजन ट्रेन में 10 कोच होंगे, जो अब तक तैयार की गई हाइड्रोजन पर मबनी मुसाफिर रेलगाड़ियों में सबसे ज्यादा हैं। इस रेलगाड़ी में 3200 हॉर्स पावर प्रोपल्जन सिस्टम है, जो इसे ज्यादा ताकतवर बनाता है। ये रेलगाड़ी जींद सोनीपत सेक्शन पर ज्यादा से ज्यादा 75 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेगी। ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल से जीर जमीन ईंधन पर मबनी थर्मल पावर प्लांट से पैदा की जाने वाली बिजली पर इन्हेसार भी कम होगा, जिससे पायदार ट्रांसपोर्ट की जानिब भारत की मुंतकली में मदद फराहम होगी। इस हाइड्रोजन ट्रेन के आगाज के साथ भारत जर्मनी जापान चीन और अमरीका जैसे उन चुनिंदा ममालिक के ग्रुप में शामिल हो जाएगा, जो माहौल के लिए साजगार रेल खदमात के लिए हाइड्रोजन के इस्तेमाल के इम्कान तलाश रहे हैं। नई दिल्ली से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: मरकजी हुकूमत ने ईंधन की बरामद से मुतालिक टैक्सों के अपने 15 रोजा हालिया जायजे के हिस्से के तौर पर पेट्रोल डीजल और हवाई जहाज के ईंधन की बरामदात पर खसूसी इजाफी एक्साइज ड्यूटी में नजरसानी की है। नजरसानी शुदा शरहों के तहत डीजल पर बरामदाती महसूल बढ़ाकर 15.50 रुपये फी लीटर कर दिया गया है, जबकि ATF बरामद पर ड्यूटी बढ़कर 14.50 रुपये फी लीटर होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज हुक्काम को हिदायत दी है कि वो सामाजिक कारकुन सोनम वांगचुक की सेहत का रोजाना की बुनियाद पर जायजा लें। उसने इस बात पर भी जोर दिया कि जिंदगी कीमती है। जनाब वांगचुक नई दिल्ली के जंतर मंतर पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भूख हड़ताल पर हैं। चीफ जस्टिस DK उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की एक बेंच ने जोर देकर कहा कि जनाब वांगचुक की अदालत की हालत सरकारी डॉक्टरों से रोजाना चेक कराई जानी चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने, जो मरकज और दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए, कहा कि हर शख्स की जिंदगी कीमती है और जनाब वांगचुक की रोजाना तिब्बी जांच कराने पर कोई एतराज नहीं है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज अरुणाचल प्रदेश, मगरबी बंगाल में गंगा की तराई वाले इलाके और ओडिशा में कहीं कहीं शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओलंपिक में दो मर्तबा तमगा जीत चुकी भारत

0: की सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने इस सीजन की अपनी सबसे बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए आलमी नंबर 5 खिलाड़ी चीन की हान यूई को सीधे सेटों में हराया और वो जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं। पीवी सिंधु ने चीन की खिलाड़ी को महज 35 मिनट में 21-16, 21-14 से शिकस्त दी। मर्दों के क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3-1 रोजा मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज शाम कार्डिफ में सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे शुरू होगा। भारत को इस सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल है। भारत ने मंगल को बर्मिंघम में पहले एक रोजा मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया था। सीरीज का तीसरा और आखिरी एक रोजा मैच इतवार को लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत ने जोग्राफियाई और सियासी महाजराई के दरमियान सिक्योरिटी और इकतसादी चैलेंजों से निमटने के लिए बिम्स्टेक मेंबर मुल्कों के दरमियान करीबी इश्तराक पर जोर दिया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि हुकूमत इस बात को यकीनी बना रही है कि तरक्की और कौमी सलामती में शाना बशाना पेशरफ्त हो। सुप्रीम कोर्ट ने CBSE को तजवीज किया है कि वो 5वीं या 6ठी जमात से तीसरी जबान मुतारिफ कराए। भारत में पहली हाइड्रोजन पर मबनी ट्रेन का आगाज हो रहा है, जिसका मकसद माहौल के लिए साजगार और पायदार रेल मोबिलिटी को फरोग देना है। और क्रिकेट में आज शाम कार्डिफ में भारत और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा एक रोजा बैनुल अक्वामी मैच खेला जाएगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. India calls for closer cooperation among BIMSTEC member countries to tackle security and economic challenges amid geopolitical conflicts. Defence Minister Rajnath Singh says government is ensuring development and national security progress on the same path. Supreme Court suggests CBSE to introduce third language from class 5 or 6. India set to launch first hydrogen-powered train to promote green and sustainable rail mobility. PV Sindhu stuns world number 5 Han Yue of China in straight games to storm into quarterfinals of Japan Open Badminton Tournament. And in cricket, second ODI between India and England to be played in Cardiff this evening. National Security Advisor Ajit Doval has underscored the need for closer regional cooperation to tackle evolving security challenges amid global geopolitical conflicts. He said BIMSTEC member states need to work together and take decisive actions for their mutual benefit. He was speaking at the 5th meeting of the BIMSTEC National Security Chiefs in New Delhi today. Mr. Doval said, world is witnessing conflicts and geopolitical uncertainties, and the countries are also facing multi-domain security threats amplified by rapid technological advancements. He underscored the need for closer cooperation among BIMSTEC member countries to address economic challenges, including disruptions in global supply chains. Mr. Doval highlighted that BIMSTEC brings together the most significant and vibrant regions of the Indian Ocean with a combined GDP of nearly $5 trillion.
2: Disruptions in global supply chains have also resulted in economic hardship for all our countries. In this setting, there is an urgent need for us to collaborate, take decisive actions for mutual benefit, and find solutions to mutual discussions and deliberations to the vexed problems that we are all facing.
1: Mr. Doval also highlighted the importance of stronger cooperation among BIMSTEC member countries to address emerging security challenges and promote regional development.
2: BIMSTEC's long-standing goals of regional security, connectivity, capacity building and economic security should continue to drive our collective efforts. For India, BIMSTEC represents our vision of neighborhood first, our commitment to act East policy and the Mahasagar vision, which stands for mutual and holistic advice.

0: Han Yue of China in straight games and storm into the quarterfinals of the Japan Open Super 750 badminton tournament today. PV Sindhu needed just 35 minutes to register a commanding 21-16, 21-14 win over the higher-ranked Chinese shuttler in their second-round contest. In men's cricket, the second one-day international of the three-match series between India and England will be played at Sophia Gardens in Cardiff today. The match will start at 5:30 p.m. Indian time. Earlier, India defeated hosts England by 6 wickets in the first ODI at Edgbaston, Birmingham on Tuesday to lead the series 1-0. In football, defending champions Argentina defeated England 2-1 in the second semi-final at Atlanta Stadium in the USA to set up the title clash of the FIFA World Cup against Spain. Argentina will now play against Spain in the final on Sunday night. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India calls for closer cooperation among BIMSTEC member countries to tackle security and economic challenges amid geopolitical conflicts. Defence Minister Rajnath Singh says government is ensuring development and national security progress on same path. Supreme Court suggests CBSE to introduce third language from class 5 or 6. India set to launch first hydrogen-powered train to promote green and sustainable rail mobility. PV Sindhu stuns world number 5 Han Yue of China in straight games to storm into quarterfinals of Japan Open badminton tournament. And in cricket, second ODI between India and England to be played in Cardiff this evening. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने भू राजनीतिक संघर्षों के बीच सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रगति एक दिशा में आगे बढ़े। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE को तीसरी भाषा 5वीं या 6ठी कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया। पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित देश की पहली रेलगाड़ी कल से शुरू। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने विश्व की 5वें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान्यू को हराकर जापान ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने वैश्विक भू राजनीतिक संघर्षों के बीच उभरती सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की 5वीं बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण सभी देशों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है।
2: BIMSTEC's long-standing goals,
3: क्षेत्रीय सुरक्षा, संपर्क, निर्माण क्षेत्र और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने में BIMSTEC के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। भारत के लिए BIMSTEC पड़ोस प्रथम के हमारे दृष्टिकोण और महासागर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए प्रगति का प्रतीक है।
2: होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन।
1: श्री डोभाल ने कहा कि बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक साथ लाता है, जिनके संयुक्त जीडीपी लगभग 50 खरब अमेरिकी डॉलर है।
2: There is an urgent need for us.
3: हमारे लिए जरूरी है कि हम मिलकर काम करें, आपसी फायदे के लिए एक ठोस कदम उठाएं और उन बड़ी समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत और विचार विमर्श से निकालें जिनका हम सभी सामना कर रहे हैं। बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण और जीवंत क्षेत्रों को एक मंच पर लाता है। यहाँ 1 अरब 70 करोड़ लोग रहते हैं, जो दुनिया की आबादी का लगभग 22% है।
2: 22% of the world population.
1: श्री डोभाल ने कहा कि सदस्य देशों ने आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, साइबर खतरों और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सहयोग को आगे बढ़ाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा

0: है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक ही दिशा में आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है।
1: हम यह समझते हैं कि जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा उसी देश का फ्यूचर ही सबसे अधिक मजबूत होगा। पिछले 10-12 वर्षों में हमने गांव-गांव, शहर-शहर, पहाड़, पर्वत, नदी सबको आपस में जोड़ने का एक मिशन चलाया और यह जुड़ाव केवल रोड ट्रांसपोर्ट तक सीमित नहीं रहा। हमने सड़क से, रेल से, हवाई मार्ग से और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से सबको जोड़ने यानी हर प्रकार की कनेक्टिविटी प्रदान करने पर विशेष बल दिया है। हमने इंश्योर किया दूर दराज के किसी भी क्षेत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक मेन स्ट्रीम से कटा हुआ महसूस न करे। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने कनेक्टिविटी को सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट का एक अनिवार्य अंग माना।
0: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रोहतांग में अटल सुरंग, उमलिंगला में विश्व की सबसे ऊंची वाहनों की सुरक्षित आवाजाही योग्य सड़क और लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर निर्मित सेला सुरंग जैसी ऐतिहासिक परियोजनाएं बीआरओ की क्षमताओं का जीवंत प्रमाण है।
1: शक्ति चाहे कितनी भी हो, चाहे कितनी भी एडवांस क्यों न हो, उसे खड़े होने के लिए एक ठोस जमीन चाहिए ही। और बीआरओ हमारे सीमावर्ती और कठिन क्षेत्रों में एयरफील्ड्स भी बनाता है, यानी टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी बदल जाए, हम चाहे जमीन से आकाश तक और आकाश से समुद्र तक कितनी भी प्रोग्रेस कर लें, पोर्ट्स, एयरफील्ड्स, रोड्स और टनल्स, इनकी भूमिका कतई कम नहीं होने वाली है। वॉरफेयर का स्वरूप जितना भी बदल जाए, इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व यह हमेशा बना ही रहेगा। और इसका सीधा अर्थ यह है कि बीआरओ के कामों का रिलेवेंस भी आने वाले युग में लंबे समय तक बना रहने वाला है।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी गतिविधियों के लिए कथित रूप से धन उपलब्ध कराने और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के सिलसिले में आज 13 परिसरों पर छापेमारी की। ये मामला उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से संबंधित है। इसमें एक संगठित गिरोह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता करने का आरोप है। जांच में एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क का पता चला है जिसमें कुछ धर्मा ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे पांचवी या छठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वे नवीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू न करें। ये टिप्पणी मद्रास उच्च न्यायालय के विरुद्ध दायर तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य के हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की बात कही थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वृद्ध या असाध्य रोग से ग्रसित कैदियों की शीघ्र या समय से पहले रिहाई के लिए व्यापक नीति बनाने और लागू करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने देश भर में ऐसे मामलों पर विचार के लिए एक समान तंत्र सुनिश्चित करने के संबंध में नीति को 3 महीने के भीतर अधिसूचित करने का आदेश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज अधिकारियों को कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की दैनिक निगरानी करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि जीवन अनमोल है। श्री वांगचुक नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अनमोल है और वांगचुक की नियमित चिकित्सा जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं है। भारत में पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी की शुरुआत कल से होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर इसे रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच चलेगी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से संचालित है जो हाइड्रोजन को बिजली में परिवर्तित करती है। एक रिपोर्ट।
2: देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू होने से रेलवे अब स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल सफर की ओर एक नई शुरुआत कर रहा है। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। इस ट्रेन में 10 डिब्बे हैं, जिससे यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। यह ट्रेन जींद सोनीपत रेल खंड पर 75 किलोमीटर

0: किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल से कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इसके अलावा पर्यावरण की रक्षा होगी और देश को स्वच्छ परिवहन की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इस ट्रेन के शुरू होने के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका की सूची में शामिल हो जाएगा जो रेलवे में साफ और हरित तकनीक के लिए हाइड्रोजन का उपयोग कर रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर रहेंगे। वे चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस संसदीय दल सीपीपी की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य सदस्य उपस्थित थे। बैठक के बाद कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बताया कि बैठक में आगामी मानसून सत्र में उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों पर पार्टी के रुख पर चर्चा हुई। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतत कृषि विकास सुनिश्चित करने के लिए किसानों के बीच एकीकृत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि किसानों और वैज्ञानिकों के सामूहिक परिश्रम से असाधारण परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनुसंधान से किसानों को वास्तविक समय में लाभ मिलना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि देश ने 376 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है।
2: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजना बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं ICAR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि एक समृद्ध जैव अर्थव्यवस्था देश की स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगी, वैक्सीन विकास को बढ़ावा देगी, उच्च कुशल रोजगार पैदा करेगी और वोकल फॉर लोकल पहल को आगे बढ़ाएगी। नई दिल्ली में 2035 तक भारत को एक अग्रणी जैव अर्थव्यवस्था महाशक्ति के रूप में बनाना शीर्षक वाली कार्ययोजना को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि 21वीं सदी जैव प्रौद्योगिकी की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए आज विस्तृत अनुष्ठान और अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुबह से ही पुरी में हो रही मूसलाधार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डांडा पर पवित्र अनुष्ठानों के साक्षी बन रहे हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मौसी के घर श्री गुंडिचा मंदिर की ओर तीनों रथों को खींचे जाने से पहले गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव द्वारा औपचारिक छेरा पहरा रथों की सफाई की रस्म की जाएगी। उत्सव के सुचारू संचालन के लिए व्यापक सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अंग्रेजी दैनिक में लिखे गए लेख को सोशल मीडिया पर साझा किया। एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह लेख भगवान जगन्नाथ के प्रति राष्ट्रपति की आजीवन भक्ति को दर्शाता है, जिसमें उनकी बचपन की प्यारी यादों से लेकर उनके जीवन को आकार देने वाले गहन आध्यात्मिक अनुभवों की यात्रा का वर्णन किया गया है। सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन ATF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर अब 15.50 रुपए प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर निर्यात पर कर बढ़ाकर 14.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर 2.50 रुपए प्रति लीटर किया गया है। ये बदलाव आज से लागू हो गए हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज के सत्र में 0.4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 29 अंक बढ़कर 77,214 पर और निफ्टी 18 अंक बढ़कर 24,060 पर पहुंच गया। और

0: खेल जगत की खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
1: पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने विश्व की पांचवें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को मात्र 35 मिनट में लगातार सेटों में हराकर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हालांकि प्री क्वार्टर फाइनल में तनिषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज शाम भारतीय समय के अनुसार 5:30 बजे कार्डिफ में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय मैच में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया था। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा। वहीं फुटबॉल में फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। अब फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने भू राजनीतिक संघर्षों के बीच सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रगति एक दिशा में आगे बढ़े। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE को तीसरी भाषा 5वीं या 6ठी कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया। पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित देश की पहली रेलगाड़ी कल से शुरू। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने विश्व की 5वीं नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को हराकर जापान ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण सुन रहे हैं। अगर आप बालतल के छोटे मार्ग से दर्शन के लिए जा रहे हैं, आप हमें 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर सुन सकते हैं। और अगर आप पहलगाम के प्राचीन मार्ग से दर्शन के लिए जा रहे हैं, आप हमें सुन सकते हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इसके अलावा DTH और न्यूज़ ऑन एयर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल पर भी हम उपलब्ध हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश भर से बोले के वक्त कश्मीर पहुंच रहे हैं, और आपको बता दें कि पहाड़ों पर मौसम लगातार बदल रहा है। इसलिए अगर आप इस समय बालतल या पहलगाम मार्ग पर हैं, तो कृपया प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। आपने अपने पास रेनकोट और गर्म कपड़े हमेशा तैयार रखें। इस यात्रा की सबसे सुंदर बात पता है क्या है? ये केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि ये कश्मीर की कश्मीरियत और संस्कृति का सबसे बड़ा प्रतीक है। यहाँ के लोकल्स जिस तरह से यात्रियों का स्वागत करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, वो सच में दिल को छू लेता है। प्रेम और भाईचारे का ये लाइव दृश्य आपको केवल यही देखने को मिलेगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण सूचना, आपके पास आपका RFID कार्ड होना अनिवार्य है। बिना RFID कार्ड और वैलिड परमिट के एक्सेस गेट से आगे जाने की अनुमति नहीं होगी, इसलिए इसे हमेशा अपने साथ रखें। और हाँ, हमारी सुंदर वादी को स्वच्छ रखना भी हमारा उत्तरदायित्व है। प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल ना करें। तो हमारे साथ बने रहिए, आप सुनते रहिए FM बालतल, FM पहलगाम।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें।
2: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल, FM पहलगाम पर। श्रोताओं, हमारे साथ भगवती नगर से हमारे संवाददाता जावेद मेहराब जुड़ चुके हैं। क्या कुछ अपडेट्स हैं उनके पास, आइए सुनते हैं। जी जावेद
3: जी, तेज धूप, सख्त गर्मी और उमस के दौरान श्री अमरनाथ जी यात्रा के श्रद्धालु लगातार यहां जम्मू पहुंच रहे हैं और गाड़ी से वापस दर्शन कर वापस लौट भी रहे हैं। तो दोनों जो सफर है वो जम्मू में बाजाबता जो श्रद्धालु हैं दोनों तरफ के देखे जा सकते हैं। यहाँ अलग अलग जगहों पर, एक तो रेलवे स्टेशन के आसपास और दूसरा जो जहाँ बसें लगाई गई हैं वहाँ आप ये दोनों तरह के श्रद्धालु देखे जा सकते हैं। क्योंकि जो श्रद्धालु वापस दर्शन कर लौट रहे हैं वो उनमें एक अलग उत्साह है और जो अभी घाटी की और पवित्र गुफा की तरफ दर्शन करने के लिए जा रहे हैं उनमें भी देखा जा सकता है। तो एक अलग तरह का माहौल जम्मू में बना हुआ है और वहीं विभिन्न ट्रांजिट कैंप्स में आराम कर सफर की थकान को जहां श्रद्धालु कम करते भी देखे जा सकते हैं, वहीं यहां पहले आधार शिविर भगवती नगर से दूसरे आध्यात्मिक यात्रा के लिए तैयारी करते यात्री भी देखे जा सकते हैं। तो ट्रांजिट कैंप्स में सेवादार, लंगर बनाने वाले, सुरक्षा पर तैनात पुलिस कर्मचारी, CRPF ईमानदारी के साथ ये सभी एकजुट होकर इस तीर्थ यात्रा

को कामयाब बनाने में व्यस्त तम अपनी ईमानदारी के साथ ड्यूटी कर रहे हैं। तो यहाँ ट्रांजिट कैंप्स में सुबह शाम श्रद्धालुओं की विभिन्न तरह के व्यंजन भी परोसे जाते हैं और श्रद्धालुओं की लंबी कतारें अपने खाने के इंतजार में भी सब्र के साथ अपनी बारी का इंतजार भी कर रहे हैं। और खाने पीने में ट्रांजिट कैंप्स में सुस्ताते श्रद्धालु एक दूसरे के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान भी करते देखे जा सकते हैं। तो अलग तरह का एक माहौल बना हुआ है। इसी दौरान अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को के लिए तत्कालीन पंजीकरण व्यवस्था में बदलाव भी किया गया है और अब महाजन सभा हाल के बजाय बजाय पंचायत अब माफ कीजिएगा अब महाजन सभा हाल में संचालित तत्काल पंजीकरण बंद कर दिया गया है और तभी रिवर फ्रंट भगवती नगर यात्री निवास और पुरानी मंडी के राम मंदिर में ये सुविधाएं दी जा रही हैं। जिला प्रशासन के अनुसार यात्रियों की बढ़ती संख्या और पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए ये फैसला लिया गया और नए केंद्रों पर आवश्यक दस्तावेज की जांच के बाद ही श्रद्धालुओं का पंजीकरण किया जा रहा है। इसके बाद उन्हें यात्रा के निर्धारित दस्तावेज पेश करने के बाद अनुसार ही आगे भेजा जा रहा है और अधिकारियों ने नए श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो तत्कालीन पंजीकरण के लिए अब महाजन सभा हॉल को छोड़कर अन्य केंद्रों में अपने साथ पहचान पत्र और अन्य आवश्यक जो दस्तावेज होते हैं यात्रा से पहले उन्हें अवश्य अपने साथ रखें। प्रशासन का कहना है कि इस नई में पंजीकरण प्रक्रिया अधिक सुचारू होगी और बेहतर प्रबंधन नियमित किया जाएगा। तो कुल मिलाकर श्रद्धालुओं को कम समय में सुविधाएं मिलना यहां शुरू हो गई है। यात्रा के दौरान बाकी सभी सुविधाएं और व्यवस्थाएं पहले की तरह उन्हें और सुचारू बनाया गया है और इस दौरान कल बुधवार को तमाम ट्रांजिट कैंप्स में खास तौर पर सफाई को भी और सुथराई को भी खास तौर पर अंजाम दिया गया जिसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्पेशल टीमें जो कर्मचारी जो है वो खूब मेहनत कर इन ट्रांजिट कैंप्स को साफ रखने की मुहिम में भी अपना बखूबी रोल निभा रहे हैं। तो इस तरह से इस यात्रा को स्वच्छ यात्रा के साथ भी जोड़ा जा रहा है, साथ साथ व्यवस्थाएं और प्रशासनिक जो प्रबंध है उन्हें भी सुचारू बनाया जा रहा है ताकि तीर्थ यात्रा जो है वो अपने दूसरे हफ्ते में एक बड़े रिकॉर्ड को क्रॉस कर चुकी है। लगभग 3 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्री दर्शन कर वापस अपने घरों की तरफ भी लौट रहे हैं। तो एक बड़ा जो आंकड़ा है उसको पार किया है तीर्थ यात्रा ने अपने दूसरे ही हफ्ते में। तो एक बड़ी कामयाबी प्रशासन के लिए भी है और साथ साथ जो इस यात्रा से जुड़े दूसरे लोग हैं, सेवादार हैं, जो निचले लेवल पर भी काम कर रहे हैं उनके लिए भी एक ये बहुत बड़ी कामयाबी भी है क्योंकि यात्रा का एक एक काम जो है हर एक श्रद्धालु उससे जुड़ा हुआ है और हर एक काम की वजह से ही जो चाहे वो लंगर के बर्तन धोने से लेकर यात्रा को सुचारू रूप से यहाँ से रवाना करने तक का भी ये जो काम है ये एक एक काम बहुत अहम भी है और श्रद्धालुओं के लिए तमाम तर सुविधाएं और प्रबंध बखूबी तौर पर यहाँ रखे भी जा रहे हैं। उसको लेकर कल जैसा कि खुद उपराज्यपाल यहाँ भगवती नगर के आधार शिविर भी पहुंचे थे, उन्होंने भी प्रशासनिक अधिकारियों से प्रबंधों को और बेहतर बनाने और जो श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं उनको किस तरह से आप मेहमान नवाजी का सबसे उच्च स्तर दिखाना है और उनको बेहतर रूप से उन्हें पूरी मेहमान नवाजी के साथ यहाँ स्वागत भी करना है, इन सब की बात उन्होंने की और साथ साथ यहाँ जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके साथ जो जुड़े पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारी हैं उनसे भी बात हुई, मीटिंगें हुई, बैठकें हुई जिनमें तीर्थ यात्रा को और सुचारू बनाने की कोशिशें जारी है और ताकि यात्रा जो है वो सुविधाजनक भी बने और जो जो छोटी मोटी हर
दिन की जो नई चैलेंजेस, जो नई प्रॉब्लमें सामने आ रही हैं श्रद्धालुओं को, उन पर उनको भी ठीक किया जा सके, ताकि यात्रा जो है सुचारू रूप से हर रोज यहाँ आधारेश्वर भगवती नगर से रवाना हो। और आज भी

0: 5,000 से ज्यादा तीर्थ यात्री जो है वो यहाँ भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हुए और वो घाटी भी पहुंच गए होंगे और जहाँ इन इस यात्रा में शामिल पुरुष, महिलाएं, बच्चे, साधु, साध्वी और हर तरह के लोग इस हर दिन के जो यात्रा के साथ श्रद्धालु हैं उनमें देखे जा सकते हैं, जिनमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं और यात्रा को लेकर सभी अपने पूरे हर्षोल्लास के साथ और पूरी पूरे जज्बे के साथ इस यात्रा को तय कर रहे हैं और हर दिन ये यात्रा का जो ये पर्व है उसको हर रोज मनाया भी जा रहा है यहाँ जम्मू में। जी
1: तो जावेद, हम कह सकते हैं कि बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्तों का उत्साह जो है वो आसमान छू रहा है।
0: जी बिल्कुल, आपने सही कहा, यहाँ जम्मू के पहले इस आधार शिविर पर मैं कहूँ तो पूरे संभाग में यहाँ लखनपुर के जो द्वार है, प्रथम द्वार जो जम्मू कश्मीर को है, वहां से लेकर पूरे जम्मू तक ट्रांजिट कैंप्स बनाए गए हैं क्योंकि यहाँ गर्मी भी है, जैसे मैंने पहले ही अपने जो रिपोर्ट में कहा कि तेज धूप भी है, गर्मी भी है और उमस भी है। इस दौरान पानी, बिजली, लंगर, खाने पीने की सुविधाएं और उसके साथ साथ जो तीर्थ यात्री अपना पंजीकरण कराने हैं उसको कैसे सुचारू बनाया जाए, खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो, पानी की, उसमें सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं। यहाँ की बाजार संस्थाएं जो है, जो बाजार एसोसिएशन है, उसके अलावा जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, स्थानीय लोग हैं, हर जगह पर अलग अलग छोटे छोटे पानी पीने के, चाय पिलाने के लंगर, अलग अलग लोग अपनी तरफ से पूरी सेवा के साथ तीर्थयात्रियों की भरपूर अवगत भी कर रहे हैं और यात्रा सुचारू रूप से यहाँ से रवाना भी करते हैं रोज। जी
1: बहुत बहुत धन्यवाद जावेद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: बहुत शुक्रिया।
1: जी हाँ, जैसा कि जावेद के साथ हमारी बात हो रही थी और जावेद जम्मू से हमें अपनी रिपोर्ट दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि मौसम की अगर उन्होंने बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो हमारे श्रद्धालु हैं वो बहुत ही उत्साह के साथ दर्शन के लिए आ रहे हैं। बाबा बर्फानी सबकी यात्रा सफल करें। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए FM पहलगाम, FM बालतल के संग।

ये आकाशवाणी है। अब हम आपको पुनः महाप्रभु जगन्नाथ जी के धाम ओडिशा के पावन क्षेत्र पुरी लिए चलते हैं, जहां से आप वहां आयोजित हो रही रथ यात्रा का आंखों देखा हाल सुनेंगे। विवरण दे रहे हैं श्री मोहनलाल मजीठिया हिंदी में और प्रोफेसर रजनीकांत नायक अंग्रेजी में। आइए श्री जगन्नाथ धाम पुरी चलें।

0: Our commentators are Sri Mohan Lal Majithia in Hindi and Professor Rajinikant Nayak in English.
1: ये आकाशवाणी है। अब हम आपको पुनः महाप्रभु जगन्नाथ जी के धाम ओडिशा के पावन क्षेत्र पुरी लिए चलते हैं, जहां से आप वहां आयोजित हो रही रथ यात्रा का आंखों देखा हाल सुनेंगे। विवरण दे रहे हैं श्री मोहनलाल मजीठिया हिंदी में और प्रोफेसर रजनीकांत नायक अंग्रेजी में। आइए श्री जगन्नाथ धाम पुरी चले।
2: जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को पुरी से भगवान श्री जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के आंखों देखा हाल का दूसरा चरण अभी शुरू हो रहा है। जब हम पहला चरण पूरा करके ब्रेक में गए थे, तब जगन्नाथ जी उनकी पहंडी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी, वो रथ पर आसीन नहीं हुए थे। लेकिन इस बीच जगन्नाथ जी रथ पर विराजमान हो चुके हैं। उनके बाद तीनों रथों में जो पार्श्व देवी देवता उनको स्थापित किया जाता है, जैसे कि पंचमुखी महावीर, हरिहर, मधुसूदन, गिरि गोवर्धनधारी, पांडु नरसिंह, लक्ष्मण, अंगद, नरसिम्हा, कार्तिकेय, नटराज, नृत्यरत गणेश आदि ये देव, तथा माँ बिमला, वनदुर्गा, वराही, चामुंडा, भुवनेश्वरी, हरचंडी, जय दुर्गा, सर्वमंगला, उग्रतारा आदि देवियों को भी सहायक देवी देवता के रूप में रथों पर विराजमान कराया जाता है। ये प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है और इस तरह पहंडी का क्रम संपूर्ण हो चुका है। उसके बाद विधि अनुसार जो परंपरा रही है सदियों की, पूरी गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य महाराज श्री श्री निश्चलानंद सरस्वती वो अपनी सेवा देने के लिए, प्रभु के दर्शन करने के लिए वो पधारे हैं। एक के बाद एक तीनों रथों पर वो भगवान की आरती करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, दर्शन करेंगे और भगवान से समूचे जगत के लिए कल्याण का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ये क्रम अभी चल रहा है। उनका जो ये सेवा है ये पूरी हो जाने के बाद फिर वहाँ से आज्ञामाल आएगी और गजपति महाराजा के पास संदेश लेकर कि आपका अब समय हो चुका है, इसके लिए अभी समय है। लेकिन इस बीच मैं आपको बता दूं, ये तीनों रथ पूरी तरह से बरसात में भीगे हैं, लाखों श्रद्धालु, बरसात लगातार जारी है, फिर भी उन्हें इसकी परवाह नहीं है। उनके आगे उनके आराध्य देव जगत के नाथ प्रभु जगन्नाथ विराजमान हैं। वो स्वयं भीग कर रत्न सिंहासन छोड़कर जब रथ रूपी मंदिर में काष्ठ सिंहासन पर विराजमान होने के लिए आए हैं और भक्तों को अपना दर्शन देने के लिए आए हैं, तो उनके आगे सामान्य भक्त की भला क्या औकात है। तो सारे भक्त सब कुछ भुलाकर अपने आराध्य देव को अपने सम्मुख पाकर वो धन्य हुए हैं। काफी संख्या में यहाँ भक्त मौजूद हैं, भीड़ इतनी है। इस बीच किसी किसी मूर्छित श्रद्धालु को स्वयंसेवी संस्थाएं उनकी सहायता करते हैं। प्राथमिक चिकित्सा के लिए पास ही

0: जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ ले जाते हैं, एम्बुलेंस की सेवा मौजूद है, अग्निशम विभाग वो लोग भी मौजूद हैं, और पुलिस, आरपीएफ और ये सारी सशस्त्र सेनाएं ये भी सुरक्षा के लिए मौजूद हैं। सब कुछ सकुशल चल रहा है। घंट ध्वनि, जय घोष, जय जगन्नाथ, हरि बोल की गूंज के बीच ये वातावरण एक मानो एक अद्भुत लहर उठ चुकी है। और मेरे सामने तीनों रथ जो सुसज्जित हैं, अभी गजपति महाराजा के पास संदेशा आएगा। इस बीच हमारे सामने, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं अहमदाबाद से आई मूल अमृतसर की निवासी अंजलि जी, वो रथ यात्रा दर्शन के लिए आई हैं, हम उनसे बात करेंगे। तो अंजलि जी, स्वागत है आपका जगन्नाथपुरी में। आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है?
1: ये खूबसूरत नज़ारा आज तक मैंने कभी देखा नहीं था। इतना बड़ा त्योहार की तरह इसको मनाया जाना मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये देख पाऊंगी। जो इन पलों का मैं अनुभव कर रही हूँ वो मैं बता नहीं सकती शब्दों में, कि इतना प्यारा अनुभव, इतना सुंदर अनुभव कैसे मुझे मिला मुझे नहीं पता। लेकिन इस समय जो मैं अनुभव महसूस कर रही हूँ वो मेरे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हर भक्त अपने अपनी जगह से जुड़ा हुआ है और अपनी अपनी भक्ति में इतना लीन है कि उसको अपनी ना बारिश की परवाह है, ना अपनी भूख की परवाह है, ना किसी भी चीज़ की परवाह है, और वो वहीं पे खड़ा हुआ है भगवान के दर्शनों के लिए। इतना इतना इतना उत्सुक है कि मेरे पास शब्द नहीं है। हर इतने लाखों लोगों में सब में इतना प्यार भावना भगवान के प्रति जो मैंने देखी है मैंने आज तक कभी देखी ही नहीं है।
0: धन्यवाद अंजलि जी। आप लोगों ने जैसे सुना, अंजलि जी बहुत ही भावुक हो गई है। ये समय ऐसा है, ये माहौल ऐसा है, ये वातावरण ऐसा है कि जगन्नाथ जी के बड़े बड़े चक्राकार नयन को देखकर कोई भी भक्त, कोई भी श्रद्धालु भाव विभोर हो जाता है। वो अपने आप को भुला देता है। वो यही देख रहा है कि वो दुनिया में सिर्फ वो अकेला है और उसके सामने उसके आराध्य देव भगवान श्री जगन्नाथ जी हैं, आसपास कोई और नहीं है। ये भक्त और भगवान के बीच के मिलन का दृश्य बहुत ही मनभावन है, बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अलौकिक है। आप पहली बार आई हैं रथ यात्रा में?
1: हाँ, मैं पहली बार आई हूँ।
0: इससे पहले आप जगन्नाथ मंदिर के दर्शन में आई?
1: नहीं, मैंने कभी जगन्नाथ मंदिर के दर्शन नहीं किए।
0: तो देखिए, ये अंजलि जी का सौभाग्य है कि उन्हें भगवान जगन्नाथ स्वयं दर्शन देने के लिए आज के इस अषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया के तिथि में उन्हें अपने पास बुला लिया और उन्हें दर्शन दिया। और जैसा कि अंजलि जी ने वर्णन किया, उनके पास शब्द की कमी पड़ रही है, वो अपने भाव प्रकट करने में अक्षम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंजलि जी। आपका जीवन सुखमय हो। जगन्नाथ जी आप पर यही आशीर्वाद करें। धन्यवाद।
1: जय जगन्नाथ।
0: तो देखा आपने, ये एक भक्त के मन की भावना थी, उन्हें शब्दों की कमी पड़ रही थी। वो यहाँ आकर जगन्नाथ पुरी में पहुंचकर कैसे अपने आप को भुला देती हैं, वो जगन्नाथ जी के दर्शन कर कैसे अपने आप को धन्य मानती हैं। तो अब मेरे सामने तीनों रथ सुसज्जित हैं। जगन्नाथ जी रथ पर आरूढ़ हो चुके हैं। शंकराचार्य जी अपने भगवान के दर्शन कर सभी जनता के लिए, सभी भक्तों के लिए, सभी श्रद्धालुओं के लिए, समूचे विश्व के लिए भगवान से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और आगे का हाल सुनाने के लिए अंग्रेजी में मैं अनुरोध करूंगा मेरे साथी कमेंटेटर प्रोफेसर रजनीकांत नायक जी से।
2: थैंक यू मजीथिया जी। एक्चुअली दिस इज द आफ्टरनून सेशन ऑफ आवर कमेंट्री, लाइव कमेंट्री इन हिंदी एंड इंग्लिश। मजीथिया जी हैज ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट हाउ द थ्री कार्स आर ऑलरेडी रेडी, दे आर इन रेडी पोजिशन, दो ऑल थ्री ऑफ देम आर एब्सोल्युटली वेट, wet to the skin as you say, but this has had no deterring effect on the assembly. The crowd is as eager to participate in the Rath Yatra as they were early in the morning. But morning or afternoon the rains continue unabated, but this has not been able to do any dent to the enthusiasm of the crowd.

0: that he is taken to be a mysterious god. You can never predict anything about Lord Jagannath, excepting perhaps only one thing, that he is very fond of his bhaktas, and he comes out of his jewel altar along with his siblings and his divine caretaker, that is Sudarsana, once a year to go on an annual pilgrimage to his Janmabedi or birthplace, at least for once. This is the, and that is called Rath Jatra or the car festival as we know. And the god is so mysterious that he is described this way in Sanskrit: Sarvam Rahasya Purushatamascha Deva Na Janati Kuto Manushya. And the Jagannath, as we see him, carries so many tales with him, which we'll be talking about by and by. With this, I'll request my fellow commentator to continue with commentary in Hindi.
1: धन्यवाद प्रोफेसर रजनीकांत नायक जी. अभी रथ खींचने में काफ़ी समय है, क्योंकि रथ खींचने से पहले जो शंकराचार्य महाराज की नीति है वो संपन्न हुई है, इसके बाद संपन्न होने को जा रही है. फिलहाल शंकराचार्य महाराज भगवान श्री जगन्नाथ जी के रथ पर विराजमान हैं, वहाँ पूजा आरती कर रहे हैं. थोड़ी देर में वो यहाँ से अपना कार्य संपन्न कर विदाई लेंगे, उसके पश्चात गजपति महाराजा यहाँ आएंगे अपनी सेवा प्रदान करने के लिए. पुरी के गजपति महाराजा भगवान श्री जगन्नाथ जी के प्रथम सेवक माने जाते हैं, इसलिए रथों पर छेरा पहरा की नीति संपन्न करने की जो परंपरा है, इसका जो हक है ये उन्हें प्राप्त है. छेरा पहरा क्या होता है ये मैं आपको बताना चाहूँगा. छेरा और पहरा ये दो शब्दों का मिश्रण है. छेरा यानी चंदन का गाढ़ा घोल, और पहरा यानी झाड़ू से साफ करना. तो छेरा पहरा ये मिलकर झाड़ू से साफ करना और चंदन मिश्रित जल का सिंचन करना, ये होता है छेरा पहरा. तो गजपति महाराजा जब ये आएंगे, बारी बारी से तीनों रथों पर ये सेवाएं प्रदान करेंगे. फिलहाल मैं आपको बता दूं, ये रथों के निर्माण के बारे में कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा. परंपरा के अनुसार वैशाख शुक्ल तृतीया यानी अक्षय तृतीया रथ निर्माण की शुभ तिथि मानी जाती है. प्रतिवर्ष पुरोहित यज्ञादि अनुष्ठान पूर्वक श्री नर यानी कि भगवान गजपति राजा के जो महल है उसे श्री नर कहा जाता है, उसके सम्मुख रथशाला की स्थापना करते हैं. ये रथशाला स्थानीय भाषा में रथ खड़ा कहा जाता है. इसके उपरांत श्री मंदिर से तीन रथों के लिए तीन आज्ञामाल लाए जाते हैं, और तीनों रथों के निर्माण हेतु रखी गई पहली लकड़ियों को पूजा करके, फिर पूजा अर्चना के बाद प्रति जो रथ के लिए अलग अलग कारीगर हैं वो कुल्हाड़ी चलाकर रथ निर्माण कार्य का शुभारंभ करते हैं. यही प्रक्रिया प्रतिवर्ष होती है, आज भी हो रही है, आगे चलकर भी यही प्रक्रिया जारी रहेगी. जिस प्रकार पंच तत्वों से बने मानव शरीर या मानव रथ निर्माण होता है, उसी प्रकार पांच तत्वों से बना है, उसी प्रकार रथ के निर्माण में भी पांच तत्वों का उपयोग किया जाता है. लकड़ी, धातु, वस्त्र, जरी और रंग आदि, जंबूरा, ये सब प्रयोग में लाया जाता है, जिससे रथ बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगते हैं. इन पांच तत्वों में से बालू यानी लकड़ी ही रथ निर्माण का प्रमुख कारक है. रथों के निर्माण में साधारणतया शाल, असन, धौरा, अर्जुन और फांसी आदि लकड़ियों का प्रमुखता से उपयोग किया जाता है. महाराणा गुणाकार छद्माकार वंशानुक्रम से ये रथों का निर्माण कार्य करते आए हैं, जो शास्त्रीय विधि से रथ का निर्माण करते हैं. रथ खला में मुख्यतः लकड़ी का काम होता है, और जबकि अन्य कार्य अलग अलग जगहों पर होते हैं. ये पारंपरिक शैली से शास्त्रानुमोदित विधि से रथों के निर्माण कार्य संपन्न किया जाता है. रथों के बारे में अधिक जानकारी के लिए मेरे साथी कमेंटेटर अंग्रेजी में प्रोफेसर

0: प्रार्थना की है भगवान से कि विश्व का कल्याण हो, धर्म का जय हो और अधर्म का नाश हो। उसके पश्चात वहां से आज्ञा माल लेकर गजपति महाराजा के निवास पहुंचे और गजपति महाराज कुछ ही देर पहले हमारे सामने से एक विशेष रूप से बनी पालकी पर विराजमान होकर रथों पर अपनी सेवा प्रदान करने के लिए पहुंचे हैं। वो बारी बारी से तीनों रथों पर सोने की मुठ वाली झाड़ू से रथों की सफाई करेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं, आगे आगे एक सेवक श्वेत फूल वहां डालते जा रहे हैं और झाड़ू से महाराजा उसकी सफाई करते हैं। इसके बाद वो तीनों रथों पर ये सेवा करने के बाद वो सुगंधी जल से, चंदन मिश्रित जल से सिंचन करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, आरती करेंगे, चामर सेवा करेंगे। ये उनका पारिवारिक हक है। भगवान श्री जगन्नाथ जी के प्रथम सेवक होने के नाते उन्हें यह अधिकार प्राप्त है। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रभु जगन्नाथ श्री बलभद्र और माता सुभद्रा के साथ चक्रराज सुदर्शन और सभी पार्श्व देवी देवता रथों पर विराजमान हो जाने के बाद, शंकराचार्य की नीति समापन होने के बाद गजपति महाराजा आते हैं। अभी अभी वो आए हैं। पहले दाऊ जी बलभद्र जी के रथ पर वो जाएंगे, फिर सुभद्रा जी के रथ पर और अंत में जगन्नाथ जी के रथ पर जाकर वो अपनी सेवा प्रदान करेंगे। इस छेरा पहरा जो विशेष नीति है और जिसका अधिकार गजपति महाराजा को प्राप्त है, ये सदियों पहले गजपति कपिलेंद्र देव के समय से इस परंपरा का प्रारंभ हुआ था। तब से लेकर आज तक वही परंपरा चली आ रही है। पहले मंदिर के अंदर से जहां भगवान रथ पर आने के लिए निकलते हैं, पूरे रास्ते पर छेरा पहरा की नीति होती थी। परंतु एक समय ऐसा आया जब गजपति मुकुंद देव रुग्ण होने के कारण ये परंपरा सीमित कर दी गई और सिर्फ रथों पर छेरा पहरा की नीति का प्रारंभ हुआ और यही नीति आज तक चली आ रही है। फिर भी राजा और प्रजा के बीच के संबंध तथा धर्म के प्रति राज परिवार के समर्पण भाव को दर्शाती ये परंपरा प्रतीक है भक्ति का, प्रतीक है विनम्रता का, प्रतीक है समानता का। जहां अपने पद प्रतिष्ठा के अहंकार को त्याग कर राजा स्वयं सेवक बन जाते हैं, क्योंकि जो जगत के नाथ हैं उनके आगे राजा हो या सामान्य व्यक्ति, सभी एक बराबर होते हैं, सभी उनके सेवक होते हैं। अब आगे का हाल सुनाने के लिए मैं अपने साथी कमेंटेटर प्रोफेसर रजनीकांत नायक जी से अनुरोध करूंगा अंग्रेजी में। जय श्री जगन्नाथ।
1: As I was telling you, brothers and sisters, our Lord Jagannath is a God of Bhava. Bhava means love and bhakti, that is devotion. And as such, the cult of Jagannath attracts a lot of apostles and saints, also mystics, scholars, seekers and general public to his annual Rath Jatra. They all come here to participate in this annual Rath Jatra, which is supposed to be a journey of an ultimate kind, which leads man, the finite, towards his redemption, the infinite. And in this connection, let me tell you, the apostles who have made this land famous in the past, they include names like Madhava, Ramanuja, Nimbarka, Kabir, Nanak, and of course Sri Chaitanya Deva from West Bengal. And we also come to hear about Saint Ganapati Bhatta on the Snana Purnima occasion, how he had had a dream.

0: fearing God, only to goes on, which only goes on to prove how much he loves his own God. And the unrelenting demands of the powerless children before their parents is often expressed through these ollies. But then bhajans do lack the passionate intensity of jananas. In jananas, gods are variously addressed as Krupa Sindhu, that is ocean of mercy, Deenabandhu, friend of the destitute, Arthatrana, remover of pain, or Patita Pavana, rescuer of the fallen. Fallen doesn't mean, as I told you, that it's a sinner, but anybody who's interested in redeeming himself or herself can come in the category of Patita. And this element of Oli is absent in bhajans, which occupies a special place and a central place in the jananas. The famous janana, one such famous janana is Ahe Neela Saila, courtesy Salabega, who was a Muslim, but he was a very fond devotee of the Lord. Or there is another janana by Akshay Mahanti, another popular singer from Odisha, Ekato Bhakata Jivana. These, and there are so many, for the precision of time, I am not able to, recapitulate many of them. But preponderance of devotional literature in pre-colonial Odisha, as researcher Manmohan Chakraborty highlights, and later on other historians have also agreed with him on this. And the first famous epithet which was given to a singer of janana in Odisha was Banikantha. It was conferred on Nimai Charan Harichandan. More about this later. I would like Majithia ji to continue the commentary in Hindi and talk to you about the progress of the Rath Jatra.
1: Dhanyavad Professor Nayak. जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, मैं देख पा रहा हूं बलभद्र जी के तालध्वज रथ पर गजपति महाराजा अपनी छेरा पहरा की नीति संपन्न करने में लगे हैं। तालध्वज रथ के अपने सेवा प्रदान करने के बाद, छेरा पहरा करने के बाद, वो देवी सुभद्रा के रथ पर जाएंगे और अंत में जगन्नाथ जी के रथ पर। उसी क्रम में पहले छेरा पहरा होगा, सोने की मुठ वाली झाड़ू से सफाई करेंगे, फिर वो सुगंधित जल का सिंचन करेंगे, उसके बाद आरती करेंगे, चामर सेवा करेंगे, उसके बाद उनकी सेवा संपन्न होगी और फिर से वो पालकी में सवार होकर अपने राजमहल वापस आएंगे। इसमें अभी समय है, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो यहां पुरी धाम जो ऐसा है, इसकी महिमा ऐसी है, यहां जो भी आए वो जगन्नाथ जी में अपने इष्ट का दर्शन कर पाए और अपने आप को धन्य मानने लगे। जैसे कि संत कबीर का जब श्री क्षेत्र पुरी में आगमन हुआ तो दूर से ही श्री मंदिर की चुड़ा पर, श्री मंदिर के शिखर पर नील चक्र और पतितपावन ध्वज को देखकर भावुक हो उठे, अनायास ही उनके मुख से निकल पड़ा, नील चक्र पर धजा बिराजे, मस्तके सोहे हीरा, ठाकुर आगे दासी नाचे, गाए दास कबीरा। अब आप सोच रहे होंगे, ठाकुर आगे दासी नाचे, इसका क्या अर्थ होता है? जगत के नाथ जगन्नाथ, उनके दरबार में पहले नृत्य हो रहा था, पारंपरिक ओडिसी नृत्य, जो देवदासियां होती थी, जिन्होंने अपना जीवन संपूर्ण रूप से भगवान श्री जगन्नाथ की सेवा में अर्पण कर दिया था, वो नृत्य करती थी। आज के जमाने में वो परंपरा अब रही नहीं, लेकिन कबीर जी ने

वो जो दोहा कहा, नील चक्र पर ध्वजा बिराजे, मस्तके सोहे हीरा, ठाकुर आगे दासी नाचे, गाए दास कबीरा। उसी प्रकार श्री जगन्नाथ महाप्रभु को स्वयं भगवान श्री कृष्ण और राधा का युग्म अवतार माना जाता है। 16वीं सदी के महान संत श्री चैतन्य अक्सर जगन्नाथ मंदिर में कृष्ण के प्रेम में भाव विभोर

है उस मंदिर को साफ करते थे। इससे पता चलता है अहंकार को मिटाने और मन को शुद्ध करने का ये प्रतीक है। जब जगन्नाथ जी स्नान यात्रा के बाद बीमार पड़ते हैं, जिसे अनवसर काल कहा जाता है, वो 15 दिन ऐसे होते हैं अपने भक्तों के लिए बहुत ही पीड़ादायी कहा जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु उसी समय पुरी आए हुए थे, उन्होंने जगन्नाथ जी के दर्शन न पाकर विरह के दर्द में पुरी छोड़कर 25 किलोमीटर दूर ब्रह्मगिरी में जा पहुंचे और वहां चतुर्भुज विष्णु के रूप में भगवान जगन्नाथ जी ने उन्हें दर्शन दिया और उनके मन को शांत किया। आज भी अनवसर काल में हजारों भक्त ब्रह्मगिरी जाते हैं भगवान जगन्नाथ जी के विष्णु रूप के दर्शन के लिए और वहां का प्रसिद्ध खीर का प्रसाद पाकर धन्य होते हैं। जब तुलसीदास जी पुरी आए थे, उन्हें लकड़ी से बनी जगन्नाथ जी के इस अधूरे रूप में अपने इष्ट यानी भगवान श्री राम के दर्शन नहीं हुए, उन्हें भी दुख हुआ, उनके मन को भी ठेस पहुंची। तब भगवान ने उन्हें रात में सपने में दर्शन देकर अपनी महिमा बताई। फिर अगले दिन सुबह मंदिर में तुलसीदास जी को जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के स्थान पर प्रभु श्री राम, श्री लक्ष्मण और माता सीता के भव्य दर्शन हुए। इसके अलावा भगवान राम के एक अन्य भक्त रघुदास को भी जगन्नाथ मंदिर में राम, लक्ष्मण और सीता के दर्शन हुए थे। ऐसी दंत कथाएं बहुत हैं, हम कहने बैठे तो समय कम पड़ जाएगा। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी हुई, जगन्नाथ के भक्तों से जुड़ी हुई कई ऐसी कथा हैं। एक कथा है दासिया बाउरी की, जो उस समय प्रचलित नीच जाति के थे, लेकिन जगन्नाथ जी के बहुत ही परम भक्त थे। उन्होंने सोचा, मैं मंदिर के अंदर प्रवेश तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं अपने इष्ट देव भगवान श्री जगन्नाथ को श्रीफल देना चाहता हूं, तो ये कैसे दूं? भगवान ने अपना हाथ लंबाया और उनके हाथ से श्रीफल स्वीकार कर उसे भी धन्य किया। जब कांची अभियान की बात हुई, कांची के महाराजा से युद्ध हुआ उत्कल के गजपति महाराजा का, उसमें उत्कल के राजा की ओर से स्वयं भगवान जगन्नाथ और भाई बलभद्र काले और सफेद घोड़े में सवार होकर युद्ध किया, कांची के महाराजा को परास्त किया और गजपति महाराजा को धन्य किया। ये संक्षेप में ये कहानी है जगन्नाथ रथ यात्रा की। अब समय हो चला है आप लोगों से विदाई लेने का। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो तीनों रथों पर गजपति महाराजा अपनी छेरा पहरा की नीति कर रहे हैं, अभी सुभद्रा जी के रथ पर हैं। जैसा कि क्रम है, पहले सोने की मूठ वाली झाड़ू से वो साफ करते हैं और फिर सुवासित चंदन मिश्रित जल से सिंचन करेंगे, फिर आरती करेंगे, चामर सेवा करेंगे। उसके बाद जगन्नाथ जी के रथ नंदी घोष पर वो सवार होंगे और उसी क्रम में अपनी सेवा प्रदान करेंगे। रथ पर चढ़ने के लिए ताल के जो वृक्ष के लकड़ी होती है, उससे बनी हुई एक विशेष प्रकार की जो सीढ़ी होती है, उसे चारमाल कहते हैं। तीनों रथों पर गजपति महाराजा अपनी सेवा पूरी कर ले, उसके बाद वो चारमाल निकाल लिए जाएंगे और अश्वों को बांधा जाएगा और उसके बाद सारथी को बिठाया जाएगा, फिर रथों को खींचने का काम शुरू होगा, जिसका समय 4 बजे निर्धारित किया गया था। और जैसा कि लग रहा है कुछ देर में है, अभी ये प्रक्रिया पूरी होगी तो वहाँ रथ को खींचने का काम भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, लेकिन उसका आंखों देखा हाल हम आपको सुना नहीं पाएंगे। हम आपको कुछ ही देर में दिल्ली ले चलेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी कटक केंद्र द्वारा प्रस्तुत हुआ और श्री जगन्नाथ जी के रथ यात्रा का पुरी से सीधा प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप लोग सुन रहे थे। मुझे आशा है आप सभी को आनंद आया होगा, भगवान जगन्नाथ जी का आपको आशीर्वाद मिले। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जय किशोर नागर जी, विनय कुमार सामंतराय जी, तकनीकी सहायता में मिहिर कुमार सामल
और शंभुनाथ।

0: बहरा थे। इसी के साथ मैं मोहन मजीठिया, मेरे साथी कमेंटेटर प्रोफेसर रजनीकांत नायक जी से उनके साथ मिलकर आपके साथ ये जो समय बिताया इसके लिए आभार व्यक्त करते हुए विदाई लेते हैं और अब आप लोगों को ले चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली को। जय श्री जगन्नाथ।
1: FM बालतल, FM पहलगाम, DTH और न्यूज़ ऑन ईयर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल पर आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण सुन रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग 3 बजे तक कुल 17,626 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं, जिनमें पुरुषों की संख्या है 13,261, महिलाओं की संख्या है 3,987, बालकों की संख्या है 156, 61 साधु हैं, 6 साध्वी, 3 ट्रांसजेंडर और सुरक्षा कर्मियों की जो संख्या है वो है 152। जी हाँ, जिन्होंने अभी तक जो है बाबा बर्फानी के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं आज 3 बजे तक। तो यहाँ पर आप नोट कीजिए कुछ खास हेल्पलाइन नंबर्स जो आपके सफ़र में बहुत काम आएंगे। जी हाँ, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड हेल्पलाइन नंबर्स आप जो है वो नोट कीजिए। जम्मू के लिए रहेगा 2555662 और श्रीनगर के लिए रहेगा 2313146। यात्रा कंट्रोल रूम टोल फ्री नंबर रहेगा 1800187898 और इमरजेंसी डिज़ास्टर मैनेजमेंट हेल्पलाइन जो है वो है 1070। आपको याद रखना है कि एक्सेस गेट्स पर बिना RFID कार्ड की जो है एंट्री नहीं मिलेगी। इसे हर समय आप अपने गले में पहन कर रखेंगे। साथ ही वादी को स्वच्छ रखने के लिए प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध है। आप कहीं मत जाइए, क्योंकि थोड़ी ही देर में हम अपने एक और संवाददाता से जुड़ेंगे। आप बने रहिए हमारे संग, FM पहलगाम, FM बालतल के संग।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहनें। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
0: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए।
2: आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण सुन रहे हैं। FM बालतल, FM पहलगाम, DTH और न्यूज ऑन एयर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। चलिए सीधे चलते हैं पहलगाम के नुनवान बेस कैंप, जहां से हमारे संवाददाता एस तारिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी तारिक।
3: शुक्रिया फरजाना। पहलगाम के प्राचीन मार्ग और इसके आसपास के क्षेत्रों में मौसम सुहाना और खुशक बना हुआ है। बाबा बर्फानी श्री अमरनाथ जी के भक्तों की यात्रा पूरे उत्साह, उमंग और सुखद वातावरण में निरंतर जारी है। हिमालय के ऊंचे पर्वतों और वादियों में पम पम भोले और हर हर महादेव के जय घोष गूंज रही है और सारा यात्रा मार्ग शिव भक्ति के रंग में रंगा हुआ है। और नुनवर आधार शिवर से सुबह रवाना होने वाले हजारों श्रद्धालु चंदनवाड़ी से होते हुए शीशनाग और पंचतरणी के पड़ाव तक पहुंच चुके हैं, जबकि इन्हीं आधार शिवरों में रात्रि विश्राम करने वाले हजारों यात्री पवित्र अमरनाथ गुफा में दर्शन और पूजा अर्चना में मशगूल है। इधर जम्मू के भगवती नगर आधार शिवर से 5,200 यात्रियों पर मुश्तमिल 15वां जत्था वादी कश्मीर में प्रवेश कर चुका है और काजीगुल से यात्रा के दोनों मार्ग आंतर और पहलगाम पहुंच चुके हैं। पहलगाम के प्राचीन मार्ग पर पहुंचने वाले जत्थे में 117 छोटे और बड़ी वाहनों के माध्यम से 3,456 यात्री कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नुनवर आधार शिवर में प्रवेश कर चुके हैं। इनमें 2,720 पुरुष, 622 महिलाएं, 92 साधु, 9 साध्वी, 2 बालक और 1 किन्नर श्रद्धालु शामिल है। 57 दिनों पर मुश्तमिल श्री अमरनाथ जी यात्रा में 3 जुलाई से कल आज तक लगभग 3,20,000 से अधिक भक्तों को बाबा बर्फानी के पवित्र धाम में दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है, जबकि ये रिपोर्ट फाइल किए जाने तक आज दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 17,626 तक पहुंच चुकी है और दर्शन का सिलसिला निरंतर जारी है। अब क्योंकि हम बात मौसम की करें तो पहलगाम और इसके आसपास के क्षेत्रों के साथ यात्रा मार्ग पर मौसम खुशगवार और सुहाना बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार इस समय पहलगाम से पवित्र गुफा तक तापमान लगभग 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि वातावरण में नमी की मात्र 45 डिग्री रिकॉर्ड दर्ज है। इस वर्ष भी श्री अमरनाथ जी यात्रा को सरसब्ज और जीरो लैंड फुल यात्रा बनाने के लिए विशेष उपाय किए गए हैं। माहौलियात जागरूकता

0: को बढ़ावा देने और गैस की मटेरियल की सही निपटारे की अहमियत को उजागर करने के लिए भी निर्णय अभियान चलाया जा रहा है, जैसा कि देश के प्रधानमंत्री ने पहले ही आह्वान किया था। अमरनाथ यात्रा 2024 के श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने यात्रा के विभिन्न मार्गों पर सामूहिक काम गाहों के क्याम के लिए 109 लंगरों को मंजूरी फराहम की थी, जहाँ यात्रियों को मिश्रा भोजन और दीगर सुविधाएं प्राप्त हो रही है। अलग और सुरक्षा व्यवस्थाओं को और भी मजबूत बनाया गया है। यात्रियों के लिए जीवन बीमा राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपया कर दी गई है, जबकि यात्रियों के आवागमन पर प्रभावी निगरानी के लिए QR कोड आधारित पहचान यानी पहचान सत्यापन प्रणाली लागू की गई है, जिसके माध्यम से यात्री के हर चरण पर यात्रियों के गतिविधियों और सामर्थ्य का रिकॉर्ड महफूज रखा जा सकता है। इस तरीके से आज भी दोस्तों जिस तरीके से इतने इन 12-13 दिनों में यात्रा सफलता के साथ जारी है, और आज भी इसी जज्बे के साथ यात्रा जारी है। जी
1: जी तारिक, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रशासन ने इस बार सिक्योरिटी को देखते हुए पूरे रूट को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया है। ग्राउंड पर सिक्योरिटी फोर्सेस जैसे कि CRPF या JK पुलिस जो है, उनका बंदोबस्त और ड्रोन एक्टिविटी पर क्या नजर रखी जा रही है?
0: देखिए, जहां हम सिक्योरिटी की बात करें, सबसे पहले जो एयरस्पेस में उड़ने वाले जो भी वाहन है उनको भी वहां से पाबंदी है, और हर साल की तरह पिछले साल की तरह इस साल भी जो हेलीकॉप्टर सुविधाएं जो सुविधा रखी गई थी वो भी बहुत रख दी गई है, निलंबित रख दी गई है। इसलिए ये सिक्योरिटी को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाया जाए, और सिक्योरिटी ग्रिड को इतना मजबूत कर दिया गया है कि हम बिना झिझक ये कह सकते हैं कि सिक्योरिटी के हवाले से कोई भी मामला पेश आ ही नहीं सकता है। इस तरीके से पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग से लेके यात्रा के दोनों जो हमारे मार्ग है, दोनों बालतल और पहलगाम तक, इतनी सिक्योरिटी टाइट है कि जिसमें 3 दायरों वाली सिक्योरिटी है, CCTV कैमराज है, स्नेपर डॉग्स है, स्नेपर ये सिक्योरिटी के एक बहुत बड़े वो ट्रेंड लोग वहां बैठे हैं हर जगह पे। सिक्योरिटी के पिछले साल की तुलना में आज के इस साल सिक्योरिटी डबल कर दी गई है, तो इसलिए इस आपको अंदाजा होगा कि सिक्योरिटी किस तरीके से कहीं परिंदा पार नहीं मार सकता है।
1: जी जी तारिक, हम ये भी जानना चाहेंगे कि लिदर रिवर के किनारे बेस कैंप में, जैसा कि हम जानते हैं कि नाइट टेम्परेचर काफ़ी ड्रॉप हो जाता है, तो यात्रियों को ठंड और ऑल्टीट्यूड सिकनेस से बचाने के लिए नुनवान में मेडिकल टीम्स की क्या ताज़ा गाइडलाइंस हैं?
0: मेडिकल टीम की मैंने कल भी आपको ये बताया था कि पहले ही जो पुलिस विभाग के जो ये डिपार्टमेंट है, मोहकमा है, उन्होंने पहले ही उस तरीके से मेडिकल टीमें तैयार रखी है कि जहाँ लोग चल नहीं सकते वहां उन्होंने कोनी एम्बुलेंस तक रखी है, ऑक्सीजन उनके साथ होता है, हर प्रकार के जो व्यवस्था है वो उनके साथ होती है, उनको साथ सामान होता है। कहीं पे भी अगर किसी भी हाई ऑल्टीट्यूड पे भी कोई बीमार हो जाए तो वहां भी पोनी एम्बुलेंस बैठी हुई है, वहां मेडिकल टीम में बैठी हुई है। और ठंड की जहाँ बात करते हैं, अभी वो ठंड नहीं हो रही है जिस ठंड से कोई बीमार ही हो सकता है, अलबत्ता क्योंकि ये ग्लेशियरों के ऊंचे पर्वत है, ऑक्सीजन की कमी रहती है, लेकिन बिल्कुल पहलगाम से लेके बराबर जो हमारे पवित्र गुफा है वहां तक हर जगह ऑक्सीजन के मुख्तलिफ जो साजो सामान है रखे गए हैं कि कहीं भी किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। पुलिस पुलिस तो बिल्कुल उन्होंने अपने तरीके से भी एक और हॉस्पिटल जो 24 घंटे काम करता है उन्होंने भी वहां स्थापित कर दिया है, और उनके जो जवान है वो मुस्तैदी से जहाँ किसी भी आदमी को कोई भी हेल्प की जरूरत पड़ती है वो अपने कंधों पे उठाते हैं, जो उनकी एक्स्ट्रा ड्यूटी है। हालांकि वो सिक्योरिटी के साथ साथ उनकी सेवादारी में इस तरह मगन है कि जितने भी मुझे वीडियो या जितने भी मैंने खुद भी आंखों से देखा है,
1: जी
0: मैं सलूट करता हूँ ऐसे में पुलिस को जिस तरीके से वो भी मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। और किसी भी यात्री को, 2-4 यात्री आज तक हमें जो रिपोर्ट मिले हैं जो बीमार हुए हैं, हालांकि उसमें हर जगह एक तो पहलगाम में, दूसरा पहलगाम से लेके जितने भी हॉस्पिटल है वहाँ कैंपस बनाए गए हैं, उनके लिए नोडल ऑफिसर रखे गए हैं। यहाँ मेडिकल जो सबसे बड़ा इदारा है हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जहाँ भी बाजार तौर पे एक डिपार्टमेंट बिल्कुल स्थापित रखा गया है, उनको सिर्फ इतना है कि यात्री जिसको भी मेडिकल सुविधा की जरूरत पड़े तो वहाँ बिल्कुल फौरन एक बड़ा एक बहुत बड़ा टीम होता है जो उनकी देखरेख करता है। जी
1: जी पिछले 13 दिनों में 3,24,000 से ज़्यादा यात्री जो हैं वो दर्शन कर

0: चुके हैं। तो ननवान कैंप में इस रिकॉर्ड भीड़ को कंट्रोल करने और उन्हें आगे रवाना करने के लिए प्रशासन का क्या कोई नया मैनेजमेंट आपको दिख रहा है?
1: उसकी जरूरत नहीं पड़ती, जो पहले ही मैनेजमेंट वहाँ बनी हुई है वो बिल्कुल काफी है, क्योंकि वहाँ जो हम अगर जगह की बात करें वहाँ इतने टेंटर लगे हुए हैं, ये अगर 10,00,000 तक भी एक दिन में वहाँ यात्री बैठते हैं तो उनके लिए जगह बिल्कुल है,
0: रखी गई है।
1: उनके लिए बिल्कुल लंगर जो इतने ही है, अगर लंगरों की भी जरूरत पड़े 10,000 लोगों के लिए तो है, लेकिन 10,000 नहीं तो 5,000 से 6,000 4,000 ऐसे इतने लोग आते हैं और वहाँ जगह बचती है। वहाँ अगर टेंटर्स लगे हुए हैं, वहाँ विंड प्रूफ और वाटर प्रूफ टेंटर्स लगे हुए हैं, फाइबर स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, और भी गवर्नमेंट के पहले ही जो कुछ बिल्डिंग है वो बिल्कुल वहाँ रखे गए हैं। किसी भी कारण किसी भी कोई परेशानी वहाँ नहीं है, और बाजार तौर पर 4 बजे सुबह बिल्कुल बड़ी सिक्योरिटी के तहत 16 किलोमीटर दूर चंदनवारी तक वो जाते हैं। चंदनवारी के बाद वहां से गाड़ियां बंद होती है और वहां से पदयात्रा शुरू होती है, और वहां भी एक सिस्टम है बाजार तौर पर उनके जो कार्ड

हैं, वहाँ विंड प्रूफ और वाटर प्रूफ टेंट लगे हुए हैं, फाइबर स्किन टू स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, और भी गवर्नमेंट के पहले ही जो कुछ बिल्डिंग है वो बिल्कुल वहाँ रखे गए हैं। किसी भी कारण किसी भी कोई परेशानी वहाँ नहीं है, और बाजार का चौथे 4 बजे सुबह बिल्कुल बड़ी सिक्योरिटी के तहत 16 किलोमीटर दूर चंदनवारी तक वो जाते हैं। चंदनवारी के बाद वहां से गाड़ियां बंद होती है और वहां से पदयात्रा शुरू होती है, और वहां भी एक सिस्टम है बाजार तौर पे उनके जो कार्ड

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्ट पेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्री पेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।
2: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल एफएम पहलगाम पर। चलिए सीधे चलते हैं श्रीनगर के पांथा चौक ट्रांजिट कैंप, जहां से हमारे संवाददाता इमरान नायकू लाइव जुड़ चुके हैं। जी इमरान।
3: जी बिल्कुल, अमरनाथ जी यात्रा अभी जारी है और हम देख रहे हैं कि आज भी अमरनाथ जी यात्रियों के अलग अलग जत्थे जो है श्रीनगर के ट्रांजिट कैंप से रवाना किए गए पवित्र गुफा के दर्शन के लिए। और इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि इस जो अलग अलग जो काफिले यहाँ से या जत्थे जो यात्रियों के रवाना किए गए, उसमें मर्द खवातीन यानी मेल फीमेल और साधु साध्वीज भी शामिल थी, कुछ बच्चे भी शामिल थे जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए और अमरनाथ जी यात्रा के पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किए गए। साथ साथ आज यहाँ मजीद जो यात्री है इस ट्रांजिट कैंप पहुंच चुके हैं, जो यहाँ पे श्रीनगर के पांथा चौक ट्रांजिट कैंप पे नाइट स्टे करेंगे और कल सुबह इन्हें यहाँ से पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किया जाएगा। और यहाँ श्रीनगर के इस ट्रांजिट कैंप में, जैसे कि हम कंटिन्यूसली अपडेट कर रहे हैं कि यहाँ अमरनाथ जी यात्रियों के लिए हर तरह की सुविधाएं प्रशासन की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रखी गई है। और इस सिलसिले में हमारी भी लगातार अमरनाथ जी यात्रियों से बात हो रही है और वो यात्री जो पवित्र गुफा का दर्शन करके लौट रहे हैं या वो यात्री जो दर्शन के लिए आए हैं, और इनमें बहुत सारे ऐसे यात्री हैं जो कई सालों से कश्मीर आए और उन्होंने यात्रा की है, और बहुत सारे ऐसे भी यात्री हैं जिनका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है या जो पहली मरतबा वैली पहुंच रहे हैं और अमरनाथ जी यात्रा के दर्शन के लिए। और हर एक का एक अपना अलग अलग फीडबैक है, लेकिन यहाँ अरेंजमेंट्स को लेके जो प्रशासन ने रखी है अमरनाथ जी यात्रियों के लिए, तो सुविधाएं या सहूलियात, तो उस पर अभी हम देख रहे हैं कि यात्री काफी मुतमईन है, यानी कि वो अप्रिशिएट गवर्नमेंट का कर रहे हैं और खासकर जो पीआरओ की तरफ से ट्रैक्स को बेहतर किया गया है। और इसके अलावा अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड हो या कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो या कि जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, हर एक जो अपनी खिदमात या अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या यहाँ के जो सर्विस प्रोवाइडर्स है या यहाँ के जो बाकी स्टेक होल्डर्स या जितने भी इसमें वॉलंटियर्स से जो अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं, हर एक अपने तरीके से इस यात्रा को बेहतर बनाने के लिए अपनी खिदमत पेश करें। लेकिन यात्री हर एक अभी तक जो है इस यात्रा को लेके एक पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं। और आज भी श्रीनगर में मौसम बिल्कुल साजगार है, यानी मौसम बिल्कुल साफ है, वो धूप छाई हुई है, और इस सब के बीच में अमरनाथ जी यात्री यहाँ से रवाना हो रहे हैं और यहाँ पहुंच भी रहे जो कि कल गुफा के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। और यहाँ इस ट्रांजिट कैंप में, जैसे मैंने कहा कि खाने पीने का जो लंगर है, यहाँ जो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, यहाँ जो सैनिटेशन का निज़ाम है, यहाँ जो कूलिंग सिस्टम है या बाकी जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज है, वो पहले से ही यात्रियों के लिए रखी गई है। और इसके अलावा यहाँ हेल्प डेस्क कायम किया गया है, अगर किसी यात्री को किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए तो ऑफिशियल्स हेल्प डेस्क पर रखे गए हैं जो उनकी जो असिस्टेंस है वो कर रहे हैं।
2: जी इमरान, मुझे ये जानना है कि जम्मू के भगवती नगर से आज 5201 यात्री जो है वो निकले थे, क्या उनकी गाड़ियां पांथा चौक पहुंच चुकी हैं और उन्हें आगे बालतल और पहलगाम के लिए किस तरह आप कैटेगराइज करके जो है भेजा जा रहा है वहाँ?
3: बिल्कुल, देखिए गवर्नमेंट की तरफ से पहले से ही जो भगवती नगर बेस कैंप से कश्मीर वैली जो यात्री पहुंचते हैं तो उन्हें दो अलग अलग रूट्स के लिए रवाना किया जाता है। एक काफिला जो है या जो एक जत्था जो है वो पहलगाम बेस कैंप की तरफ रवाना किया जाता है और दूसरा जो है श्रीनगर के रवाना किया जाता है और यहाँ से वो मनीगाम भी पहुंच जाते हैं। और आज भी जैसे मैंने कहा श्रीनगर दो अलग अलग जत्थे पहुंच चुके हैं और इसके अलावा बाकी जो है बाकी जो ट्रांजिट कैंप्स पर कायम किए गए हैं उन ट्रांजिट कैंप्स में अमरनाथ जी यात्री पहुंच रहे हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से एक फिक्स टाइम जो है दी गई है। और जैसे मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से जो एडवाइजरी, जो डूज एंड डोंट्स इनको बताया जा रहा है कि
2: जी
3: प्रशासन की एडवाइजरीज पर आप अमल दरामद करें, सो दैट कि यात्रा में किसी तरह की किसी यात्री को परेशानी ना हो। ऐसा हम देख रहे हैं कि अभी भी यात्री जो है गवर्नमेंट की एडवाइजरीज को फॉलो कर रहे हैं। थोड़ा सा कहीं पिछली बार थोड़ा सा कंफ्यूजन जो था रजिस्ट्रेशन को लेके, उसके बाद जब गवर्नमेंट ने एडवाइजरी दी कि प्रॉपरली जो रजिस्ट्रेशन करके आते हैं तो वही जो है अपना सफर यकीनी बनाए या वो यात्रा के लिए निकले, तो उसको भी हम देख रहे हैं कि अभी यात्री भी उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में हम देख रहे हैं कि यहाँ श्रीनगर भी पहुंच रहे हैं अमरनाथ जी यात्री, मनीगाम ट्रांजिट कैंप पर भी, या फिर जो पहलगाम रूट है वहां से जो ट्रांजिट कैंप है वहां भी अमरनाथ जी यात्री पहुंच रहे हैं।
2: जी इमरान, श्रीनगर जो है वहाँ के एंट्री पॉइंट्स पर ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है वो कैसा है, और अगर हम देखें तो क्या यात्रियों के कॉन्वॉयस की वजह से नॉर्मल पब्लिक जो है, लोकल ट्रैफिक जो है, उस पर कोई असर पड़ रहा है या रास्ता बिल्कुल स्मूथ है?
3: बिल्कुल, देखिए जैसे कि हर दिन शाम को ट्रैफिक पुलिस J&K की तरफ से एक एडवाइजरी जारी होती है
2: जी।
3: और उस एडवाइजरी के मुताबिक जो भी श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे का सफर करना चाहते हैं, जो श्रीनगर से जम्मू या जम्मू से श्रीनगर आना चाहते हैं, तो उसमें सारा बताया गया है कि इस तरीके से जो आम लोग हैं वो अपने अपना ट्रैवल करें या यात्री कितने बजे कहाँ पहुंचेंगे। दूसरा ये कि श्रीनगर में जैसे हमारा जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक पुलिस सिटी श्रीनगर, उनके जो अहलकार है या जो उनके जो ऑफिशियल्स है, जो लोग हैं, वो हम देख रहे हैं कि ट्रांजिट कैंप पांथा चौक में, नौगाम बाईपास पर भी, और सिटी के अंदर तो है ही है वो, तो ट्रैफिक में किसी तरह की कोई खलल पैदा ना हो उसको यकीनी बनाने के लिए, उसको इंश्योर करने के लिए ट्रैफिक पुलिस हम देख रहे हैं कि रात दिन अपनी मेहनत कर रहे हैं। और इसी भी हम देख रहे हैं कि वो मिसमैनेजमेंट ऑफ ट्रैफिक जिसे हम बोलते हैं वो हमें दिखाई नहीं देता है कि ट्रैफिक के एहलकार भी काम करें, जो यात्री आ रहे हैं जिन गाड़ियों में आ रहे हैं उन ड्राइवर साहिबान को भी पहले से गवर्नमेंट ने एडवाइजरी दी है, वो भी उसी टाइम टेबल के हिसाब से और उसी रूट के हिसाब से और उसी अपनी एक लेवल पर ही जो है ट्रैफिक को अपनी गाड़ियां चला रहे, तो इसलिए अभी एज सच कोई ऐसी शिकायत नहीं हुई
2: है
3: ट्रैफिक की तरफ से कोई यहां से खलल पैदा हो। छोटी मोटी कहीं पे शायद कहीं किसी किसी जगह पे ट्रैफिक जो है दबाव दिखता है, क्योंकि अभी ट्रैफिक फ्लो भी बहुत ज्यादा है यात्रा के बगैर भी, तो लेकिन ओवरऑल हम देख रहे हैं कि यात्रा का वो ज्यादा असर उतना नहीं दिखाई देता है जो शायद आम लोग सोचते हैं।
2: जी इमरान, अगर हम देखें तो श्रीनगर जो है वो पूरी यात्रा का एक कंट्रोल हब है, तो यहाँ ऑन स्पॉट RFID वेरिफिकेशन और सिक्योरिटी चेक किस तरह चल रहा है ताकि बिना रजिस्ट्रेशन वाले जो लोग हैं वो आगे ना निकल सकें?
3: देखिए आपको याद होगा कि जब से यात्रा शुरू हुई है तब से हम मुसलसल अपडेट कर रहे हैं कि श्रीनगर का जो पांथा चौक, ये जो श्रीनगर का जो HMT इलाका है, वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कई सालों से एक कमांड कंट्रोल सेंटर कायम किया गया है जिसको इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर नाम दिया गया है। और इस कमांड कंट्रोल सेंटर के जरिए से इस पूरी यात्रा को ना सिर्फ श्रीनगर बल्कि जितने भी ट्रांजिट कैंप्स हैं, जितने भी जो पॉइंट्स हैं इस यात्रा के, जहाँ पे भी यात्री ठहरते हैं या जहाँ से यात्रियों का जो कानवे जो जहाँ से गुजरती है, इस पूरे इन रूट्स को पवित्र गुफा तक इस ICCC के जरिए से मॉनिटर किया जाता है। अब सिर्फ इसमें मॉनिटरी नहीं किया जाता है बल्कि यहाँ एक कोऑर्डिनेशन है बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट, मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन है।

0: और यहाँ मॉनिटर्स बड़े बड़े लगे हैं, वहाँ गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स बैठे, एक्सपर्ट्स बैठे जो पूरी इस यात्रा को मॉनिटर कर रहे हैं और देख रहे हैं यहाँ से कि कहीं ट्रैफिक तो जैम नहीं है, कहीं यात्री तो बीमार नहीं हुआ, कहीं कोई और प्रॉब्लम नहीं तो हुई, कहीं खुदा ना खास कोई एक्सीडेंट नहीं पेश आया, कहीं यात्री को कोई और प्रॉब्लम की जरूरत प्रॉब्लम नहीं हुई, या किसी को मदद की जरूरत है, या जो हमारे पोनी वालास है उनमें उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ओवरऑल यात्रा को रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसको देखने के लिए ये ICCC कायम किया गया है, और यहाँ से विद इन नो टाइम अगर कोई प्रॉब्लम भी हो जाए तो विद इन नो टाइम एक कोऑर्डिनेशन के जरिए से उस प्रॉब्लम को दूर किया जाता है। जो डिपार्टमेंट आपस में जो है पहले से ही कोऑर्डिनेशन की जो डायरेक्शंस गवर्नमेंट ने दी है, और इसी तरीके से RFID, जैसे मैंने कल भी कहा था कि श्रीनगर का ये जो ट्रांजिट कैंप है यहाँ हर तरह की सुविधाएं रखी गई, जैसे मैंने कहा कि बेसिक फैसिलिटीज तो है ही है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की तरफ से श्राइन बोर्ड की तरफ से जो ऑनलाइन वेबसाइट पर भी खिदमात हासिल करना चाहते हैं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से अमरनाथ जी यात्री, इसके अलावा काउंटर सेटअप्स कायम किए गए हैं, और ऑन स्पॉट भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होती है और ऑनलाइन भी होती है। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस, एडवाइजरीज दी गई है कि उन एडवाइजरीज, उन इंस्ट्रक्शंस या उन गाइडलाइंस को अमरनाथ जी यात्री निकलने से पहले, रजिस्ट्रेशन करने से पहले उसको फॉलो करें, उसको देखें, सो दैट उनकी जो यात्रा है ये बेहतरीन यात्रा के रूप में सामने आए।
1: जी हम जानते हैं, तो हम कह सकते हैं कि सिटी के अंदर या पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल हाईवे कनेक्टिंग पॉइंट्स पर जेके पुलिस और CRPF का एक सिक्योरिटी ग्रिड जो है वो बहुत तेज है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो इमरान, यहाँ पर अगर हम हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करें तो जो यात्री जम्मू से लंबी ट्रैवल करके थक चुके हैं उनके लिए पांथा चौक के मेडिकल बेस और हेल्थ चेकअप सेंटर्स में क्या इमरजेंसी फैसिलिटीज़ जो हैं वो उपलब्ध हैं?
0: देखिए हर साल जितने भी जैसे ट्रांजिट कैंप्स है यात्रा को लेके, हर जगह पर गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है उनके जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, हमारा डॉक्टर्स है या फर्स्ट एड की जो फैसिलिटीज है वो इन ट्रांजिट कैंप्स में रखी गई है, पर्टिकुलरली इन श्रीनगर सिटी जो ट्रांजिट कैंप है। तो हर जगह इसी तरह शहर में भी ये फैसिलिटीज रखी गई है, फर्स्ट एड दिया जा रहा है, या किसी को कोई और फीवर हो, कोई और प्रॉब्लम हो, एक मामूली सी अगर किसी को कोई तकलीफ हो तो वो यहाँ आ सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि यहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट के सीनियर डॉक्टर जो है वो डिप्यूट किए गए हैं, इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ है यहाँ पे, बाकी लोग यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं, और मेडिसिन यहाँ पे रखी गई है इन केस के ज्यादा किसी यात्री को कोई प्रॉब्लम हो, बीमार हो, तो यहाँ एम्बुलेंस की भी फैसिलिटीज रखी गई है, सर्विस रखी गई है, तो उन्हें फिर सौरा या फिर बाकी नज़दीकी जो हमारे मेजर टेरिटरी हॉस्पिटल्स है वहाँ रेफर किया जाता है। तो इसलिए वो चाहे मेडिकल फैसिलिटीज हो, वो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज हो, और सैनिटेशन की फैसिलिटीज हो, वो बाकी जितनी भी बेसिक एमिनिटीज ऑफ लाइफ जिसको कहा जाता है वो सारी गवर्नमेंट ने पहले से ही इंश्योर की थी, और आज भी हम देख रहे हैं कि इसका बार बार जो है गवर्नमेंट की या जो प्रशासन है वो इसका रिव्यू कर रहे हैं। रिसेंटली यहाँ LG साहब भी आए थे और उनने भी खुद यहाँ रिव्यू किया, ड्यूकाम साहब आ रहे या SSP या डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर या श्राइन बोर्ड के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं। सो हम यूँ कहें कि यात्रा अभी जो है स्मूथ तरीके से पीसफुली तो जारी है, लेकिन यात्रियों के लिए फैसिलिटीज भी बेस्ट से बेस्ट दी जा रही है।
1: बहुत बहुत इमरान आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्रीनगर से हम तक ये ताज़ा जानकारी पहुंचाने के लिए। आप वहां अपना ख्याल रखिएगा और यात्रियों को गाइड जो है वो करते रहिए। ये श्रोताओं थे हमारे संवाददाता श्रीनगर से इमरान नायकू। अगर आप भी यात्रा पर हैं तो ध्यान रखिए कि बिना वैलिड RFID कार्ड के आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है। सुनते रहिए श्री अमरनाथ जी यात्रा का ये विशेष प्रसारण FM बालतल, FM पहलगाम, DTH और न्यूज़ ऑन एयर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए।

0: यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहनें। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
0: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए।

0: FM बाल्टल, FM पहलगाम, DTH और न्यूज ऑन ईयर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी अराधना चैनल पर आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण सुन रहे हैं। चलिए सीधे रुख करते हैं गांधरबल का, जहां से हमारे संवाददाता रहीम रिजवान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी रिजवान, गांधरबल पूरे बालतल रूट की लाइफलाइन है और हम ये जानना चाहते हैं कि मणिगाम ट्रांजिट कैंप और हाईवे पर अभी क्या ताज़ा चहल पहल दिख रही है।
1: श्रोताओं को हम यात्रा के हवाले से पल पल की खबरें पहुंचाते हैं और अगर हम बालतल मुख्य मार्ग और यहाँ गांधरबल की बात करेंगे तो सबसे पहले हम आपको बालतल क्षेत्र के वातावरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हैं। बालतल से पवित्र गुफा तक मौसम खुशगवार है, धूप खिली हुई है, अलबत्ता यहाँ मौसम पल पल में बदलता रहता है। बीच में हल्की वर्षा भी होती है जिससे यहाँ ठंडी एवं ताजा हवाएं चलती रहती हैं। बालतल के पहाड़ी क्षेत्र में सुहाने मौसम एवं ताजा हवाओं का आनंद लेते हुए बाबा फरमानी के भक्त दर्शन के लिए पवित्र गुफा जाकर शिवलिंगम के दर्शन से प्राप्त होते हैं। आपको ये भी बताते चलें कि इस वर्ष बड़ी मात्रा में देश के विभिन्न भागों से श्रद्धालु घाटी आगमन होकर पवित्र गुफा पहुंच रहे हैं, जहां वे माथा टेक कर बाबा बर्फानी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं जिससे उन्हें अपार शांति प्राप्त होती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार आज भी सुबह 4 बजे से 7:30 बजे तक 7,959 यात्री बालतल बेस कैंप से पवित्र गुफा की तरफ रवाना हुए। दुमेल कंट्रोल गेट पार करने वाले इन श्रद्धालुओं में 6054 पुरुष, 1612 महिलाएं, 120 बालक बालिका, 17 साधु, 10 साधियां एवं 146 सुरक्षा कर्मी शामिल थे। 12,756 फुट यानी 3,888 मीटर बुलंदी पर स्थित बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा पर पहुंचने वाले हजारों श्रद्धालु आए रोज शिवलिंगम का दर्शन करके सुरक्षित वापस रवाना हो रहे हैं। आज भी 4 बजे तक 6,625 श्रद्धालु ने गुफा जाकर प्रार्थना की तथा बाबा बर्फानी के आशीर्वाद से प्राप्त हुए एवं वे यात्री धीरे धीरे बालतल बेस कैंप पहुंचे। बालतल बेस कैंप पहुंचने वाले श्रद्धालु में 4,912 पुरुष, 1,542 महिलाएं, 48 बालक बालिका, 19 साधु, 4 साधिया एवं 100 सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। बालतल बेस कैंप में रात्रि विश्राम के बाद इन श्रद्धालुओं को सुबह सवेरे छोटी बड़ी वाहनों में जम्मू भगवती नगर बेस कैंप की तरफ जाने की अनुमति दी जाएगी। यात्रा के दौरान सुरक्षा के लिए चारों ओर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं, जबकि जिला प्रशासन गांधरबल ने हर पड़ाव पर उच्च स्तर की सुविधाएं भी उपलब्ध रखी है जिसको लेकर यात्री संतुष्ट है। तो इसके अलावा अगर हम ट्रांजिट का मणिगाम या ट्रांजिट कैंप शादीपुरा की बात करेंगे तो यहाँ के भी सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं और इसके साथ साथ जिला प्रशासन के द्वारा किए गए व्यवस्थाओं को लेकर यात्री बेहद संतुष्ट हैं, क्योंकि हम अपने श्रोताओं को बार बार ये बताते हैं कि शाम 5 बजे के बाद जो भी यात्री ट्रांजिट कैंप शादीपुरा या ट्रांजिट कैंप मणिगाम पहुंचते हैं उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती है, लिहाजा उन्हें रात भर इन्हीं ट्रांजिट कैंपों में कायम करना पड़ता है। तो सुबह सवेरे रात्रि विश्राम के बाद इन यात्रियों को या तो बालतल बेस कैंप या जम्मू भगवती नगर बेस कैंप की तरफ जाने की अनुमति दी जाती है और इन दोनों कैंपों में जो जिला प्रशासन के द्वारा व्यवस्थाएं की गई हैं वो ये हम कह सकते हैं कि उच्च स्तर की सुविधाएं यहां उपलब्ध रखी गई हैं। जी
0: तो हम ये जानना चाहते हैं कि वहां पर यात्रियों के ठहरने, लंगर के खाने पीने और साफ सफाई के क्या ताज़ा जो है इंतजाम रखे गए हैं जो वहां रुकते हैं।

0: इन दोनों ट्रांजिट कैंपों में, और अगर हम कहेंगे बालतल से पवित्र गुफा तक, जो मुफ्त लंगर, पीने के लिए साफ पानी, बिजली और गर्म पानी नहाने के लिए भी यहाँ रखा गया है, और
1: जी
0: इसके साथ साथ रात्रि विश्राम के लिए उम्दा बेडिंग का इंतजाम भी किया गया है, जिसको लेकर यात्रियों के साथ अगर हमने बात की है तो उन्होंने आकाशवाणी को बताया कि इस वर्ष प्रशासन के द्वारा उच्च स्तर की सुविधाएं यहाँ उपलब्ध रखी है, और इसके साथ साथ शाम के वक्त जो ही वो नाले सिंध का नजारा देखते हैं, यानी ट्रांजिट का मनगाम की अगर हम बात करेंगे तो वो यहाँ का वातावरण और यहाँ की सुंदरता देखकर झूम उठते हैं।
1: जी, तो जो यात्री बिना रजिस्ट्रेशन के या गलत डेट पर गांदरबल बाईपास कर रहे हैं, क्या उन्हें मनीगाम कैंप में रोका जा रहा है? वहाँ RFID ट्रैकिंग और चेकिंग कितनी स्ट्रिक्ट है?
0: वहाँ RFID और चेकिंग जो है वो काफी स्ट्रिक्ट है, और उन्हें यहाँ रोक दिया जाता है, और उनके लिए तत्काल रजिस्ट्रेशन का इंतजाम भी रखा गया है, और इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं अपने श्रोताओं को कि इससे काफी प्रॉब्लम्स होते हैं, यहाँ जिला प्रशासन के जो अधिकारी यहाँ तैनात किए गए हैं उन्हें जो ही यात्री देश के विभिन्न भागों से अनरजिस्टर्ड यहाँ पहुंचते हैं तो उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसके साथ साथ जिनकी अभी बारी नहीं है, यानी 4 या 5 दिन के बाद हैं पवित्र गुफा जाना होगा, तो वो पहले ही यहाँ आते हैं घाटी आगमन होकर, यहाँ उन्हें परेशानियों का सामना एक तो खुद करना पड़ता है, और इसके साथ साथ जो यहाँ पे अधिकारी मौजूद हैं उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और साथ ही जो यात्रा रूट के हर पड़ाव पर सुरक्षा कर्मी चाकू चौबंद रखे गए हैं उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और इसके साथ साथ इसे दाएं बाएं आके, चाहे श्रीनगर से या दूसरे इलाके से आके, बहुत सारे यात्री भी खुद ही आते हैं, उससे भी लोगों को और खासकर प्रशासन को परेशानियों से दूचार होना पड़ रहा है, लिहाजा वो बार बार इन्हें निवेदन करते हैं कि बिना रजिस्ट्रेशन यहाँ
1: आगे ना
0: सफर ना
1: बढ़े।
0: करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर हम ये भी जानना चाहते हैं रिजवान, कि गांदरबल बालतल स्ट्रेच पर जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो कैसा जा रहा है, और क्या सुनमर्ग और गगनगीर के पास भीड़ की वजह से कोई जैम वगैरह या डिले देखने को मिल रहा है?
0: देखिए, अगर हम यात्रा की बात करेंगे तो जम्मू भगवती नगर बेस कैंप से अगर हम राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करेंगे या श्रीनगर कारगिल राजमार्ग की बात करेंगे तो यहाँ पड़ा हर जगह सिक्योरिटी एहलकार जो है चाकू चौबंद रखे गए हैं, इसलिए जो ही यात्रा कॉन्वॉय जाती है उसके आगे पीछे दाएं बाएं किसी भी सरकारी या प्राइवेट वाहन को चलने की इजाजत नहीं दी जाती है, और इस दौरान जो भी गाड़ियां हैं उनको रोक दिया जाता है साइड में, तो पहले कॉन्वॉय को तरजीह बुनियादों पर आगे बढ़ने की अनुमति दी जाती है, इसके बाद जो ही किसी एरिया से यात्रा कॉन्वॉय पास होगी तो उसके बाद उन वहां पे नकल हमल जो है वो जारी रखते हैं गाड़ियों की, तो इससे पहले जो यात्रा कॉन्वॉय है उसी को तरजीह बुनियादों पर आगे बढ़ने की अनुमति दी जाती है।
1: जी रिजवान, हम ये भी जानना चाहेंगे कि गांदरबल डिस्ट्रिक्ट जो है वो पूरे बालतल रूट की सुरक्षा का जिम्मेदार है। गांदरबल पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जो है उनका हाईवे पर पेट्रोलिंग और सिक्योरिटी चेक पॉइंट ग्रिड आज किस तरह काम कर रहा है?
0: अगर हम सिक्योरिटी की बात करेंगे तो सुरक्षा के हम बार बार ये कहते हैं कि कड़े प्रबंध किए गए हैं, बल्कि यात्रियों की यात्रा सुखद तरीके पर सफल बनाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, BSF, CRPF, SSB, ITBP, NDRF, SDRF, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन RCC 122 के अलावा वॉलंटियर्स के अधिकारी जो हैं वो चारों ओर चाको चौबंद रखे गए हैं, और वो बिल्कुल अलर्ट रखे गए हैं ताकि ये यात्रा जो है वो सुखद तरीके पर सफल हो जाए, और हमारे देश के विभिन्न भागों से आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं क्योंकि उनकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है, लिहाजा उनकी सुरक्षा के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं ताकि उन्हें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े।
1: बिल्कुल सही बात है। तो क्या क्या लगता है लोकल कश्मीरी भाइयों, जैसे कि पोने वालाज है, शॉपकीपर्स है, या हमारा जो लोकल यूथ है उसका और प्रशासन के बीच अमरनाथ यात्रा और टूरिस्ट कोऑर्डिनेशन कैसा चल रहा है?
0: बहुत ही अच्छा चल रहा है क्योंकि हजारों की तादाद में, न सिर्फ यहाँ गांधरबल जिले की हम बात करेंगे बल्कि जो जम्मू कश्मीर यूटी के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से लोग यहाँ पे आए हैं, पोनी वाले हैं, पालकी वाले हैं, लिट्टू वाले हैं, दुकानदार हैं और सर्विस प्रोवाइडर जो भी वहाँ पे है जो अपनी खदमात मयसर रखते हैं, अगर लंगर वालों की हम बात करेंगे तो वो भी इस बार जो जिला प्रशासन के द्वारा व्यवस्थाएं की गई है उनको लेकर बेहद संतुष्ट है। उनके साथ हमने बात भी की है तो उन्होंने आकाशवाणी को ये बताया, बल्कि बार बार बताते हैं कि इस वर्ष काफी जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ रखी गई है, और सैनिटेशन के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो जगह जगह डस्टबिन लगाए गए हैं, सफाई

0: कर्मचारी जो है वो उनको चाको चौबंद रखा गया, हजारों की तादाद में वहां पे लोग मौजूद हैं, सर्विस प्रोवाइडर जो हैं सेवादार हैं जो यात्रियों के लिए बिल्कुल अलर्ट रखे गए हैं। और कहीं पे क्योंकि परसों ही वहां पे मिशन डायरेक्टर जो थी वो भी पहुंची है सैनिटेशन की, तो उसके साथ भी हमने बात की है, उसने खुद चेकिंग की है कि कई डस्टबिन नजर आ रहे हैं, सफाई सुथराई का कैसा इंतजाम है, तो उसने पूरा देखा है। मैं उसके साथ बिल्कुल खुद भी गया था दुमेल तक, तो उसने पूरी चेकिंग की है, जो भी वहां पे कर्मचारी रखे गए हैं वो अच्छी तरीके से अपनी फराइज अंजाम दे रहे हैं, वो सफाई सुथराई का खास ख्याल रखा जाता है।
1: बहुत खुशी की बात है। और बम बम भोले के जयकारों के साथ हमारे जो यात्री हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप ख्याल रखिएगा अपना, और अगली जो है रिपोर्टिंग में आपके साथ वापस जुड़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।
0: शुक्रिया आपका।
1: शुक्रिया।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल, एफएम पहलगाम, डीटीएच और न्यूज़ ऑन एयर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए।

अमरनाथ यात्रा 2026 पूरी श्रद्धा और धूमधाम के साथ आगे बढ़ रही है। बालतल और पहलगाम दोनों ही रूट से लाखों श्रद्धालु लगातार गुजर रहे हैं। प्रशासन ने सेफ्टी के बहुत ही टाइट अरेंजमेंट्स किए हैं और हर 2 किलोमीटर पर मुफ्त मेडिकल कैंप्स हैं और हर जगह सिक्योरिटी जो है वो डिप्लॉय की गई है ताकि आपकी जर्नी जो है, आपका जो सफ़र है वो एकदम सुरक्षित हो। दोस्तों आपको बता दें कि घर से निकलने से पहले अपनी पैकिंग में आप कुछ चीज़ें ज़रूर चेक कर लें। अगर आप इस यात्रा पर आ रहे हैं, आपके साथ RFID कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। जम्मू या श्रीनगर के रजिस्ट्रेशन सेंटर से अपना फ़िज़िकल RFID कार्ड ज़रूर लें। इसके बिना आगे एंट्री नहीं मिलेगी और इसे पूरी यात्रा में गले में पहन कर रखना ज़रूरी है। आपके साथ SASB से ऑथोराइज्ड डॉक्टर का साइन किया हुआ ज़रूरी हेल्थ सर्टिफिकेट हमेशा अपने पास रखें।

0: आपको अपने साथ गर्म मलबूसात, रेनकोट्स, वाटरप्रूफ शूज़ ज़रूर रखने हैं, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड पर जो मौसम है वो सेकेंड्स में तब्दील हो जाता है और टेम्परेचर जो है वो 5 डिग्री से नीचे गिर जाता है। तो आपके साथ आपके गर्म मलबूसात, आपका रेनकोट, वाटरप्रूफ शूज़ वगैरह जो है वो ज़रूर साथ होना चाहिए। और स्ट्रिक्ट डाइट रूल्स को फॉलो करना है। ट्रैक पर आप ऑयली फूड, कोल्ड ड्रिंक्स या फास्ट फूड जो है वो साथ नहीं ले जा सकते हैं, उस पर पूरी तरह बैन है। अपने साथ फ्रेश फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और लाइट स्नैक्स जो हैं वो आप कैरी कर सकते हैं। तो आप ये विशेष प्रसारण जो है अमरनाथ जी यात्रा 2026 का सुन रहे हैं। FM बालतल, FM पहलगाम, DTH और न्यूज़ ऑन एयर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
2: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्ट पेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्री पेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।

आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7, एफएम पहलगाम 100.1, डीटीएच और न्यूज ऑन एयर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी अराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं, अब आइए आरती सुनते हैं।

ओ शिवा पूरे जटाओ बाल ओ शिवा बैल।

அமர பயா பாலிய சங்கர பகவான் கே. सभी भक्तजन भोले बाबा के चरणों में बैठकर भोले बाबा की पवित्र आरती का दर्शन कर रहे हैं, आरती श्रवण कर रहे हैं. आप सभी भक्तजन बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ, प्रीति के साथ, आनंद मन से भोले बाबा के भजन का ध्यान करेंगे.

0: बोलिए शंकर भगवान के
1: जय,
0: धर्म के
1: जाओ,
0: अधर्म का
1: नाश हो,
0: प्राणियों में
1: सद्भावना हो,
0: विश्व का
1: कल्याण हो,
0: गौ माता की
1: जाओ,
0: मात पिता की
1: जाओ,
0: गुरु जनों की
1: जाओ,
0: सभी संतों की
1: जाओ,
0: सभी भक्तों की
1: जाओ,
0: सत्य सनातन धर्म की
1: जाओ,
0: आज के आनंद की
1: जाओ,
0: भारत माता की
1: जाओ,
0: शंकर भगवान की
1: जाओ,
0: शंकर भगवान के परिवार की
1: जाओ,
0: शंकर भगवान के गणों की
1: जाओ,
0: शंकर भगवान के भक्तों की
1: जाओ,
0: अमरनाथ स्वामी की
1: जाओ,
0: बाबा बर्फानी की
1: जाओ,
0: नमः पार्वती पते हर हर महादेव।

0: Okay.
1: Ya es.

शाम के 6 बज रहे हैं। ये विशेष प्रसारण आप यात्रा 2026 के सिलसिले में आकाशवाणी के एफएम बालतल से सुन रहे थे। एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, डीटीएच की आराधना सर्विस, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर की आराधना चैनल और प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा 2026 के इस विशेष प्रसारण में हमारे साथ थे हमारे सहायक इंजीनियर्स नसीर अहमद एहंगर, राजकुमार, जी हाँ, नसीर अहमद एहंगर और राजकुमार, इनके साथ हैं शौकत अहमद खान। मैं आपकी उद्घोषक फरजाना और इस विशेष प्रसारण के प्रस्तुतकर्ता श्री वसीम फारूक। इसके साथ ही हमारी आज की ये सभा यहीं पे समाप्त होती है। प्रातः 7 बजे अमरनाथ यात्रा का विशेष प्रसारण लिए आपकी खिदमत में दोबारा उपस्थित होंगे। जब तक के लिए शुभ यात्रा, जय हिंद।

प्रभु राम, सीता, लक्ष्मण गंगा पार केवट को उतराई देना चाहते हैं, परंतु केवट अपने प्रभु से सहज भाव से उतराई न लेने की भावना प्रकट करते हैं।

हाथ जोर राजा कहें परम पूज्य मुनिनाथ, भयल आगमन आप कै दुनिया भयल सनाथ। हमसे ज्यादा आप कै हम सब पर अधिकार, ई हमार सौभाग्य हो जागल भाग हमार। इतना कहकर राजा दशरथ अपने पुत्रों को मुनि के साथ विदा करते हैं।

उधर भरत जी अयोध्या से प्रभु राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट पहुंचते हैं और राम जी से अयोध्या वापस चलने की प्रार्थना करते हैं।

राम जी की आंखें भर आती हैं और अपनी खड़ाऊ भरत जी को देते हुए अयोध्या की गद्दी संभालने के लिए वचन लेते हुए विदा करते हैं।

सुधा अमृठी भरेला रुधिरती खरडायला कलशने हस्तपद्मथी धारण करता कूष्मांडा देवी अमारे माटे शुभकारक हो। आम तो कूष्मांडा नो अर्थ

सदार चित्ता। अर्थात हे परमेश्वरी दुर्गे, तमारू स्मरण थता ज प्राणी मात्र नो भय चालू जाए, तमे हरी लो छो ए भय ने। सुख समय के स्वस्थ चित्ते तमारू स्मरण करता शुभ बुद्धि आपूश। शरणागतना दारिद्र्य संकट अने भय ने हरनारा सर्वना ऊपर उपकार करवाने माटे हे माता, माता तमारा सिवाय करुणा सभर चित्त वाला बीजा कौन छे। नवरात्रना आ दिव्य प्रातःकालना समयमा चालो चालो प्रातःकाले भगवती कूष्मांडा दुर्गा देवीनु परमेश्वरीनु एनु દુર્ગાનો બીજું નામ ચંડી પણ છે એમનું વંદન કરી લઈએ। દક્ષિણ કાલિકા।

ललिता सहस्रनामना किंवा सरसनामशी। श्रीमाता श्री महाराग्नी श्रीमत सिंहासनेश्वरी

एक श्री माता ललिता जी, ऐश्वरी ना महाराजनी, शोभायुक्त ए सिंहासन ऊपर विराजेला सिंहना अग्नि कुंड रूपी ज्ञान माथी उत्पन्न प्रगट थयेला देवोना कार्य माटे तत्पर साथेश चरणमाना नखरूपी चंद्रना किरणों वड़े जनमानसना तमोगुणने हरी लेनारा बन्ने चरणनी कांति प्रभाथी कमलोनी शोभाने झांकी करनारा ए ललिता देवी ने हमारा प्रणाम।

ये दुर्गा माता सती साध्वी भगवान शिव पर अपार प्रीति रखनारा भवानी संसारना बंधनमाथी मुक्त करनारा आर्या दुर्गा जय अपावनारा आद्या त्रिनेत्रा त्रिशूलधारिणी दुर्गा देवी ने अमे प्रणाम करिए।

अर्थात शरद ऋतुना चंद्रना किरणो अमना जेवी उज्ज्वल कांतीवाळा उत्तम रत्नो यमा जळ्या छे ते मकराकृती कुंडल तथा हार वगैरे आभूषणो थी शोभता दिव्य आयुधो थी ओपता दिव्य नील रंगना हजारो हाथ वाला लाल का

ये आकाशवाणी है। अब प्रस्तुत है आज महाप्रभु जगन्नाथ जी के धाम उड़ीसा के पावन क्षेत्र पुरी में आयोजित रथ यात्रा पर समेकित रेडियो रिपोर्ट। यह घंटनाद, यह कोलाहल, यह जयघोष किसी के आगमन की सूचना देता है। किसका आगमन हो रहा है? कौन है ऐसा जिसके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं लाखों श्रद्धालु और भक्तजन? कोलाहल के बीच से जो एक स्वर उभर कर आ रहा है वह है जय जगन्नाथ। आज यहां उपस्थित सभी भक्तजनों के कंठ में यह एक ही ध्वनि है, जय जगन्नाथ। प्राचीन उत्कल प्रदेश जो वर्तमान में ओडिशा के नाम से जाना जाता है उसका एक स्वतंत्र परिचय है, वह है प्रभु जगन्नाथ। विश्व भर में यह प्रदेश जगन्नाथ जी की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि ओडिशा के समुद्री तट स्थित पुरी शहर में विराजते हैं भगवान जगन्नाथ अपने अग्रज भगवान बलभद्र तथा बहन देवी सुभद्रा जी के साथ। कहा जाता है कि यह उनका मानवीय लीला क्षेत्र है, अर्थात प्रभु यहाँ वह सब कुछ करते हैं जो एक साधारण मनुष्य अपने जीवन में करता है। प्रभु के सारे विधि विधान मानवीय दिनचर्या के समान हैं। सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार सभी विधियां संपन्न की जाती हैं। उसी परंपरा का एक अंश है भगवान जगन्नाथ जी की वार्षिक रथ यात्रा। शास्त्रानुसार रानी गुंडीचा को दिए गए वचन को निभाने के लिए भगवान वर्ष में एक बार गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। वहीं एक मान्यता और भी है कि मंदिर में प्रवेश न कर पाने वाले अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाने के लिए भगवान अपने मूल स्वरूप में ही मंदिर से बाहर आ जाते हैं। शास्त्र पुराणों में किए गए वर्णन के अनुसार भगवान की इस रथ यात्रा का विशेष महत्व है। कहा गया है कि रथारूढ़ भगवान के दर्शन से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि रथ यात्रा के दौरान प्रभु के दर्शन करने हेतु विश्व के कोने कोने से श्रद्धालु भक्तजन पुरी आ पहुंचते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन भगवान की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है।

रथ यात्रा का आयोजन भले ही आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन होता हो, परंतु इस महोत्सव की तैयारियां बहुत पहले ही शुरू हो जाती हैं। भगवान की यात्रा के लिए हर वर्ष 3 रथ नए सिरे से बनाए जाते हैं। इसके लिए काष्ठ संग्रह का कार्य वसंत पंचमी के पावन दिन से शुरू होता है। रथ निर्माण का कार्य भगवान के विशेष सेवक वंशानुक्रमिक रूप से करते हैं। रथ निर्माण एक चरणबद्ध कार्यक्रम है। रामनवमी से लकड़ियों को चीरने का कार्य शुरू होता है। अक्षय तृतीया के पवित्र दिन से प्रारंभ होता है रथ निर्माण का कार्य। फिर नियमित समय व्यवधान से रथों के पहियों तथा अन्य हिस्सों को प्रस्तुत किया जाता है। रथों के निर्माण में विश्वकर्मा, लोहार, दर्जी, चित्रकार आदि सेवकों की बड़ी भूमिका होती है। उधर अक्षय तृतीया से आरंभ होती है चंदन यात्रा। इस दौरान विग्रहों को नरेंद्र सरोवर में नौका विहार कराया जाता है। स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान के विग्रहों को रत्नवेदी से स्नान मंडप लाया जाता है। स्नान के पश्चात प्रभु को गज वेश में सजाया जाता है। अत्यधिक स्नान से प्रभु ज्वर से पीड़ित होते हैं, तब 15 दिनों के लिए उन्हें एकांतवास में रखकर उनका उपचार किया जाता है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पूर्व दिवस अर्थात प्रतिपदा के दिन भगवान नव यौवन वेश में भक्तों को दर्शन देते हैं। रथ यात्रा का मुख्य महोत्सव पुरी में आयोजित होता है, जिसमें भगवान मुख्य मंदिर से निकलकर गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। वहां एक सप्ताह के अवस्थान के पश्चात पुनः रथारूढ़ होकर वापस मुख्य मंदिर में लाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में बाहुड़ा यात्रा कहा जाता है। आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पावन दिवस के अवसर पर पुरी में इस महोत्सव का आयोजन किया गया। मौसम विभाग द्वारा पुरी तथा आसपास के कई जिलों में मध्यम से भारी वर्षा के पूर्वानुमान की परवाह किए बिना लाखों की संख्या में भक्तजन पुरी पहुंचे थे। मन में जहां दृढ़ भक्तिभाव होता है, वहां मनुष्य हर विघ्न को पार कर जाता है। इसी बात का प्रत्यक्ष प्रमाण था यहां उमड़ा भारी जनसमूह। श्री मंदिर के नाम से जाने जाने वाले मुख्य मंदिर को फूलों से सजाया गया था। मंदिर के सिंह द्वार के सामने तैयार खड़े थे 3 सुसज्जित रथ। लाल और हरे रंग का भगवान बलभद्र जी का रथ तालध्वज, बीच में लाल और काले रंग के वस्त्रों से सज्जित देवी सुभद्रा जी का रथ देवदलन, और द्वार के समीप था लाल और पीले रंगों के वस्त्रों से सज्जित भगवान जगन्नाथ जी का रथ नंदीघोष। मार्ग पर आंकी गई रंगोलियां सभी का मन मोह रही थी। आसमान में छाए बादल बीच बीच में बरस पड़ते थे, परंतु यह बारिश भक्तों के उत्साह में किसी प्रकार की कमी ना ला सकी। बारिश होने के समय भक्तों के द्वारा उपयोग में लाए गए रंगीन छाते एक अद्भुत दृश्य प्रदान कर रहे थे। कोई भजन कर रहा था तो कोई कीर्तन, तो कोई अपनी नृत्य कला अथवा रण कौशल का प्रदर्शन कर भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा था।

एक विधि के अनुसार भगवान के रथों पर ध्वज तथा कलश की स्थापना की गई। ब्राह्मणों द्वारा रथ प्रतिष्ठा की विधि संपन्न होने के बाद शुरू हुई पहुंडी की विधि। पहुंडी का शाब्दिक अर्थ है धीरे धीरे कदम दर कदम

0: ये पढ़ना। इस विधि के अंतर्गत यहाँ दंड रूपी भगवान सुदर्शन और देवी सुभद्रा को भक्तजन बिना भूमि को स्पर्श कराए कंधों पर उठाकर मंदिर के रत्न सिंहासन से रथों तक लाते हैं, वहीं भगवान बलभद्र तथा जगन्नाथ जी को एक एक कदम बढ़ाते हुए लाया जाता है। क्रमानुसार सुदर्शन जी, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा तथा जगन्नाथ जी की पहुंडी विधि संपन्न हुई। भगवान के आयुध सुदर्शन जी को देवी सुभद्रा जी के रथ पर स्थापित किया गया। टाहिया कहे जाने वाले फूलों से सजे विशाल मुकुट से सज्जित भगवान की शोभा अवर्णनीय थी। भगवान की इस आकर्षक विधि का दर्शन करने के लिए आए भक्तों से मुख्य मार्ग मानो पूर्ण रूप से भरा हुआ था। भगवान के रथारूढ़ होने के साथ साथ यात्रा के लिए उनकी आवश्यक सामग्रियों को भी रथों पर रखा गया। प्रभु के रथारूढ़ होने के पश्चात परंपरा के अनुसार पुरी गोवर्धन मठ के शंकराचार्य ने अपने शिष्यों के साथ आकर भगवान के दर्शन किए। अगला अनुष्ठान था छेरा पहरा। परंपरा के अनुसार इस विधि में भगवान के प्रथम सेवक कहे जाने वाले पुरी के गजपति महाराज स्वयं अपने महल से एक पालकी पर सवार होकर आते हैं और अपने हाथ में सुवर्ण मार्जनी लेकर रथों की सफाई का कार्य करते हैं। यह विधि इस बात को दर्शाती है कि भगवान के आगे राजा और रंक में कोई भेद नहीं है। भगवान के आगे सभी समान हैं। सफेद राजसी पोशाक में गजपति महाराज लाल रंग की पालकी पर सवार होकर महल से रथों तक पधारे। फिर बारी बारी से एक एक रथों पर महाराजा ने सेवकों द्वारा डाले गए फूलों की प्रतीकात्मक रूप से सफाई की। छेरा पहरा विधि को संपन्न कर महाराज ने भगवान की आरती की और महल की ओर प्रस्थान किया। अब बारी थी रथों पर चढ़ने के लिए लगाई गई सीढ़ियों को खोलने की। सीढ़ियों को खोलने के पश्चात रथों से सारथी, अश्वों तथा रज्जुओं को संयुक्त किया गया। अब वह क्षण आ पहुंचा था जिसका हर भक्त को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। रथों को खींचने का समय हो गया था। बड़े ही उत्साह के साथ भक्तजन पहले बलभद्र जी, फिर देवी सुभद्रा और अंत में भगवान जगन्नाथ जी का रथ खींचते हैं। सूर्यास्त तक रथों को खींचा जाता है। गुंडीचा मंदिर तक न पहुंचने की स्थिति में रथों को अगले दिन सूर्योदय के पश्चात फिर से खींचा जाता है। इतने विशाल आयोजन में कानून व्यवस्था बनाए रखने, सभी आवश्यक सेवाओं को सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभाग, स्थानीय इकाइयों तथा स्वयं सेवकों की भूमिका सराहनीय रही। पूरी न आ पाने वाले श्रद्धालुओं को रथ यात्रा का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान कराने के लिए आकाशवाणी ने क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ अंग्रेजी और हिंदी में आंखों देखा हाल सुनाने का प्रबंध किया था।
1: ये तीनों रथ पूरी तरह से बरसात में भीगे हैं। लाखों श्रद्धालु, बरसात लगातार जारी है फिर भी उन्हें इसकी परवाह नहीं है। उनके आगे उनके आराध्य देव जगत के नाथ प्रभु जगन्नाथ विराजमान हैं। वो स्वयं भीग कर रत्न सिंहासन छोड़कर जब रथ रूपी मंदिर में काष्ठ सिंहासन पर विराजमान होने के लिए आए हैं और भक्तों को अपना दर्शन देने के लिए आए हैं, तो उनके आगे सामान्य भक्त की भला क्या औकात है। तो सारे भक्त सब कुछ भुलाकर अपने आराध्य देव को अपने सम्मुख पाकर वो धन्य हुए हैं। काफी संख्या में यहाँ भक्त मौजूद हैं। इस बीच हमारे सामने, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं अहमदाबाद से आई मूल अमृतसर की निवासी अंजलि जी। वो रथयात्रा दर्शन के लिए आई हैं, हम उनसे बात करेंगे। तो अंजलि जी, स्वागत है आपका जगन्नाथपुरी में। आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है?
2: ये खूबसूरत नज़ारा आज तक मैंने कभी देखा नहीं था। इतना बड़ा त्योहार की तरह इसको मनाया जाना मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये देख पाऊंगी। जो इन पलों का मैं अनुभव कर रही हूँ वो मैं बता नहीं सकती शब्दों में कि इतना प्यारा अनुभव, इतना सुंदर अनुभव कैसे मुझे मिला मुझे नहीं पता। लेकिन इस समय जो मैं अनुभव महसूस कर रही हूँ वो मेरे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता।

0: हर भक्त अपने अपनी जगह से जुड़ा हुआ है और अपनी अपनी भक्ति में इतना लीन है कि उसको अपनी ना बारिश की परवाह है, ना अपनी भूख की परवाह है, ना किसी भी चीज़ की परवाह है, और वो वहीं पे खड़ा हुआ है भगवान के दर्शनों के लिए। इतना इतना इतना उत्सुक है कि मेरे पास शब्द नहीं है। हर इतने लाखों लोगों में सब में इतना प्यार भावना भगवान के प्रति जो मैंने देखे, मैंने आज तक कभी देखी ही नहीं है।
1: धन्यवाद अंजलि जी।
2: यह रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक भगवान बलभद्र जी का रथ खींचा जा चुका था और देवी सुभद्रा जी के रथ को खींचने की तैयारियां चल रही थी। अभी आप सुन रहे थे आज महाप्रभु जगन्नाथ जी के धाम उड़ीसा के पावन क्षेत्र पुरी में आयोजित हुई रथ यात्रा पर समेकित रेडियो रिपोर्ट। आलेख एवं वाचन स्वर प्रकाश चंद्र दवे, प्रस्तुति सहयोग अक्षय कुमार सेठी, प्रस्तुतकर्ता थे विनय कुमार सामंतराय। आकाशवाणी के कटक केंद्र के सौजन्य से प्राप्त यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

भक्त जनों, आइए आज अपने भीतर अपनी अंतरात्मा का साक्षात्कार करें और उसी से कुछ प्रश्नोत्तर करें। प्रश्न है,

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना।

एक सच्चा हरि भक्त जीवन भर ईश्वर दर्शन की आस लिए, हरि मिलन की प्यास लिए पल पल तड़पता है, तरसता है कि उस पर भी हरि कृपा कर दें। भक्तों का तारनहार, जगत का पालनहार हर युग में अवतार लेता है, कभी अवधपति राम तो कभी गोकुल का श्याम बनकर। बाल कृष्ण की एक झलक पाने के लिए तुलसी, नानक, सूरदास, मीराबाई, एकनाथ, तुकाराम और नरसिंह मेहता ने आराधना की, तपस्या की और वो सफल हुए। हरि दर्शन का प्यासा भक्त ईश्वर से कई सवाल करता है कि उसमें क्या कमी है, उसकी भक्ति में क्या कसर है कि परमात्मा उससे इतनी दूरी बनाए रखता है।

सरयू नदी के तट पर बसी सुंदर अवधपुरी रामलला की जन्मभूमि। दशरथ नंदन राम जी ने इसी नगरी में अपनी मानव सुलभ बाल लीलाएं की। श्री राम दशानन पर विजय प्राप्त कर जब अयोध्या नगरी पुनः पधारे तो ये जानकर अयोध्या वासियों के आनंद की सीमा न रही कि तारनहार श्री राम अब सदा के लिए यही निवास करेंगे। भक्त जनों और संत जनों की प्रार्थनाओं से रामलला के सर से हर प्रकार की अलाबला टल गई।